ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर दो मिनट पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे हिंदी में समाचार, 9:02 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 10:55 पर सुनिएगा कार्यक्रम 1055 टू टिल एंड। 12 बजे अंग्रेजी में समाचार, 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
7: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

एफएम रेनबो पर समय हुआ है इस समय के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा सहित सभी मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज कलेक्ट करेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहक की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिन की केरलम दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता आनंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चारधाम यात्रा आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा पर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समिति गठित की है। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला शुरू हो गई है और एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदों की संख्या 30 हो गई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आपकी वाणी आकाशवाणी पर एक बार फिर से मैं रिचा आप करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। संडे मॉर्निंग, इतनी खूबसूरत सा मौसम, जहाँ देखें आप हल्की हल्की सर्दी आप महसूस कर रहे होंगे, और ये वो समय है जो दरअसल हम अक्सर तौर पर दीपावली के बाद महसूस करते हैं, लेकिन देखिए ईश्वर की कृपा के हम इसे पहले ही महसूस कर रहे हैं। और इतना प्यारा वेदर है कि आप इस सुबह को सेलिब्रेट कर सकते हैं। कैसे? रिचा के साथ, एफएम रेनबो के साथ बहुत ही बेहतरीन से गाने सुनते हुए, खुद को मोटिवेट करते हुए। बने रहिए रिचा के साथ इस प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, यह है आकाशवाणी रेनबो। और कभी कभी हमारे पास टैलेंट होता है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम सफलता पा सकते हैं, और फिर हम इंतज़ार करते हैं एक मौके का, एक अपॉर्चुनिटी का, एक अवसर का। लेकिन पता है, ये अवसर कई बार हमारे बिल्कुल सामने होता है और हम इसे पहचान नहीं पाते। हमें पता ही नहीं लगता कि वो अवसर दरअसल हमारे सामने है और हम उसे चूक जाते हैं, और मौका चूक जाने पर हमारे हाथ सफलता नहीं लग पाती है। और जब हम अवसर को पहचान जाते हैं, वही एक मौका होता है कि जब आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक समय की बात है कि एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, बहुत सारी कलाकृतियां वहां पर प्रदर्शित हो रही थी। एक बड़ी ही अजीब सी पेंटिंग वहां पर दिखाई दी। पेंटिंग में दरअसल एक आकृति बनी हुई थी जिसके चेहरे पर बाल थे, ढका हुआ था पूरा चेहरा, दोनों पैरों में पंख लगे हुए थे। तो एक व्यक्ति उसे देखता रहा, और फिर उसके बाद जो उस पेंटिंग को बनाने वाला आर्टिस्ट था उसके पास गया, कहा, ये पेंटिंग कुछ समझ नहीं आ रही, आप प्लीज इसे एक्सप्लेन करें। तो उसने कहा कि ये अवसर है। तो उसने कहा, ये अवसर कैसे है? इसका चेहरा ढका हुआ है कि ये जब अवसर को आप अक्सर तौर पर पहचान नहीं पाते, इसके पैरों में पंख हैं, क्योंकि अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो ये तुरंत उड़ जाता है, फिर किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए अपने आसपास के मौकों को पहचानिए और मौके पे चौका मारिए, और फिर देखिए कि कैसे आप सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां तक आप जाना चाहते हैं। इसलिए केवल कई घटनाएं आपके जीवन में ऐसी हो जाएंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, अगर आप सही अवसर को पहचानना शुरू कर दें। मैं हूं ऋचा आपके साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुप्रभात 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन

0: नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो। मैं हूँ ऋचा आपके साथ, और हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना कितना ज़रूरी है। कई बार आप उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि जैसा कि उस पेंटर ने उस पेंटिंग में बनाया था, अपॉर्चुनिटी का मुंह छुपा हुआ होता है और उसकी शक्ल आप पहचान नहीं पाते। और मौका इतनी आसानी से पहचान आ जाए तो फिर भला वो उसे लाभ कैसे पहुँचाएगा जो उसके काबिल है। हर कोई उसे पहचान लेगा, है ना। इसलिए कई सारे ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने उस मौके को वहाँ पहचाना जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी जहाँ आप पाएंगे कि रेगिस्तान में विंड मिल से लगाने से लेकर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ मोबाइल टावर्स तक लगाने का काम बिजनेसमैन्स ने किया, और वहाँ पर उस मौके को पहचाना जहाँ से लोगों की सुविधा भी बढ़ी और उनका रेवेन्यू भी। ठीक इसी प्रकार जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जब आप बड़ा सोचते हैं, जब आप उस मौके को पहचान पाते हैं, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। बस आपके अंदर होना चाहिए कभी ना हार मानने वाला जज्बा, मेहनत करने की पूरी हिम्मत, और कभी हार कर उठने का भी हौसला। और अगर ये सब कुछ आप में है तो कामयाबी आपसे दूर नहीं रह सकती। आप ज़रूर जीवन के हर एक मैदान को फतेह करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं हूँ ऋचा आपके साथ। इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप 102.6 MHz पर। इसके अलावा हमारी न्यू मोबाइल ऐप जो है न्यूज़ ऑन एयर, उस पर भी आप इस कार्यक्रम को लाइव सुन सकते हैं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: उम्मीद करते हैं कि जीवन में आने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी को आप पहचाने और वही आपके कामयाबी की वजह बने। इसलिए जीवन में जब कभी आपको एक अवसर मिले, जब कभी एक मौका मिले आगे बढ़ने का, तो उस मौके को चूकिएगा मत, बल्कि आगे बढ़िएगा। और आगे बढ़ने के लिए हमेशा यस कहिएगा, उसमें आने वाली जितनी मुसीबतें हैं उन्हें उठाइएगा। तो वादा कीजिए कि आप हर एक अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा उठाएंगे। समय हुआ है कि आपको एक प्रायोजित कार्यक्रम की ओर ले चलें, तो आइए सुनते हैं।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय और आपने इस क्रम में सुना कि कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान के लोक का दर्शन किया और भगवान का दर्शन किया। जब भगवान का दर्शन किया तो 15वें श्लोक में वर्णन आया, भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम प्रसन्न हासारुण लोचनाननम क्रीटनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीताम्बरम वक्षसी लक्षितम श्रिया। वर्णन आया कि ठाकुर जी का मुख कमल कृपा से युक्त है, मधुर मुस्कान से युक्त है ना। वृत्त प्रसादाभिमुखम, वृत्त यानी सेवक के प्रति, दास के प्रति ठाकुर जी का श्रीमुख कृपा से भरा हुआ है। दृगासवम, दृगासवम आंखों में अश्रु भर गए हैं, भक्त को देखकर आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, अरुण नयन है, बड़ी ही मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो अपने प्रेमी भक्त को अभी अभी भगवान अपना सर्वस्व दे देंगे। सर्वस्व देने को आतुर भगवान, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमाना है और सुंदर चार भुजा

वे एक सर्वोत्तम बहुमूल्य आसन सिंहासन पर विराजमान हैं। तो ठाकुर जी का कितना सुंदर वर्णन आया देखिए, ठाकुर जी प्रसन्न हैं अपने भक्त को देखकर। ब्रह्मा जी ने 1000 साल तपस्या की, उसे देखकर और उस तपस्या में ऐसे लीन हुए ब्रह्मा जी, अष्टदशाक्षर मंत्र को प्राप्त करके कृष्ण मंत्र का आस्वादन करते हुए ब्रह्मा जी लीन रहे 1000 वर्ष तक तपस्या में, और दर्शन प्राप्त किया है अपने उपास्य का। और कैसा दर्शन ये, भगवान जो इतने ऐश्वर्य से युक्त हैं, जहां माया प्रवेश नहीं कर सकती, जहां इतने पार्षद हैं भगवान के, वो भगवान अपने भक्त को देखकर मुस्कुराने लगे, वो भी ऐसी मुस्कान उनके मुख कमल पर जो सुमधुर थी। प्रसन्न हासा ऋण लोचनाननम, प्रसन्न है ठाकुर जी, उनके नयन भी हंस रहे हैं, उनके होठों पर भी हंसी है, और उनके नयन में करुणा रूपी अमृत भरा हुआ है, करुणा बिखेर रहे हैं ठाकुर जी अपने भक्त के प्रति। तो ऐसा श्री मुख है भगवान का, अतिशय प्रसन्न मुख है, मधुर मोहक श्री मुख है, कि जैसे अभी ही अपने प्रेमी भक्त को सब कुछ लुटा देंगे। देखिए ठाकुर जी की तो ये रीति ही है। सुदामा जी आए थे भगवान के पास, क्या लाए थे, वो टूटे फूटे कंकड़ से युक्त चावल, जिसको कोई खाता भी नहीं है, फेंक देता है चिड़िया को, लेकिन भगवान ने प्रेम खाया, प्रेम प्रेम खाया, प्रेम का आस्वादन किया। सुदामा जी का जो प्रेम था ठाकुर जी के लिए, उस प्रेम ने उन्हें विगलित कर दिया, उस प्रेम के आगे वो सब कुछ भूल गए, अपना सर्वस्व देने को आतुर हो गए। नयनों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धुलाए हम भूल नहीं सकते हैं, और मुट्ठी भर के खा लिया वो तंदुल, एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी खा ही रहे थे, रुक्मिणी जी ने रोक दिया कि अरे ये क्या कर रहे हैं प्रभु, सब कुछ ही दे देंगे, भूल गए। ऐसा अनेक बार हुआ। गौर सुंदर यानी गौरांग महाप्रभु, जो राधा कृष्ण एकात्म स्वरूप हैं, गौरांग महाप्रभु ने सुना कि उनका प्रिय भृत्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, वो जो कि इतने वैभवशाली परिवार में उत्पन्न हुए थे, जन्मे थे श्री रघुनाथ दास जी, वो ऐसे वैराग्य की दशा में पहुंच गए कि वो जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है, जिसको कोई भी नहीं खाता था, जब उसकी ऐसी अवस्था हो जाती थी तो उसको गाय के आगे डाल दिया जाता था, तैलंग गाय, तो वो गैया भी नहीं खाती थी, सूंघती थी और दूर चली जाती थी। उन महाप्रसाद को एकत्र करके, समुद्र के जल से धो करके, उसमें कड़ा अंश रख करके, उसे धूप में सुखा करके, वही पाते थे श्री रघुनाथ दास जी। और जब स्वरूप दामोदर जी के श्री मुख से जब ये बात सुनी है महाप्रभु ने, तो त्रिलोक के स्वामी गोलोकपति ठाकुर जी से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े गए हैं श्री रघुनाथ दास जी के कुटिया में। और उस समय रघुनाथ दास जी भोजन करने बैठे ही थे, सामने था वही चावल जिसे तैलंगैया भी नहीं खाती थी, महाप्रसाद, महाप्रसाद का अन्न। और गौरांग महाप्रभु ने कहा, अरे अरे रघुनाथ, तुम ये त्रिलोक को भी दुर्लभ महाप्रसाद, इतना सुंदर व्यंजन अकेले अकेले खा रहे हो, नहीं नहीं मुझे भी दो, मुझे भी दो। और तुरंत श्रीमन महाप्रभु ने हाथ बढ़ाया, एक मुट्ठी लिया और खा लिया, और दूसरी मुट्ठी ले रहे थे कि स्वरूप दामोदर जी ने रोक दिया, प्रभु ये आपके लायक नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए, हमारा दिल फट जाएगा। तो भगवान अपने भक्त को, अपने आप को देने के लिए तैयार रहते हैं, भक्त की भक्ति पर हमेशा ही न्यौछावर रहते हैं, भक्त की भक्ति ही
उनका सर्वस्व धन है। सोचिए, जीव के आधार में, एक जीव में एक अणु प्रेम के प्रति भगवान ऐसे उन्मादित हो जाते हैं। तो यहां यही हुआ, ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी की उत्कट इच्छा को भी जानते हैं श्री भगवान, इसलिए उनको देखते ही ऐसे दौड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे आंसुओं से भर गए हैं उनके नयन कि लगा कि अभी अभी अपना सर्वस्व दे देंगे, सर्वस्व ब्रह्मा जी को। तो ये तो भगवान है, और इनके जैसा भला कौन हो सकता है। और भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु झलक आए। प्रेमाश्रु, अश्रु पुलक से युक्त हो गए ब्रह्मा जी। अरे भाई, इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त आदि गुरु ब्रह्मा जी, और उन्हें दर्शन हुआ है पहली बार श्री भगवान का, उनके धाम का, उनके परिकरों का। श्री भगवान को देखते ही ये अवस्था तो होनी स्वाभाविक थी, इतना भजन जो किया ब्रह्मा जी ने तो शरीर तो पुलकित तो हो ही उठेगा, नेत्रों से प्रेमाश्रु छल के बगैर कैसे रुकेंगे, छलक ही गए। और तब ब्रह्मा जी ने श्री भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी है, 17वां श्लोक है जहां पर ब्रह्मा जी ने दर्शन किए हैं। तद दर्शनाह्लाद परिलुप्तांतरो हृष्य तनुः प्रेम भराशु लोचनः ननाम पदाम्बुजमस्य विश्वसृग यत् पारमहंसेन पथादि गम्यते। आहा, देखिए जो सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, वो महाप्रेम से भरे हुए शब्द हैं कि भगवान के दर्शन करने के आह्लाद से अंतर ही परिलुप्त हो गया, हृदय परिलुप्त हो गया, भर आया और पुलकित हो गए, आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। और तब दंडवत प्रणाम किया है भगवान के उन चरण कमलों में जिनको सिर्फ परमहंस शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई कह दे कि अरे तुम हमें भगवान दिखा सकते हो, तो यहां तो सीधा बता दिया गया है कि नहीं, भगवान को ऐसे नहीं देखा जा सकता है। ब्रह्मा जी ने भी 1000 वर्ष तपस्या की तो भगवान को देखा है उन्होंने। और अगर कोई शुद्ध भक्ति का आश्रय ले, भगवान से प्रेम करे, तो इसी कलयुग में कितने लोगों ने देख लिया है, कितने कितने महात्माओं ने, साधुओं ने, भक्तों ने भगवान के दर्शन पाए हैं, कथा बोली है, बातें की है, कितने ही लोगों ने, है ना। तो ये जो भगवान है ये भक्ति से प्राप्त होते हैं, पारमहंस से मार्ग द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसी के द्वारा ये बताया गया है कि ठाकुर जी सच्चिदानंद घन विग्रह है, सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद घन सिर्फ भक्ति और भजन से ही प्राप्त होता है, परमहंस। और कैसे परमहंस? भागवत परमहंस के द्वारा प्राप्त होते हैं, योगी परमहंस के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, ज्ञानी परमहंस के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, भागवत भक्त परमहंस के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। ये भाव में परमहंस हैं, इनका भाव परमहंस है। तो भगवान की जो भक्ति है वो भगवान को प्राप्त करा देती है, क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि केवला भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। भक्त्या अहमेकया ग्राह्यः, ये भगवान ने कहा है, एकमात्र भक्ति से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने उदाहरण भी देख लिया कि हाँ, शुद्ध भक्ति से भगवान की प्राप्ति संभव है। तो ठाकुर जी ने जब देखा ब्रह्मा जी को, तो ठाकुर जी तो प्रेम वश में थे,

0: और ब्रह्मा जी के प्रेम वशीभूत होकर ठाकुर जी अतिशय संतुष्ट हुए और उपदेश प्रदान करने का योग्य पात्र समझा ब्रह्मा जी को, और बहुत ही प्यार से उनके हाथों को धारण किया और मधुर हास्य करते करते सुमधुर वाणी में बोलना आरंभ किया। आहा, ये हमारे भगवान कितने प्यारे हैं। उन्होंने ये समझ लिया कि ये तो जगत के प्राणी वर्ग की सृष्टि कार्य में अतिशय उत्कंठित है और मेरा कार्य करेंगे ये, तो ये ही मेरे आदेश का पालन करने का उपयुक्त पात्र है, इनके द्वारा ही मैं सृष्टि कराऊंगा। और इस तरह से ईशत स्मित हल्के मुस्कुराते हुए हंसते हुए ठाकुर जी ने सुललित भाषा में बोलना प्रारंभ किया। क्या कहा ठाकुर जी ने? ठाकुर जी ने बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। भगवान कहने लगे, त्वयाहम तोषितः सम्यग् वेद गर्भ शिश्रक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूट योगिनाम वरं वरय भद्रं ते वरेशम मा भिवांचितम ब्रह्मंत्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनावधिः। देखिए भगवान इतने करुणामय हैं, इतने भक्त वत्सल हैं। भगवान कहते हैं ना कि मैं भक्तों के द्वारा खरीद लिया जाता हूं, और सच्ची बात है, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, ये सच में ही खरीद लिए जाते हैं। यहां उन्होंने कह दिया कि हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए बहुत समय से तपस्या का आचरण कर रहे हो और इससे मैं संतुष्ट हुआ हूं। मोक्ष आदि वासना से युक्त कूट योगी गण मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, मगर तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया। वेद गर्भ कहा है, यानी वेद जिनके गर्भ से प्रकट होते हैं। तो जैसे ही भगवान ने उन्हें वेद गर्भ कहा, वैसे ही उन्होंने समस्त वेदों को ब्रह्मा जी में संचारित कर दिया और कहा कि तुमने मुझे दीर्घ काल तपस्या करके संतुष्ट किया है, और जो लोग अनेक प्रकार की कामना वासना रूपी कपटता से आच्छन्न हैं और योग मार्ग का सहारा लेते हैं या अन्य मार्गों का सहारा लेते हैं, उनके लिए मैं अत्यंत दुर्लभ हूँ, सम्यक रूप से दुर्लभ हूँ, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखिए, ब्रह्मा जी कोई भगवान बनने के लिए सृष्टि करना नहीं चाहते थे। आपको याद होगा, नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से पूछा था, सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं, तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही कहा था कि आप भगवान हैं कि कोई और भगवान है, क्योंकि आपने सृष्टि की, सब लोग आप ही को शीश झुकाते हैं, मैं तो सब जगह आपका साम्राज्य देख रहा हूं, तो क्या आप भगवान हैं? तो याद है ना, ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे प्रभु, ये कैसी है आपकी माया, अरे भगवान हैं जिनकी कृपा से, जिनकी शक्ति से मैंने सृष्टि की, और अब मुझे लज्जा आ रही है कि तुम हमको ऐसा कह रहे हो। तो ब्रह्मा जी ही ये बात सुना रहे हैं नारद जी को कि कैसे मैंने भगवान के दर्शन पाए। और नारद जी और ब्रह्मा जी का ये संवाद, ब्रह्मा जी का अनुभव परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है हमारी, जिसे जारी रखेंगे। हम सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के दर्शन जब ब्रह्मा जी ने प्राप्त किए, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने सुमधुर वाणी में कुछ कहा। तो एक बार तो

मेरा साक्षात्कार ही उसका चरम फल है। देखिए ब्रह्मा जी कोई अपने लिए कुछ चाहते थे ऐसा नहीं है, वो सृष्टि करना चाहते थे, भगवत इच्छा भगवत प्रेरणा थी उनके हृदय में। तो ब्रह्मा जी ना मोक्ष चाह रहे थे ना अपने लिए कोई ऐश्वर्य ही चाह रहे थे, इसलिए भगवान के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने तपस्या की, क्योंकि भगवान ने कहा था, और इसलिए संतुष्ट भी हो गए ठाकुर जी कि ये तो ना मोक्ष चाहते हैं ना कुछ और चाहते हैं, ये तो सिर्फ मेरी सेवा करना चाहते हैं मेरे आदेशों का पालन करके। तो प्रभु प्रसन्न हो गए और अब ये कह रहे हैं कि कोई वर मांगो, वर मांग लो जो भी चाहो, क्योंकि मैं ही एकमात्र वर प्रदान करने वालों का भी करता हूँ। यानी अगर विभिन्न देवता भी वर देते हैं तो मेरी इच्छा से देते हैं, मेरी शक्ति से देते हैं, मैं अनुमोदन करता हूँ, शक्ति मैं देता हूँ, तो मैं ही प्रदान कर सकता हूँ वर। देखिए देवी देवता अगर वर देते हैं और भगवान देते हैं तो इसमें बड़ा ही फर्क है। अगर कोई मान लीजिए अपने ऐश्वर्य के लिए अपने भोग के लिए सुख सुविधा चाहे और देवी देवताओं का भजन करे या उपासना करे और उसे कुछ मिल भी जाए तो वो सारी दुनियावी चीजें उससे चिपट जाती हैं, वो फिर भगवान का भजन नहीं कर पाता क्योंकि वो तो भोगने में मस्त हो जाता है। लेकिन कोई भगवान से मांग ले कि मुझे ये सुख चाहिए ये सुख चाहिए ये सुख चाहिए, तो भगवान कहते हैं सब मिलेगा। ऐसे देते हैं भगवान कि सुख तो मिलता है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती। भगवान आसक्ति को काट देते हैं, सब कुछ है मगर आसक्ति नहीं है, आसक्ति भगवान के चरणों में। तो ब्रह्मा जी ने मांगा कुछ नहीं तो भी ब्रह्मा जी के लोक में बहुत ऐश्वर्य है, जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए इंद्र जी भी हमेशा आकुल व्याकुल रहते हैं कि मैं अगर ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य प्राप्त कर पाता, मांगा नहीं बिन मांगे मिल गया है ना। तो भगवान कहते हैं देखो मेरा जो साक्षात्कार है ना, साक्षात्कार यही समस्त वरदानों का चरम फल है और सत्य है, सत्य है। जो भगवान को चाहते हैं, उनकी सेवा चाहते हैं, उनका सामिप्य चाहते हैं, उनको सुख देना चाहते हैं, उनके लिए सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। ठाकुर जी सेवा दे दें और कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारे क्या नहीं है, सब कुछ तो है। आचार्य कहते भी हैं, हरि हे तुम्ही जगतेर पिता तुम्ही जगतेर माता दयती तनय हरि तुम्ही, तुम्ही सुहृन मित्र गुरु तुम्ही गति कल्प तरु त्वदीय संबंध मात्र आमी, तव भृत्य परिजन गति प्रार्थी अकिंचन प्रपन्न तुमार्षि चरणे, तव सत्व तव धन तुमार पालित जन अमार ममता तव जने, ए भक्ति विनोद कहे अहमता ममता नोए श्री कृष्ण संबंध अभिमाने, सेवार संबंध धरी अहमता ममता कुरी तदीतर प्राकृत विधाने। बहुत सुंदर बात है, यामुन स्तोत्र में कहा गया है कि हे प्रभु आप इस जगत के पिता हैं, आप हैं। कोई मुझे कहे मैं पिता हूं, बच्चा कहे कि आप पिता हो या आप माँ हो तो गलत है, आप ही हैं। पत्नी बच्चा बच्ची सब आप हैं और सब आपके हैं, आप ही सुहृद मित्र हैं, यानी आप सुहृद हैं हमारे प्रभु, आप ही गुरु हैं, आप ही गति हैं, आप ही कल्पतरु हैं, बस आपका संबंध ही मुझे पता है। और ये जितने मेरे परिजन हैं वो कौन है, ये आपके सब सेवक हैं प्रभु, सेवक हैं, और मैं प्रार्थी हूं अकिंचन हूं आपके चरणों में प्रपन्न हूं शरणागत हूं। तो अगर कोई कहे नहीं भाई तुम तो अपने बच्चों से भी प्यार करते हो, धन से भी प्यार करते हो, सबसे तो प्यार कर रहे हो, नहीं जी मैं भगवान से प्यार करता हूं और ये भगवान के जन है इसलिए मेरी इनमें ममता है। तव सत्व तव धन तुम्हार पालित जन, ये सब तुम्हारे हैं प्यारे, ये तुम्हारे द्वारा प्रदत्त हैं, ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे पालित जन हैं, और मेरी ममता अपने बच्चों से नहीं है, मेरी ममता तुम्हारे जन से है, वो जो तुम्हारा जन है तुम्हारे द्वारा भेजा गया है, मेरी ममता उससे है, तुम्हारे संबंध को लेकर मेरी ममता अवस्थान करे, जहां तुम्हारा संबंध नहीं है वहां मेरी ममता भी नहीं है। तो ये प्रभु मेरे अंदर न अहमता रहे कि मैं हूं और ये मेरा है, न ममता रहे अहमता, ना रहे ममता भी ना रहे, एक ही

अभिमान रहे कि सब आपके हैं। कृष्ण संबंध अभिमान में जीता रहूं, सेवा का संबंध धरूं, सेवा के संबंध से कि आपके हैं तो इसलिए सेवा कर रहा हूं, आपके हैं आपके जन की सेवा कर रहा हूं, आपने मुझे इस काम में नियुक्त किया है तो काम कर रहा हूं आपका, मेरा कुछ नहीं है। बस ऐसी बुद्धि प्रभु कर दो, ऐसी ही बुद्धि कर दो। तो ब्रह्मा जी का जो यहाँ पर आशय है वो ऐसा ही है। ब्रह्मा जी भी नहीं कह रहे हैं कि मुझे बड़ा सृष्टिकर्ता बनना है, ना। शुकदेव महाराज जी परीक्षित से कह रहे हैं कि देखिए महाराज, ब्रह्मा निष्काम भक्ति भावित अंतःकरण से 1000 वर्ष तक श्री गोविंद चरण कमलों का ध्यान किए, तो भगवान ने पहले उन्हें अपना मायातीत वैकुंठ धाम दर्शन कराया, फिर पार्षद गण का दर्शन कराया और अपने समस्त ऐश्वर्य भी दिखाए। श्री सुखदेव जी ने ब्रह्मा जी के श्री गोविंद चरण प्राप्ति का वर्णन करते हुए कहा है, यत पारम हंसेन पथाधि गम्यते, यानी जो चरण पारम हंस पथ के पथिक गण ही प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मा जी उसी चरण में पतित हुए, गिरे, दंडवत हुए। तो जिस तरह से नीर और क्षीर यानी दूध और जल मिश्रित होता है, तो जो हंस हैं वो जल का त्याग कर देते हैं लेकिन दूध पी लेते हैं, ऐसे ही समस्त साधक चित और जड़ मिश्रित जगत में जड़ भाग त्याग देते हैं, चित मात्र ग्रहण करते हैं, उनका भी हंस का स्वभाव हो जाता है, इसीलिए हंस कहा गया। हंस गण क्षीर मिश्रित नीर त्याग कर देते हैं, यानी जहां दूध में जल मिला है वो जल त्याग देते हैं, दूध पी लेते हैं, लेकिन हमेशा वो जल में विचरण करते हैं, है ना। तो जो समस्त साधक जड़ और चित वस्तु का विवेक प्राप्त कर लेते हैं कि जड़ क्या है, तो वो जड़ में रहते हैं पर अनासक्त भाव से संबंध रखते हैं, वही हंस हो जाते हैं, हंस हो जाते हैं। और जो लोग किसी भी प्रकार से जड़ से संबंध नहीं रखते वो परमहंस हो जाते हैं, जड़ से संबंध छोड़ करके वो भगवान से संबंध स्थापित कर लेते हैं, ये भागवत परमहंस होते हैं। तो हमने आज जाना कि भगवान शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं। भक्ते अमाम अभिजानति या मनुष्यास्मि तत्वतः, भगवान को तत्वतः अगर किसी को जानना है तो भी उसे भक्ति का ही सहारा लेना पड़ता है, लेना चाहिए भी, पड़ता तो मैंने ऐसे कह दिया कि जैसे कोई बहुत श्रम करने की बात है, पर ऐसा नहीं है। भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम गान कीजिए, भगवान से प्यार कीजिए, भगवान को सुंदर सुंदर भोग धरिए, भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए, धाम की सेवा कीजिए, और किसी भक्त की कभी भी निंदा मत कीजिए। वो जो कृष्ण नाम लेता है उसकी निंदा कभी मत कीजिए, जो भगवान का नाम लेता है उसकी निंदा किसी हाल में मत कीजिए, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, उसे उसके भगवान देख लेंगे, है ना। वो भगवान की जिम्मेवारी बन गया, भगवान जानते हैं उसके बारे में, ठाकुर जी देख लेंगे। निंदा कभी नहीं करनी है, किसी की भी नहीं करनी है, कोई भी क्यों ना हो, भक्त की निंदा हमेशा हमेशा त्याज्य है, क्योंकि फिर भगवान कभी नहीं मिलेंगे। श्री चैतन्य भागवत में भगवान ने कह दिया है, मैं भक्त निंदुक को कभी नहीं मिलता। जगाई मदाई का भी उद्धार संभव है, वो पापिष्ट थे पर वो निंदुक नहीं थे। इसलिए निंदा से बचिए, निंदा मत कीजिए, दोष दर्शन मत कीजिए, दूर रहना है दूर रहिए, भगवान का भजन कीजिए और भगवान को अपना ही मानिए, भगवान आपके ही हैं। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था आज का, और इसी तरह आने वाले कार्यक्रम में भी सुंदर चर्चा रहेगी। और अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: तिलक मधुर है, अहो मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है।
1: ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय केरलम दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उत्तराखंड में आज तेज बारिश और बिजली गिरने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। चार धाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित हो गई है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में तेज बारिश और बिजली गिरने का अनुमान है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। और एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब आपके साथ रहेगा एसआर यानी संतोष राव, क्योंकि ये प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, ईश्वर ने ब्रह्मांड को रचा और फिर इंसान ने अपने अपने हिसाब से दिन महीने साल बना दिए, है ना। लेकिन एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी कि हमारा दिल, दिमाग और ये शरीर फिर

ही चलता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की इच्छा के अनुसार। अब हम इंसान ने कई गीत रचे हैं और उन गीतों को भी हिट बनाया है, लेकिन जब वही सुपर डुपर हिट गीत जो होते हैं ना सुबह सुबह सुनने को मिले, तो हमारा दिल और दिमाग ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि प्लीज इस गीत को सुबह सुबह नहीं बल्कि दिन के समय सुनाओ तो और अच्छा लगेगा। कहने का मतलब यही है कि हर समय एक समय के लिए मुकर्रर किया गया है, और जब उसी मुकर्रर समय में वो काम किया जाता है तो हमको ज्यादा सुकून मिलता है और दिल को बहुत तसल्ली भी होती है। अब जैसे ये हमारा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम है, एक मुकर्रर समय पर शुरू होता है रोजाना 7 बजे से 9 बजे तक, और हम उस दिन के बारे में मतलब आज के बारे में हम आपको बताते हैं, और आपको ये बात पता है और इसीलिए इस प्रोग्राम का आप भी करते हैं इंतजार, है ना। अब चाहे इस प्रोग्राम को लेकर मैं आऊं एसआर यानी संतोष राव लेकर आए या कोई और भी आरजे, आप उतना ही प्यार देते हैं इस प्रोग्राम को, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत उसी प्यार के साथ करते हैं और इस खूबसूरत गीत के साथ करते हैं जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां कर रहा है इस समय को। गौर से सुनिए।

जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है कि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा मुस्कान लाता है, कामयाबी लाता है। और इसी बात को इंदीवर साहब ने 1984 की फिल्म हैसियत के लिए लिखा था कि धीरे धीरे सुबह हुई जाग उठी जिंदगी, पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को। बेहतरीन गीत। यानी सबको अपना अपना फर्ज निभाना है और समय चक्र का ध्यान भी रखना है, क्योंकि नेचर उन्हीं लोगों को तराशता है, निखारता है और कामयाबी की डगर पर आगे बढ़ाता है जो समय के चक्र के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। और हाँ, और ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं। और एक बात और, जब लोग नेचर के अगेंस्ट में जाकर अपने कामों को अंजाम देने लगते हैं ना, तो नेचर भी भयावह रूप दिखाने लगती है। जैसे 13 सितंबर 1922 में प्रकृति ने अपना भयावह रूप दिखाया था लीबिया के अलजीरिया में। पता है आपको, उस दिन धरती पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था, 136.4 डिग्री फॉरेनहाइट, मतलब 58 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस। और अब अगर अब तक का सबसे ठंडे दिन पर नजर डालें तो ऑफिशियल WMO रिकॉर्ड के अनुसार पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा दिन था 21 जुलाई 1983। रूस के वोस्तोक स्टेशन पर जहां थर्मामीटर ने न्यूनतम तापमान मापा था -89.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 89.2, वो भी माइनस में। टेम्परेचर सुनते ही इतना तो मुझे कपकपी सी आने लगी आने लगती है ना। वैसे अनऑफिशियल सैटेलाइट रिकॉर्ड के अनुसार 10 अगस्त 2010 को पूर्वी अंटार्कटिका के एक ऊंचे पठार पर तापमान रिकॉर्ड किया गया था -94.7 डिग्री तक, लेकिन इस तापमान को थर्मामीटर से नहीं नापा गया था, इसलिए इसे गिनीज बुक में जगह नहीं मिली। खैर, सर्दी हो गर्मी हो, इन सब की बात तो हम कर ही रहे हैं। अगर हम गर्मी की बात करें तो भारत के इतिहास का सबसे गर्म दिन 19 मई 2016 को दर्ज किया गया था। और इस दिन राजस्थान के जोधपुर जिले में एक जगह है फलौदी, उस शहर में थर्मामीटर पता कितना टेम्परेचर दिखा रहा था, 51 डिग्री सेल्सियस। और ये भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा इसे भारत में दर्ज अब तक का सबसे उच्चतम और प्रमाणिक तापमान माना गया है। तो वहीं भारत में अब तक का सबसे कम तापमान जनवरी 1995 में दर्ज किया गया था लद्दाख के द्रास सेक्टर में, जहां न्यूनतम तापमान था -45 डिग्री सेल्सियस। वैसे स्थानीय दावों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसी 1995 की सर्दियों के दौरान द्रास में कहा जाता है कि तापमान -60 डिग्री तक पहुंच गया था, -60 डिग्री सेल्सियस। और इसे कहा जाता है कि इसे साइबेरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा हुआ क्षेत्र बनाता है लद्दाख का द्रास।

वैसे हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी है ना, कई गीत ऐसे फिल्माए गए हैं कपकपाती सर्दी में, जैसे फिल्म हैदर का गीत है बिस्मिल। इस गीत को लगभग -15 डिग्री से -17 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में फिल्माया गया था, कश्मीर की कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के बीच। अभिनेता शाहिद कपूर ने डांस किया था और कहते हैं कि शूट के दौरान हालात ये थे कि क्रू और अभिनेता को हर 2 स्टेप्स डांस करने के बाद हीटर के पास बैठना पड़ता था। एक और फिल्म आई थी दिलवाले, गेरुआ गीत जिसमें था, आपको याद होगा, और इसको फिल्माया गया था आइसलैंड के बर्फीले ब्लैक सैंड के बीच पर और ग्लेशियर में, और इस गाने की शूटिंग आइसलैंड की जमा देने वाली बर्फीली हवाओं और ठंडे मौसम के बीच हुई थी। शाहरुख खान और काजोल को जमी हुई झीलों और बर्फीली चट्टानों के पास परफॉर्म करना पड़ा था, आपने देखा होगा फिल्म में, जहां काजोल कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक पतली सी साड़ी पहनी हुई है, और शूटिंग के दौरान ठंड इतनी थी कि वे दोनों जमने की कगार पर पहुंच गए थे। जी हाँ, तो वहीं माधुरी दीक्षित ने शिफोन की साड़ी पहनकर डांस किया था अलास्का के खतरनाक और बेहद ठंडे ग्लेशियर पर, उस दौरान तापमान था 0 से कई डिग्री सेल्सियस, अनुमान लगाया जा रहा है कि -17 से 23 डिग्री तक था, और साथ में तेज हवाएं भी चल रही थी, जिसे और इस गीत को कहते हैं कि बॉलीवुड का सबसे कठिन विंटर शूट्स में फिल्माया गया ये गीत, और ये गीत था फिल्म पुकार का किस्मत से तुम हमसे मिले। अगर हम पुराने दौर की बात करें तो अभिनेता शम्मी कपूर का बर्फ में कलाबाजियां खाने वाला गीत याद है आपको, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली फिल्म का 1961 का, ये गाना भी विंटर शूटिंग की मिसाल माना जाता है। बिना किसी आधुनिक थर्मल गियर से या हीटर के उन्होंने भारी बर्फबारी के बीच इस जोशीले गाने को फिल्माया था। चलिए, इससे पहले कि हम सब इन सब बातों को सोचकर कपकपाने लगे और आपको दिलवाले फिल्म का गीत सुनाते हैं जिसका जिक्र अभी मैंने किया गेरुआ, तो आनंद लीजिए अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया ये गीत और प्रीतम द्वारा म्यूजिक कंपोज किया गया ये प्यारा सा गीत आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। इसके बाद हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें आकाशवाणी एफएम रेनबो के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, जिसे आप सुन रहे हैं एसआर यानी संतोष राव के साथ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: केले का छिलका सड़क पे? ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर? ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों के साथ मिलकर नई जगहों को तलाशने और आजादी को महसूस करने का ये ऑल टाइम फेवरेट एंथम है, आपने सुना फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है। वैसे हम सब कभी यही दिल चाहता है कि हम सब अपनी भागम भाग जिंदगी में से जो कुछ दिन है ना, अपनों के संग ऐसी जगह जाएं जहां पर सुकून हो, ताजगी हो, सब टेंशन से फ्री हो, है ना। और इसीलिए हम कभी कभी प्लान भी कर लेते हैं।

की चाहत को ध्यान में रखकर आज ही के दिन विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग विभिन्न जगह जाकर नई जगहों का आनंद ले सके और वहां की सुंदरता को निखार सके और अपने जीवन में एक नई ताजगी भी ला सके। पर्यटन के महत्व और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 27 सितंबर को यानी आज ही के दिन ये दिवस मनाया जाता है। और आज विश्व पर्यटन दिवस की जो थीम रखी गई है इस वर्ष की, वो है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज प्लान कीजिए ऐसी जगह पर जाने का तो जो बन जाए आपकी जिंदगी का यादगार लम्हा। और अब आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा ही यादगार गीत जिसे जब जब आप सुनते हैं ना तो एहसास होता है जिंदगी के महत्व के बारे में। जी हाँ, घूमना फिरना ऐश करना, लेकिन साथ में जिंदगी के बारे में कभी भी, जिंदगी को कहते हैं ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार ईश्वर ने दी है। इसीलिए जिंदगी में जितनी भी हैं रीति रिवाज हैं उनको भी मानना चाहिए और साथ ही साथ जिंदगी के बारे में जो जिंदगी का फलसफा है उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की यही रीत है कि हार के बाद ही जीत है। और कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, है ना, जो जीत जाता है। मतलब कोशिश करते रहना चाहिए, जब तक हम कोशिश करेंगे ना तो हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। एक ऐसे ही कनाडा के मशहूर नदी संरक्षक थे मार्क एंजिलो। अब ये क्या करते थे, ये नदी किनारे बैठ जाया करते थे और देखा करते थे। और जो बचपन में इन्होंने नदी में जाकर तैरते थे, खेलते थे उस पानी से, आगे चल के वो नदी सूख जाती है। अब ये बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर ये सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे नदियों की रक्षा हो सके, नदियों को फिर से पानी से भरा जा सके। तो इस विषय पर ये आज, अब जैसे जैसे ये बड़े हुए, इनका दिमाग इसी क्षेत्र में जाने लगा और इन्होंने 1980 में बीसी रिवर्स डे शुरू किया और 2005 में यूएन के वाटर फॉर लाइफ डिकेड के दौरान इसे वर्ल्ड रिवर्स डे बना दिया गया। जी हाँ, और तब से 27 सितंबर को हर साल विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। 100 से अधिक देशों में लाखों लोग मनाते हैं इसको, ताकि नदियों को बचाने का, सफाई के प्रति जागरूकता, संरक्षण की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। और इस साल की थीम है 2026 की वर्ल्ड रिवर्स डे की, नो फॉरेस्ट नो रिवर्स नो वाटर नो लाइफ, यानी जंगल नहीं तो नदी नहीं, नदी नहीं तो जीवन नहीं। वैसे हम सब इस चीज का अनुभव तो कर ही रहे हैं ना कि जंगल जितने कम होते जा रहे हैं, मौसम बदलता जा रहा है, मौसम जैसे पहले हुआ करते थे कि सर्दी गर्मी बारिश, हम बता देते थे कि बारिश का मौसम 7 जून से शुरू हो रहा है, सर्दी का इस समय शुरू होगा, लेकिन अब बताना मुश्किल हो जाता है, मौसम विभाग भी नहीं बता पाता है ना, क्यों, क्योंकि हमने जंगलों को काट दिया है, हमने नदियों को सुखा दिया है, और ये सब हम लोगों ने ही किया, इसीलिए आज ये चीज मनाया जा रहा है वर्ल्ड रिवर्स डे। इसलिए हम सबों को मनाना चाहिए, सिर्फ स्कूलों में या कहीं पे परफॉर्म कर दिया, एक दो गीत बना दिए, लिख दिए, गा दिए या कॉन्फ्रेंस कर ली, इससे कुछ नहीं होता। हर इंसान को आगे होना, आगे आना होगा और इस चीज के लिए सोचना होगा कि अगर ये नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे लिए क्या बनेगी, क्या करेगी, उनके लिए पानी, क्योंकि जल तो जीवन ही है ना। इसलिए कहते हैं नदियां चले चले रे धारा, तुझको चलना ही होगा, है ना। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर और एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि हार नहीं माननी है बल्कि आगे बढ़ते रहना। और जो लोग इस मंत्र को थाम लेते हैं और इस मंत्र को अपने जहन में बिठा कर आगे बढ़ते रहते हैं, वो हमेशा परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना आए, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी कोशिश, 1972 में आई थी, गुलजार साहब द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी जिसमें संजीव कुमार और जया बच्चन थे, और ये भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर फिल्म मानी जाती है। इसमें क्योंकि संजीव कुमार जया बच्चन एक ऐसे बधिर दंपति का किरदार निभाया था जो समाज की मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी संवारते हैं। और अगर अभी की हम बात करें, 2005 की एक ब्लैक फिल्म आई थी संजय लीला भंसाली की, आई थी, आपने देखा होगा, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की, क्या जबरदस्त फिल्म थी, जिसमें रानी मुखर्जी ने एक ऐसी लड़की मिशेल का रोल किया था जो सुन बोल और देख नहीं सकती थी, और उन्हें सांकेतिक भाषा के द्वारा वो बातचीत किया करते हैं। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें ईश्वर ने हम सबको जीवन दिया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी भी वजह से बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए विश्व बधिर दिवस मतलब वर्ल्ड डीफ डे आज मनाया जाता है। और ये सितंबर महीने का जो आखिरी सप्ताह होता है, आखिरी रविवार जो होता है, उस दिन मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में, इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ मतलब WFD ने की थी, और ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए इस दिन को बनाया गया था, और ताकि जो इस तरह के लोग हैं उनकी समस्याओं के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, उनकी जो सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज जिसे कहा जाता है उसके महत्व को समझना चाहिए और बताना चाहिए, और ऐसे लोगों को शिक्षा, नौकरी और जानकारी में बराबर का मौका भी देना चाहिए, भेदभाव को खत्म करना चाहिए। और इसीलिए आज जो सितंबर का आखिरी रविवार होता है, इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड डीफ डे को। और 21 से 27 सितंबर तक इंटरनेशनल वर्क वीक ऑफ डीफ पीपल चल रहा है, और 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे भी था। और कहा जाता है, ऐसे सर्वे बताते हैं, आंकड़े बता रहे हैं, और WHO के मुताबिक दुनिया में 46.6 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को ये सुनने की गंभीर समस्या, और ये कहा जाता है कि 2050 तक ये संख्या 90 करोड़ तक हो सकती है। तो इसीलिए हम आज के इस दिन को वर्ल्ड डीफ डे मना रहे हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से

0: दोस्तों 1976 की फिल्म कभी कभी का ये गीत सुना आपने, जिसे बड़े पर्दे पर गाया अमिताभ बच्चन ने, और इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था भारतीय सिनेमा के मशहूर फिल्मकार और रोमांस किंग कहे जाने वाले यश चोपड़ा जी ने। आज ही के दिन यानी 27 सितंबर 1932 को यश चोपड़ा जी का जन्म हुआ था। 1959 में धूल का फूल से करियर की शुरुआत करने वाले यश चोपड़ा जी ने वक्त, दाग, दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर, सिलसिला, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, वीर जारा, रब ने बना दी जोड़ी, जब तक है जान जैसी कई फिल्मों के निर्माण और डायरेक्शन से जुड़कर बॉलीवुड को एक नई दिशा दिखाई। और इसीलिए आपको भारतीय सिनेमा के मशहूर फिल्मकार और रोमांस किंग के नाम से जाना जाता है। आज आपका जन्म 1932 में हुआ था, आज इनकी जयंती पर आकाशवाणी एफएम रेनबो करता है इनको नमन।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद एसआर बोले तो संतोष राव। और आज एक और व्यक्ति, ऐसे खास व्यक्ति हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है, वो हैं सरदार वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल। और 27 सितंबर, आज ही के दिन इनकी जयंती है, सॉरी, आज ही के दिन 27 सितंबर 1873 को गुजरात के करमसद में इनका जन्म हुआ था। और 5 भाइयों में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे छोटे थे। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये भाई हैं। और इनकी खासियत ये रही है कि 1895 में डिस्ट्रिक्ट प्लेदार की परीक्षा इन्होंने पास की, गोधरा में वकालत शुरू की और 1906 में इंग्लैंड गए और कानून पढ़ा वहां, और 1908 में बैरिस्टर बनकर बॉम्बे में इन्होंने वकालत शुरू की। छोटे भाई वल्लभ भाई ने बड़े भाई के सम्मान में अपनी इंग्लैंड की पढ़ाई 2 साल के लिए टाल दी थी, और ये उस समय की बात है। और 1912 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये चुने गए थे और 1918 में इंपीरियल काउंसिल में चुने गए थे। और 1922 में चौरी चौरा के बाद ये कांग्रेस से नाराज होकर स्वराज इन्होंने पार्टी बनाई थी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के साथ। 24 अगस्त 1925 में आपने एक इतिहास रचा, पहले भारतीय बने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी आज की लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर हम कह सकते हैं चुने गए थे, और 1927 में दोबारा चुने गए। पार्लियामेंट की आजादी 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में जब बम फेंका था, तब अंग्रेज सुरक्षा सरकार थी ना, अंग्रेज सरकार जो थी वो सुरक्षा अपने हाथ में लेना चाहती थी, पर विट्ठल भाई अड़ गए और स्पीकर का अधिकार इन्होंने बचाए रखा। अलग सेक्रेटेरिएट पहली बार संसद का इन्होंने अपना स्वतंत्र सेक्रेटेरिएट बनाया जो सिर्फ स्पीकर को रिपोर्ट करता था, सरकार को नहीं। और संसद की सुरक्षा व्यवस्था भी इन्होंने बनाई जो 2024 तक चली। कैंसर से पीड़ित थे और 22 अक्टूबर 1933 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इनका निधन हो गया। जर्मनी में इनका अंतिम

संस्कार हुआ। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, इनके भाई को तो बड़े भाई विट्ठल भाई को संसदीय परंपराओं का निर्माता कहा जाता है। आज इनके जयंती पर आकाशवाणी FM रेनबो करता है इनको शत शत नमन।

जी हाँ दोस्तों, महेंद्र कपूर की मधुर आवाज में ऐसे ऐसे नगमे हैं, और खास तौर से देशभक्ति के गीतों की अगर हम बात करें ना, तो एक से बढ़कर एक गीत है। 9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में जन्मे महेंद्र कपूर जी का शुरू से ही संगीत के प्रति एक अलग ही लगाव रहा है, और इसीलिए इन्होंने पंडित हुसैन लाल, पंडित जगन्नाथ, बुआ उस्ताद, उस्ताद नियाज अहमद और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से संगीत की शिक्षा ली। लेकिन इन्होंने हमेशा इस बात को माना कि मोहम्मद रफी साहब इनके गुरु हैं और उन्हीं से ये प्रेरणा लेते रहते हैं। वे ही शांताराम की फिल्म नवरंग 1958 में उनका गाया गीत था ना, आधा है चंद्रमा रात आदि, बहुत लोकप्रिय हुआ था, और ये उनकी पहली कामयाबी थी हिंदी फिल्म संगीत के लिए। गुमराह, हमराज, वक्त और सीरियल महाभारत के लिए इन्होंने कई यादगार गाने गाए, और संगीत जगत में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1972 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया। 2008 में आज ही के दिन मुंबई में उनका निधन हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि पर आकाशवाणी एफएम रेनबो करता है उनको शत शत नमन। दोस्तों समय हुआ है 7:55, 56, 57, मैं ऐसे काउंट कर लेता हूं, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना और सही कदम उठाना है तो आपको सावधानी भी रखनी होगी। और ऋचा आ चुकी हैं, इस कार्यक्रम को अगले भाग को आगे बढ़ाएंगे 8 बजे तक। तो इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, लेकिन 9 बजे आपके साथ फिर जुड़ जाएगा लेकर प्रोग्राम कौन सा, दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफ एम

एफएम रेनबो पर समय हुआ है इस समय की मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय केरलम दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। भारत के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में आज तेज बारिश और बिजली गिरने से लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। चार धाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में तेज बारिश और बिजली गिरने के अनुमान है। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब खेल समाचार में, क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा और एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हो गई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी पर शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा भाग। एंजॉय कीजिए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का एक परफेक्ट डोज मिलता है एक सिर्फ आपको 102.6 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो पर। एंजॉय कीजिए मेरे यानी ऋचा के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।
2: लव मेक्स यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स।

गर्मी थी कि यकीन मानिए ना घर के अंदर चैन था ना घर के बाहर चेंज था। और उसके बाद जैसे ही ये 26 सितंबर आया न जाने क्या हुआ कि पूरे मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिल्ली वालों के रखे हुए कंबल एक बार फिर से बाहर निकल आए। बिल्कुल सही कि सुना आपने, दिल्ली में सोमवार को जो मौसम खुशनुमा हुआ है ना, सुबह बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं चली, दोपहर में कई इलाकों में हल्की बारिश बूंदाबांदी भी हुई जो रात तक रुक रुक कर होती ही रही। सफदरजंग में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। वे तापमान की अगर बात करें तो 29.2 डिग्री तापमान को रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 5 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री रहा और ये तापमान भी कम है। और आपको बता दूं कि पहाड़ों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है और बंगाल की खाड़ी में जो मौसमी सिस्टम बदला है, सक्रिय मौसमी सिस्टम्स के जो आसार बदले हैं, इसकी असर 2-3 दिन और आपको दिखेगा। लेकिन तापमान एक बार फिर से बढ़ेगा, यानी कि सर्दियों वाली जो आहट है ना वो नहीं है, जो हमें अक्सर तौर पर दीपावली के बाद जो हम महसूस करते हैं गुलाबी सर्दियां, ये वो नहीं है। एक्चुअली ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये मौसम में आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से आप देख ही रहे हैं कि कई जगह बारिश हो रही है और कई जगह आपको सुनने में आ रहा होगा कि बहुत सारी जगह पर आज भी बहुत तेज बारिश होने के अनुमान है और येलो अलर्ट से लेकर रेड अलर्ट तक कई सारे स्टेट्स में जारी किया गया है। तो अगर आपके स्टेट में भी है तो आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अब आज संडे भी है, आप घर पे भी रहें, एक सुहावना मौसम है, अपने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आज के तापमान की बात करें तो 28 से लेकर 30 सितंबर के बीच में मौसम साफ रहेगा। तापमान की अगर कर लें बात तो 27 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम लगभग 22 डिग्री रहने की संभावना है। बारिश रुक जाएगी आज के बाद और आज या कल से आपको एक बार फिर से गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो प्यारी प्यारी सी सर्दियां है ना 2 दिन वाली, इन्हें बस इंजॉय कीजिए क्योंकि ये अभी सर्दियों वाली सर्दी नहीं है। ये केवल आपको एक एहसास दिलाने के लिए है कि मौसम इतना सुहाना भी होता है। तो जो भी सिचुएशन है एंजॉय कीजिए और बने रहिए रिचा के साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।

अभी कुछ दिनों पहले आपको पता ही है कि हम सभी ने SIR की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लिया और साथ ही जो अपने जरूरी दस्तावेज हैं वो चुनाव आयोग को दिए ताकि हमारा लिस्ट में नाम आ सके और हम भी ये जो चयन प्रक्रिया है उसके भागीदार बन सकें, वोटिंग दे सकें। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है और आप एक आपत्ति जाहिर की गई है आपके लिए, तो उसके लिए आपको ऑफिस चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो BLO हैं वो खुद ही आपके घर आएंगे। इसके अतिरिक्त वोटरों को जरूरी जो दस्तावेज हैं वो लेकर ECI नेट पर अपलोड करने की जरूरत है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो BLOs हैं वो आपके घर आएंगे और साथ ही आकर आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए इसे इंश्योर करेंगे, लेकिन आपको सहयोग देना है और साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी आपको तैयार रखना है ताकि जो ज़रूरी है जिससे प्रूफ हो सके कि आप दिल्ली के वासी हैं, आप दिल्ली में ही रहते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। कई लोगों के क्योंकि ये भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो पहले कहीं और रहते थे और उसके बाद अब वो कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, तो ऐसे में उनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं है, तो उन्हें क्या करना होगा? तो उसके लिए सबसे पहले आप ECI की वेबसाइट पे अपना नाम चेक कीजिए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है तो 30 अक्टूबर तक आप Form 6 भरकर जमा कर सकते हैं अपनी एक ID, एड्रेस प्रूफ और साथ ही घोषणा पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका नाम गलत आया है SIR के लिस्ट में और आप चाहते हैं कि उसमें सुधार करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक फोटोकॉपी दें एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसमें आपका नाम बिल्कुल सही लिखा हो। जरूरत पड़ने पर ERO या BLO वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए भी कह सकते हैं। अगर जो नोटिस आपको मिला है और ऑनलाइन माध्यम से भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए BLO, ERO या AERO को आपको पेश होने के लिए कह सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड अगर आपका कैंसिल हो गया है क्योंकि आप किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में शिफ्ट हो गए थे, तो आपका नोटिस कहाँ आएगा? इस बात को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली से हरियाणा में शिफ्ट हुए हैं तो आपका नोटिस कहाँ आएगा? तो अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं और वहाँ की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ की लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना होगा। आपको बताना होगा कि आप वहाँ रहते हैं और साथ ही अपने जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रस्तुत करने होंगे। इस तरह की कई सारी क्वेरीज हैं।

और इनके सॉल्यूशन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना कर रहा है आपका इंतज़ार, तो इस गाने को सुनिए, इंजॉय कीजिए और साथ ही आपको बता दूं कि आप भी मुझ तक अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है, 9868107070 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कि कैसा जा रहा है आपका संडे, कैसा है आपके यहाँ का मौसम, या अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसा है ट्रैफिक का हाल, बताइए और एंजॉय करते रहिए मेरे साथ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं।

0: याद रखोगे।
1: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूँ आपके साथ ऋचा और इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं जो बता रहे हैं कि उनके शहर का हाल कैसा है। तो आप भी शेयर कर सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो बता सकते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है ताकि हम बाकी लोगों को भी बता सकें। आज मैंने आपको कहा ही था कि देखिए फॉर्म जो है वो अगर SIR के जो फॉर्म्स हैं अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। आप 30 अक्टूबर तक की डेट दी गई है जब अपना फॉर्म 66 भरकर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमें पता नहीं होता कि हम ऑनलाइन सबमिट कैसे करें या ऑफलाइन सबमिट कहाँ करें। तो आज का वो दिन है और इसके साथ ही आज और मंगलवार और बुधवार को विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से। 18 से लेकर 25 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं के लिए नामांकन के लिए दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों को 29 और 30 को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा एक विशेष कैंप भी लगाया गया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO मतदाता सूची के लिए खाली फॉर्म 6 शामिल करने के लिए आपको न केवल ये फॉर्म देंगे बल्कि आपकी सहायता भी करेंगे, मार्गदर्शन भी देंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। अलग अलग इलाकों में नागरिकों के सभी मतदाता केंद्रों पर आपको ले जाया जाएगा। साथ ही योग्य नागरिकों को नामांकन के लिए 27 सितंबर को एक कैंप और आयोजित किया जाएगा। अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी या पूरी करने वाले इन कैंप के दौरान सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही SIR में अगर कोई गड़बड़ी मिली है तो फॉर्म जमा करके आप इसे ठीक भी करवा सकते हैं। तो आज का वो दिन है जहां आप जा सकते हैं। तो आज से ये कैंप कल से ये कैंप एक्चुअली शुरू हो गए थे और यहाँ इन कैंप्स में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो और क्या क्या मिलेगा आपको ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक गाना आपका इंतजार कर रहा है तो जरा इस गाने को सुनकर आइए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जरूरी है कि आप तक एंटरटेनमेंट भी पहुंचे। तो बस इस गाने को सुनिए, इंजॉय कीजिए और बने रहिए ऋचा के साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एंटरटेनमेंट का एक परफेक्ट डोज इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और आप इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एयर की जो मोबाइल ऐप है ना उसके माध्यम से भी सुन सकते हैं। और सुनना जरूरी इसलिए है क्योंकि न केवल एंटरटेनमेंट करना हमारा पर्पस है बल्कि कोशिश रहती है कि आप तक एकदम सही जानकारी पहुंचे जो आपके बहुत काम की हो। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आप कोई काम शुरू करने का सोच रहे हैं, कोई कारोबार करने का सोच रहे हैं, या किसी बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप की प्लानिंग है, या फिर कोई छोटा मोटा घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि कोई किराना की दुकान, सिलाई कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई खोलना चाहते हैं, या कोई और छोटा कारोबार करना चाहते हैं और उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, और आप सोच रहे हैं कि भला कहाँ जाएं, किस बैंक में जाएं, एक बैंक हमें पैसा भला कैसे देगा, हमारे पास तो कोई गारंटी भी नहीं है, या इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन इस समस्या का एक हल है एक योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सरकारी योजना की जो छोटे कारोबार को शुरू करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए आपको मदद देती है। इस योजना के तहत जो छोटे उद्यमी हैं वो अपने व्यवसाय के लिए लोन ले सकते हैं, और मुद्रा के लोन की जो है चार श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। इसके तहत आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको 50,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। इस लोन की जो सबसे खास बात है, इस योजना की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसके उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म जो माइक्रो उद्यम हैं उनके लिए औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से लोन उपलब्ध कराना है। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है तो आप अपने नज़दीकी बैंक या संबंधित ऋणदाता संस्था से ज़रूर जानकारी लें, अपनी एलिजिबिलिटी, लोन इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, परसेंटेज है, साथ ही अपने डॉक्यूमेंटेशन, आप जल्दी अगर उसे भुगतान करना चाहते हैं वो सभी शर्तों को अच्छे से समझकर ही आप लोन में अप्लाई करें। याद रखिए, छोटा कारोबार, बड़ा सपना और सही वित्तीय योजना, यही बन सकता है आत्मनिर्भरता की ओर आपका अगला कदम। और जब आप एक काम शुरू करते हैं तो न केवल आप शुरू करते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों को उनसे मदद मिलती है, रोजगार मिलता है। तो आप अगर अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं और बहुत कंफ्यूजन में हैं कि कैसे आपको लोन अरेंज होगा, तो आज ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानें, अपने नज़दीकी बैंक पहुँचें, इस लोन के बारे में जानें और अपने बिजनेस के लिए आज ही प्लानिंग शुरू करें।

क्या खूबसूरत गाना है ना। और ये जो खूबसूरती है ना गाने की, दरअसल वो इसलिए होती है क्योंकि जब आप किसी संगीत को बहुत ही पसंद करते हैं ना, आपको पता है कि किसी फिल्म का बहुत पसंद आना हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये फिल्म हमें बहुत पसंद है, रिलेट कर पाते हैं हम कुछ कुछ चीज़ों से, है ना, इसीलिए होता है ना। और कुछ संगीत मन में अटक जाता है क्योंकि शायद हमारी वाइब्रेशंस उस गाने से बड़ी मैच करती हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही गाने सुनने हैं जो आपके दिल तक पहुंचे, तो जरिया है केवल एफएम रेनबो, क्योंकि यहीं पर हमारी कोशिश रहती है कि हम दिल से बात करें और आपके दिल तक एक रास्ता बनाएं। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और बहुत सारी जानकारी का पिटारा आपके लेकर आई हूं। एक और सूचना है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और अगर वो किसी वजह से अपनी फीस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए फीस में 100% तक राहत के प्रोग्राम बनाए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी 100% स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है उन स्टूडेंट्स के लिए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय ने जो अकेडमिक ईयर 26-27 के लिए FSS की शुरुआत की है, यानी कि वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पात्र हैं उन्हें फीस में 50% से लेकर 100% तक की छूट दी जाएगी। 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है तारीख, तब तक आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। योजना के लाभ DU के विभागों, संस्थानों, केंद्रों में संचालित जो फुल टाइम BA और MA के जो कार्यक्रम है उनको मिलेगा। जिन परिवारों की आय 4 लाख रुपए तक है उन्हें 100% राहत दी जाएगी। वहीं 4.1 लाख से 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय अगर परिवारों की है तो स्टूडेंट्स को 50% तक राहत दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो इन स्टूडेंट्स को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा जिन्होंने BTech CIC को छोड़कर 5 वर्ष एकीकृत जो कानून पाठ्यक्रम में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। SOL और NC वेब के स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि पिछले साल जो हैं वो एसेंशियल रिपीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और आवेदन के लिए आपको करना क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, आपको चाहिए होगा आपका आय प्रमाण पत्र, EWS, OBC, NCL प्रमाण पत्र, पिछले परीक्षा की आपकी मार्कशीट, फीस की रसीद और अपने बैंक खाते से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे। आपको आवेदन कैसे करना है, DU की DSW की वेबसाइट है, यहां से आप आवेदन कर सकते हैं। तो DU की DSW की वेबसाइट जो है आप वहां जाइए और यहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। डीन स्टूडेंट वेलफेयर की जो वेबसाइट है उस पर जाइए और जाकर आप अप्लाई कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब पैसा उनकी पढ़ाई में बाधित नहीं बनेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह फैसला यकीनन बड़ा ही सराहनीय है।

0: है बबई, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ ऋचा आपके साथ और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए जिन्होंने मुझे बताया कि दरअसल दिल्ली में ही सर्दी है लेकिन बहुत सारी जगह पर अभी भी धूप खिली हुई है। ज़्यादातर मैसेजेस जो हैं वो महाराष्ट्र से आए हैं और पंकज भी बता रहे हैं कि कल आसमान में बादल छाए थे लेकिन बारिश नहीं हुई, आज यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है। पंचकुला में ठंडा मौसम है और गर्मा गर्म आलू के पराठे मसाला चाय के साथ ये संडे वाइब्स को एंजॉय कर रहे हैं। निधि का मैसेज आया है पंचकुला से। इसके साथ ही मौसम की जानकारी देते हुए मुझे ये भी बताया गया है कि भाई अमरावती की तरफ यानी कि महाराष्ट्र में अमरावती में भी अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पर हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ही अच्छा है। भाई आपके यहाँ धूप निकली हुई है, धूप तो दिल्ली में भी है लेकिन मौसम में ठंडक बड़ी ज़्यादा है। और ऐसे ही आप भी अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, मौसम का हाल बता सकते हैं, ट्रैफिक अपडेट दे सकते हैं। 9868107070 है हमारा नंबर। इसके साथ ही जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए हमारा एक कार्यक्रम है अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग, जिसमें आप कॉलेजेस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, कॉलेज के बच्चों की थिंकिंग के बारे में जान सकते हैं और साथ ही वहाँ के प्रिंसिपल टीचर्स के बारे में भी जान सकते हैं, उनके विचार सुन सकते हैं। तो अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग हर वेंसडे हम कोशिश करते हैं एक नया कॉलेज आपके लेकर आएँ तो वहाँ जान सकते हैं। लेकिन कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ने का एक और मौका है। बिल्कुल सही सुना आपने, DUSOL। DUSOL में आप जानते ही हैं कि अब NC वेब और जो रेगुलर कॉलेज हैं उनके एडमिशन की प्रोसेस अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर आपको उनमें एडमिशन नहीं मिला है तो निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि SOL के दरवाजे अभी भी आपके लिए खुले हुए हैं। इसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, इनसे जुड़ने के लिए आप 30 सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नए पंजीकरण बंद कर दिए जाएंगे। SOL में जो प्रवेश प्रक्रिया है वो जून से चल रही है और अब तक लगभग 1.33 लाख विद्यार्थियों ने स्नातक में प्रवेश ले लिया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 दिन ही बचे हैं, प्रवेश प्रक्रिया जो है वो रोक दी जाएगी। जिन लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है वे 13 अक्टूबर तक अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। SOL में इस बार बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीकॉम में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। SOL में प्रवेश लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ID होना जरूरी है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है तो टेंशन मत लीजिए, बल्कि जाकर SOL में एडमिशन लीजिए और अपना साल बचाइए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ते रहें। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। जुड़े रहिए ऋचा के साथ प्रोग्राम 102.3 MHz पर। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि जाने का वक्त हो गया है। मिलते हैं आपसे फिर, तब तक हमें ढेर सारा मिस कीजिएगा। और हाँ, ये जो बदलता मौसम है ना, इसमें ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अदरक वाली चाय से दिन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि इस वक्त कोई ठंडी चीज ना खाएं ताकि आपका गला खराब हो। अपनों का और अपने परिवार का ध्यान रखें, साथ में अपनी भी सेहत का ध्यान रखें। ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हेलमेट जरूर पहनें अगर दोपहिया वाहन पर ट्रैवल कर रहे हैं तो, और उसके साथ ही अगर आपके पास कार है तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, और इंश्योर करें कि जब आप घर से निकलें तो जहां तक पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंचें। और ये आपके हाथ में है, अगर आप सड़क पर चलेंगे खुद का ध्यान रखते हुए, अपने अपनों का ध्यान रखते हुए, साथ ही आसपास की गाड़ियों का ध्यान रखते हुए, तो दुर्घटना की संभावना बहुत कम हो जाती है। खैर, समय हो गया है कि मैं आपसे इजाजत लूं, मिलती हूं आपसे बहुत जल्द, मेरा इंतजार कीजिएगा। संतोष आ गए हैं स्टूडियो में लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने, तो ओवर टू संतोष। और ये गाना आपके लिए छोड़ के जा रही हूं।

प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय केरलम दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। रूस के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में आज तेज बारिश और बिजली गिरने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। चार धाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में तेज बारिश और बिजली गिरने का अनुमान किया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन देशों की एक दिवसीय श्रृंखला का मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा और एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब शुरू होगा प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। और आज इस कार्यक्रम को लेकर आया है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: sei mere uff.
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है विदुषी वत्स से। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और पहली अपडेट में जब बताएंगे आपको आर्चरी से, जहां कई अच्छी खबरें आई हैं। भारत की कंपाउंड महिला और पुरुष टीमों के साथ साथ मिश्रित टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ज्योति सुरेखा वेनम, चिकिता तनिपार्थी और प्रीतिका प्रदीप की भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने राउंड ऑफ 16 में मंगोलिया को 238-223 से हराया। फिर फाइनल में कजाकिस्तान को 233-230 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। वहीं कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम की पुरुष टीम ने कंपाउंड जो राउंड ऑफ 16 का मुकाबला था यूएई को 235-215 और क्वार्टर फाइनल में भूटान को 235-232 से हराकर अंतिम चार में जगह बना ली है। आपको बता दें मेडल राउंड 30 सितंबर को खेले जाएंगे।
3: Absolutely, there are really encouraging updates for India from archery, where both our recurve and compound mixed teams have booked their places in the semi-final. To talk about the recurve mixed team, where Dheeraj and Anil were clinical right from the knockout stage. They began by defeating the United Arab Emirates 6-0 in the round of 16 and then produced another commanding performance in the quarter-final, beating Vietnam by 6-0. So four set points won and not a single set dropped. It was a very controlled performance from the Indian pair, who now move into the semi-finals with a real opportunity to fight for the medal. Now, India now have another mixed team through the last four, this time in compound archery. It is Chikita and Sahil first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16. They then faced Kazakhstan in the quarter-final and came through 159-154. So both Indian mixed teams, recurve as well as compound, are now semi-finalists.
2: Badminton ki baat kar lete hain dosto. Badminton se halanki kuch achhi khabar subah nahi hai. Mixed doubles ke quarter-final mein Dhruv Kapila aur Tanisha Kresto ne विश्व नंबर एक जोड़ी फेंग योंग और ह्वांग डोपिंग की जो उनसे मुकाबला था, कड़ी चुनौती थी। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम हालांकि 21-14 से गंवाया, लेकिन दूसरे गेम में शानदार वापसी करते हुए 21-18 से जीत दर्ज की और मुकाबले को निर्णायक गेम तक लेके पहुंच गई। तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत में विश्व नंबर एक जोड़ी जो चीन की जोड़ी है 21-18 से गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। इस तरह ध्रुव कपिला और तनिशा क्रेस्टो को 14-21, 21-18, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जोड़ी का एशियन गेम्स में जो अभियान था यहीं थम गया।
3: We also have some sad results from the women's doubles quarter-final, where Teresa Jolly and Gayatri Gopichand's Asian Games campaign has come to an end after they went down 18-21, 19-21 to Malaysia's world number 5 pair, Pearlie Tan and Thina Muralitharan. The Indian pair did have a strong run into the quarter-finals. They had already defeated the world number 3 Japanese combination, and they also come into these games after winning historic bronze medal at the World Championships. But against the Malaysian, Teresa and Gayatri were competitive in the opening game, fought their way back after falling behind early, but Malaysia managed to regain control, particularly in the second game, and closed out the match in straight games. So disappointment for Teresa Jolly and Gayatri Gopichand.
2: महिला क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात कर लें जो अभी भी जारी है, अकाने यामागुची और उन्नति हुड्डा के बीच मुकाबला चल रहा है। पहला गेम था वहां पर अकाने यामागुची ने जीत लिया है, लेकिन दूसरा गेम नेक टू नेक चल रहा है, यानी यहां पर दोनों खिलाड़ी बराबर खेल रहे हैं। 10-9 का मुकाबला है दूसरा गेम। यहां पर देखना होगा किस तरह से क्या उन्नति हुड्डा वापसी करती हैं, क्या यहां पर गेम जीतकर तीसरे और निर्णायक गेम तक लेके जाती हैं। हालांकि फिलहाल कहना मुश्किल है, 11 पॉइंट बना लिए यहां पर।

0: काने यामागुची ने, जबकि उन्नति हुड्डा ठीक उनसे पीछे 10 पॉइंट पर खेल रही हैं। वहीं अब बात करेंगे एथलेटिक्स की, जहां तेजस्विन शंकर की बात करेंगे। जी हां, तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में शानदार प्रदर्शन किया। भारत के तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन की 110 मीटर बाधा दौड़ में 14.33 सेकंड का समय निकालते हुए अपनी हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने 932 अंक भी हासिल किए। चीन के चेंग शिंगहुआ ने 14.01 सेकंड में दौड़ पूरी कर 973 अंक, जबकि जापान के युमा मारियामा ने 14.00 सेकंड के समय के साथ 975 अंक अर्जित किए। इसके बावजूद तेजस्विन शंकर कुल 5,270 अंकों के साथ डेकथलॉन की समग्र तालिका में शीर्ष पर बने हुए। चेन शिंगहुआ 5,223 अंकों के साथ दूसरे, युमा मारियामा 5,163 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।
1: And there is more encouraging news coming in from athletics. India's Santosh Kumar has qualified for the final of the men's 400 meters hurdles, finished second in heat 1, clocking 49.61 seconds to secure his place in the final.
0: बस दोस्तों, इस घंटे के अपडेट में अभी तक इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट में 10:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी बस को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, क्रेजी करने के लिए आ चुकी हैं हिमानी दत्ता आकाशवाणी एफएम रेनबो के स्टूडियो में। आप कौन सा प्रोग्राम लेकर आएंगी, बस उसके लिए आपको करना होगा इंतजार। बहरहाल दिल के तराने गाने नए पुराने आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: Shailendra's lyrics, put to music by S.D. Burman, sung by Kishore Kumar and Lata Mangeshkar from the 1965 film Guide. Now, the film was complete and ready for release. Dev Anand's first film, first coloured film. And yes, this was the film which transitioned from the black and white era to the colour for Dev Anand. At the last minute, he felt that something very important has got left out in the film. The film was missing out having the voice of his best friend Kishore Kumar, because the other songs had been sung by Mohammed Rafi. Now, Kishore Kumar was that friend who had stood by him when the world still did not even know him. Dev Anand could not release the film like this. So he approached Kishore Kumar and conveyed his feelings. The lyrics were written and music composed overnight. It was recorded at the last minute and added in the film as a patchwork. But despite all of this that happened behind the scenes, the song remains a cult classic even today. The team proved that if we put out our heart and soul into something with all the love inside of us, it is bound to succeed. And here, time for me to take a little break. I'll see you on the other side. Please stay with us.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम

0: It's time for the Asian Games 2026 update.
1: This is IG Nagoya.
2: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स से। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर आई है। एशियाई खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का पहला बॉक्सिंग पदक पक्का कर लिया है। अंकुश ने ताजिकिस्तान के नजरुक सलीमो को 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अंकुश ने मुकाबले के दौरान शुरू से ही आक्रामक और नियंत्रित बॉक्सिंग का प्रदर्शन किया और पांचों जजों ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस जीत के साथ ही अंकुश ने एशियाई खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। अब सेमीफाइनल में अंकुश पंघाल के सामने बेहद कड़ी चुनौती होने वाली है। उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के मौजूदा विश्व चैंपियन फजलुद्दीन एर्केबेनोव से खेला जाएगा।
3: And there is encouraging news coming in from the athletics track with Santosh Kumar first booking his place in the men's 400 meters hurdles final, finishing second in his heat in 49.61 seconds. And now India has added two more finalists in the women's 400 meters hurdles with Vithya Ramraj and Anu Raghavan both making it through. Vithya produced a strong run clocking 55.73 seconds to finish third overall, while Anu Raghavan was right behind her, recording 55.84 seconds and taking fourth place overall. So three Indian athletes across the men's and women's 400 meter hurdles have now made it through to their respective finals.
2: डेकाथलॉन की बात करते हैं जहां पर डिस्कस थ्रो के बाद तेजस्विन शंकर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। डिस्कस थ्रो में मुश्किल प्रदर्शन करते हुए तेजस्विन शंकर ने 36.77 मीटर की दूरी तय की और 599 अंक अर्जित किए। अब उनके कुल 5,869 अंक हो गए हैं और वो तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। चीन के चेन शिंगुआ 5,919 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि जापान के युमा मारियामा 5,914 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तेजस्विन अब पोल वॉल्ट और भाला फेंक स्पर्धाओं में भाग लेंगे।
3: And now some results coming in from Kurash. It has been a difficult outing for India today, with all four athletes who competed seeing their Asian Games campaigns come to an end. In the men's plus 90 kilogram category, Yash Kumar Trohan lost his round of 16 bout 0-10 to Tajikistan's Mirmamadov. Vishal did make it through to the quarterfinals in the same category, but his campaign ended there after a 0-5 loss to Thailand's Yeon. In the women's 57 kilogram category, Sangeeta was beaten 0-10 by Philippines Quilino in the round of 32. Bharati also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Azar Vened. So four Indian Kurash athletes in action today and all four have been eliminated. There are still two more Indians to watch in Kurash on September 28 and September 29.
2: Vidushi, ab lambi kood ki baat kar lete hain. Udhar Mulli Shishankar ne 7.84 मीटर की छलांग लगाकर लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हांगजोंग में हुए पिछले संस्करण में रजत पदक विजेता रहे शिशंकर ने शीर्ष 12 में जगह बनाने के लिए दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे अन्य भारतीय खिलाड़ियों में डेविड सोलेमन ने 7.62 मीटर की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर रहकर पदक के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल कल यानी सोमवार को खेला जाएगा। यहीं पर एक और खबर दे देते हैं, बैडमिंटन की महिला युगल मिश्रित युगल के बाद महिला एकल में भी आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अपने मैच हार कर बाहर हो गए। अभी कुछ देर पहले समाप्त हुए महिला एकल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने एशियाई खेलों में अपने पदार्पण में मुकाबले में हार गई है। हालांकि उन्होंने 3 बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी, लेकिन 16-21, 14-17, 21 से हार गई है। वहीं पर बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु अपना मुकाबला महिला एकल का खेल रही चेन यू फेई के खिलाफ और पहला गेम वो जीत चुकी हैं। यहाँ एक उम्मीद बची हुई है, क्या यहाँ पर पीवी सिंधु जीतकर भारत को खुशखबरी देती हैं?
3: Moving across to fencing, India's women's sabre team also saw their campaign come to an end in the quarter final. The Indian team featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin Jess and Shruti Joshi went down 35-45 to Uzbekistan. So after reaching the quarter final stage, the Indian women's sabre team could not make it through to the semi-finals. And now let's turn to shooting, where the trap competition continues. In the women's trap event, Neeru Dhanda is currently

लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है एंड वेदर इज दैट टुडे इज गोइंग टू रेन. सो इफ यू आर इन दैट एरिया वे इट्स गोइंग टू रेन बी अ लिटिल केयरफुल. कमिंग बैक टू द सॉन्ग द सिंगर्स सुरेश वाडकर एंड अनुपमा देश पांडे. म्यूजिक बाय शिव हरी एंड लिरिक्स बाय आनंद बख्शी. एंड मूविंग ऑन, यस आई हैव दिस beautiful track for you coming up, and this is by Glenn Miller.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो

0: तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
7: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
11: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष

पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद

वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा, बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था, तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों,

भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी
यहाँ फिर लौट आए हैं।

जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे

1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे, 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई हैं। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक

2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके

0: ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

रहे हैं आप दिल से दिल तक। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और 138वीं कड़ी ये रही और इसमें उन्होंने कई बातें हम सभी के साथ, देशवासियों के साथ साझा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के आगमन पर शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ गणेशोत्सव का भी खासतौर पर जिक्र किया। सितंबर का महीना कुपोषण की लड़ाई के लिए जाना जाता है और इसका भी उन्होंने जिक्र किया और बताया कि कितना अहम है हम सभी लोगों का योगदान। साथ ही कुछ और उपलब्धियों पर उन्होंने बात की और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी उपलब्धि के बारे में भी देशवासियों को बताया। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट का जो ऐलान 15 अगस्त के अपने भाषण में उन्होंने किया था उसका एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया और देश भर में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई। इसके अलावा नशे के विरुद्ध युवाओं का जो संकल्प है उसका खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया और पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति की रक्षा और उसमें हमारा योगदान कितना महत्वपूर्ण हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं देश भर में, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ बातें हम तक साझा की। और गांधी जयंती और स्वच्छता से जुड़े जो हमारे अलग अलग प्रयास हैं अलग अलग जगहों पर, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। इसके अलावा साल की शुरुआत में मनाया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, उसकी भी उन्होंने बात की और लोगों को बताया, अपने इतिहास के साथ जोड़ने की कोशिश की। साथ ही साथ भविष्य के बारे में भी उन्होंने बात की और भविष्य के बारे में बात करने के लिए उन्होंने जनगणना से जुड़ी खास बातें हमें बताएं कि किस स्तर पर है, क्या खास चीजें चल रही हैं और क्या हम कर सकते हैं, और ये सभी बातें बताएं। इससे पहले उन्होंने 9/11 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले का भी जिक्र किया, उसे याद किया और श्रद्धासुमन अर्पित किए और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर जो देश हमारा चल रहा है उसकी भी उन्होंने बात की और खासतौर पर उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि का भी जिक्र किया अपने इस बातचीत में, संबोधन की शुरुआत में, कि भारत एक ऐसी ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद साल 10 साल होने जा रहे हैं और ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। साथियों, आज हमने मन की बात कार्यक्रम सुना और मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बातें हमसे की और उन बातों पर ये भी साथ में कहा कि कितना जरूरी है हम सभी लोगों का उसके साथ होना, भागीदार बनना। और उनमें से एक ऐसी चीज है जो प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के करीब है और खास बात यह है कि उसके साथ आने वाला जो महीना है उसमें जब हम 2 अक्टूबर पर पहुंचते हैं तो जब हम गांधी जी की जयंती मनाते हैं तो उसके साथ ही कुछ चीजें, कुछ बातें और भी हमारे साथ जुड़ जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं और स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं और ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसे रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती हैं। हाल के दिनों में एक ऐसी बात का उन्होंने जिक्र किया, कुछ ऐसे प्रयासों का उन्होंने जिक्र किया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा। उन्होंने कहा कि कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। और मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। और यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों के जब हम देख रहे हैं तो अलग अलग तरह से वो भी योगदान दे रहे हैं, लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की भी उन्होंने बात की। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं और उन्होंने खासतौर पर इस बात का जिक्र किया कि इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवां बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है और बापू के प्रति सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है।

साथियों, कहते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसके युवा, और हमारे युवा जिनके कंधों पर भविष्य है देश का, अगर वो अपने कार्यों के प्रति, अपने वर्तमान के प्रति सजग होते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो देश का आगे बढ़ना तय है। और इस बात को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में खासतौर पर जिक्र किया कि कुछ चीजें जिनके बारे में कई बार चिंताएं होती हैं, उनका भी जिक्र करना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम उस पर बात करते हैं तो फिर कुछ रास्ता निकलता है, हल निकलता है, और लोगों के जो प्रयास हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा मन की बात कार्यक्रम में कि हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ले रही है, ली है, और ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर्स शामिल हैं, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा हैं, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी आगे आए हैं, और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि इस अभियान में एक बात खास तौर पर अच्छी लगी उन्हें, नशा मुक्ति का संदेश। हमारे युवा खुद अपनी भाषा में, अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी ने पहले भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े, और खुशी की बात यह है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथम, स्टोगल राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है, और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। तो प्रधानमंत्री जी ने इस खास जो अभियान है इसमें सभी को जुड़ने की भी अपील की है।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। साथियों, आज मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बातें हैं जिनका जिक्र किया, और उनमें से एक खास बात है जो हमारे भविष्य के साथ जुड़ी है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और उस बारे में उन्होंने कुछ खास जो प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने जो खास तौर पर कार्य किए हैं उनका भी जिक्र किया। आपको बताते चलें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो अपने संबोधन में बात कही थी, उनका जो मुख्य बातें उनमें से जुड़ी ये रही कि 5 से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजी जाएगी, टैलेंट हंट गांव, शहरों और स्कूलों में चलाने की भी बात उन्होंने कही थी। साथ ही बच्चों की खेल क्षमता का आकलन करके प्रतिभाशाली बच्चों को चुनने की उन्होंने बात कही, और साथ ही चुने गए बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आगे चलकर देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी बन सके। और इसका खास उद्देश्य उन ओलंपिक स्पोर्ट्स में भारत की भागीदारी बढ़ाना है जिनमें भारत अभी हिस्सा नहीं लेता या क्वालिफाई नहीं करता, और प्रधानमंत्री जी ने इसे 2036 ओलंपिक्स के लिए लंबी अवधि की तैयारी से जोड़ा है। और उनके भाषण का आशय था कि अगर 2036 के लिए खिलाड़ी तैयार करने हैं तो आज 5, 10 और 15 साल के बच्चों की प्रतिभा पहचाननी होगी और बेटियों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने अपने आज के मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांव और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम एक और शख्सियत से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने खासतौर पर उनका नाम लिया। उनका नाम है राजिंदर सिंह। राजिंदर सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे, 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, और वहीं

2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड क्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांव में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही हैं। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांव में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम हैं। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं और इस समर्पण को उन्होंने खास तौर पर याद किया। और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग अलग अलग तरह से देश को आगे ले जाने में समर्पित हैं उनको भी उन्होंने खासतौर पर सराहा। तो आज की मन की बात कार्यक्रम में बहुत सारी उन्होंने बातें की, आप इसे सुन सकते हैं आकाशवाणी पर। और फिलहाल मैं आपसे अनुमति लेता हूं और चलते चलते जब उन्होंने खेलों की बात की है तो खेलों में हमारी टीम खास करे और आज जबकि हम एशियन गेम्स चल रहे हैं इसमें हम अपने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।

0: You just heard Prime Circles with the track Out of This Place. And of course, one place you can never get out of is Akashwani Rainbow. And time for us to take that itsy bitsy little break. Please allow me to see you on the other side of this break. And yes, we're talking about travel memories today.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती?
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
8: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
10: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
11: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
10: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति

0: Martin Garrix there with We Are The World. And yes, moving ahead, before we do so, let's take a teeny weeny little break.
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
0: ओवर टू द एशियन गेम्स अपडेट।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: Welcome. It's another power-packed day at the Asian Games with action unfolding across multiple disciplines. I am Vidushi Vats and with me is Shahid Azmi, and together we bring you the latest updates. We begin with a fantastic day for Indian archery with strong results coming in across the recurve and compound team events. Let's start with recurve. In the men's recurve team quarterfinal, Dheeraj, Neeraj and Yashdeep defeated China 5-2 to book their place in the semi-finals. The women's recurve team of Ankita, Kumkum and Kirti were even more dominant, defeating Chinese Taipei 6-0 in their quarterfinal. And the mixed recurve team also made it through with Dheeraj and Kumkum defeating Vietnam 6-0. So here are the recurve semi-final lineups. The men's team event, India will face Iran. The women's team event, India will take on China. And the mixed team event, India will face Japan. But the good news from archery continues, with India also reaching the semi-finals in all three compound team events. The men's compound team will face Korea, the women's compound team will take on Korea as well, while the mixed compound team will face Thailand. That means India has now secured 6 team semi-final berths across recurve and compound archery, all set, scheduled for October 2nd. All in all, it has been an amazing day for Indian archery.
4: विदुषी, डेकाथलॉन में भी आह और वाह का दौर जारी है। डेकाथलॉन में स्पर्धा में जो मुकाबले खेले जा रहे हैं, स्पर्धाएं खेली जा रही है, उसमें तेजस्वी शंकर 8 स्पर्धाओं के बाद 6,571 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। जापान के युमा मारियामा 6,855 अंक के साथ पहले, और चीन के चेन शिंगहुआ 6,709 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। तेजस्वी की बात करें तो अब लॉन्ग जंप में 7.53 मीटर और हाई जंप में 2.18 मीटर का शानदार प्रदर्शन किया, जबकि 110 मीटर हर्डल्स में उन्होंने 14.33 सेकंड का समय निकाला, जबकि पोल वॉल्ट में कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, 4.30 मीटर की छलांग लगाकर 702 अंक हासिल किए। यहां पर उम्मीद की जा रही थी तेजस्वी शंकर शानदार कुछ करेंगे, लेकिन यहां पर वो अपना चूक गए हैं। लेकिन डेकथलॉन की 2 स्पर्धाएं अभी बाकी हैं। तेजस्वी की नजरें अब इन स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पदक की स्थिति मजबूत करने पर होगी।
3: A quick update on shooting as well, where the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Isha Singh leads the Indian challenge at this stage, finishing the precision qualification with 290 points to sit 6th. Rahi and Manu Bakar are next, both on 287 points, currently placed 15th and 16th respectively. There is still more shooting action to come, so the Indian trio will be looking to build on these scores as the event progresses.
4: Badminton ki baat kar lete hain Vidushi, badminton mein aaj भारत को 4 मुकाबले खेलने थे, चारों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही आज महिला एकल, महिला युगल, मिश्रित युगल और इसके साथ साथ बात करें तो तमाम जो मुकाबले महिला युगल के, सभी मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल में पीवी सिंधु को चीन की वर्ल्ड नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 11-21, 21-18, 10-21 से हराया। वहीं उन्नति हुड्डा ने 3 बार के विश्व चैंपियन जापान के अकाने यामागुची को कड़ी टक्कर दी। उन्नति ने दूसरा गेम जीतकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया था, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्कोर की बात करें तो उन्नति को जो स्कोर हासिल हुआ, जो स्कोर किया 16-21,

0: 21-14 और 17-21 से वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह महिला युगल में टिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को मलेशिया की पोलिटैन और थीना मुरलीधरन से 18-21 9-21 से हार मिली, जबकि मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने चीन की फेंग झोंग और डोंग पिंग के खिलाफ संघर्ष जरूर किया, लेकिन उन्हें 14-21 21-18 18-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। चलते एक और खबर आपको दे देते हैं। एशियन गेम्स के जो मुकाबले चल रहे हैं महिला भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर नवे स्थान पर रही। हरजिंदर कौर ने स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 110 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाकर प्रतियोगिता की अपना जो अभियान था वो समाप्त किया। हरजिंदर कौर इसी के साथ ही पदक की दौड़ से बाहर हो गई और नवे स्थान से उन्हें संतोष करना पड़ा। दोस्तों अगले घंटे में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन हाँ उठा पटक जापान में जरूर जा रही है, कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी, शाम तक जरूर बने रहें आकाशवाणी के साथ। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और रिदुषी वस को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: You were listening to the Asian Games 2026 update. And now back to the show. But before that, itsy bitsy little break.
3: Attention, national recognition for your hard work. For those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices, the Department of Animal Husbandry and Dairy in Government of India invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to September 30th, 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026. Issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का नया उदाहरण पेश किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय केरलम दौरे पर हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए सभी युद्धग्रस्त देशों से तनाव कम करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्कमेनिस्तान सरकार और विदेश मंत्री राशिद मेरदोफ को स्वाधीनता की 35वीं वर्षगांठ पर बधाई दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 27 सदस्यता का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक कई लोगों की मौत। उत्तराखंड में तेज बारिश और बिजली गिरने को लेकर रेड अलर्ट जारी। चार धाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। ओडिशा के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न होने से बाढ़ की स्थिति बनी। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। संस्कृति और पर्यटन

मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा और एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदक सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। FM रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, यानी कि आपका वाला सॉन्ग और आपके वाले सॉन्ग को आप तक पहुंचाने के लिए मैं हूं स्टूडियो में। मेरा नाम है राजेश कुमार और दोस्तों इस प्रोग्राम में आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते हैं और हम उन फरमाइशों को आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो सिलसिला है ना ये हमारा, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज के दिन से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं खास जो आप लगातार FM रेनबो पर सुन रहे हैं और हमारे अलग अलग कार्यक्रमों से भी आपने वो बातें सुनी है। तो आप कोई गाना जो आप सुनना चाहते हैं, जब आप उसको हम तक पहुंचाएं वो आपकी फरमाइश, तो साथ में कुछ बातें अगर उस गाने से जुड़ी हुई लिख देंगे ना और आज के दिन से जुड़ी हुई भी कुछ बातें हम आपसे पूछेंगे, तो फिर थोड़ा उस मैसेज को पढ़ने का, इस प्रोग्राम में शामिल करने का और आपकी बात जानने का हमें एक नया मौका मिलेगा। तो आप मैसेज हम तक कैसे पहुँचा सकते हैं? व्हाट्सएप के जरिए। और व्हाट्सएप नंबर हमारा क्या है? नंबर है 9868107070 9868107070। ये वो नंबर है जिस पर हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और साथ ही आपकी पसंद के गीत भी सुनते हैं। तो चलिए आपकी पसंद का पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं और आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, आपके बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसमें जब हम आप तक पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले ही आपके मैसेज हम तक पहुंचने लगते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम भी चलते हैं आपके मैसेज की तरफ। और ठीक 1 बजे कौन सा मैसेज हम तक आया है हम उस तक चलते हैं और उस मैसेज को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, अपनी बातें इन्होंने लिखकर हम तक पहुंचाई हैं और साथ ही साथ इन्होंने कुछ बातें अपनी अपनी अपने बारे में भी बताई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। और अगला जो मैसेज हम तक आया है ये है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल का। इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। तो दोस्त, हम आपके इस फरमाइश को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगला जो मैसेज है ये है किसका, इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। इनका मैसेज आया है। और मैसेज भेजा है हमें किसने, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी ने, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और कुछ और फरमाइशें हम तक आ रही हैं, एक ही फरमाइश कई नंबरों से भी आ रही है। प्रणव शिंदे जी मुंबई से लिखते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं हम तक। और लिखा है इन्होंने भी कि कहते थे वो कि कभी कभी ही ऐसी शख्सियत आती है जो पर्दे पर चाहत की एक नई चांदनी बिखेर जाती है। वक्त बदला, दौर बदला, पर उनकी यादों के हसीन लम्हे आज भी आंखों में प्यार का एक मीठा सा डर जगाती हैं। क्या बात है, सिखाया जिन्होंने दुनिया को कि दिल तो पागल है, मोहब्बत की राहों में उठता हर कदम घायल है। सिनेमा की दीवारों पर वो ऐसा जादू कर गए, उनकी यादों का सिलसिला आज भी हर दिल में घर कर गया। और इनकी बातों से अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसके लिए ये सब लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं यश चोपड़ा साहब के बारे में, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका, बहुत ही प्यार से आपने अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। और मैसेज किया है हमें सौरभ बनेजा जी ने गाजियाबाद से। हमेशा की तरह इन्होंने कुछ अलग से लिखने की, अलग से टाइप करने की कोशिश नहीं की है। इन्होंने ये कहा है कि मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती है, मैं तो बस शो को इन्जॉय करता हूँ। तो दोस्त, इसी तरह से आप इन्जॉय करते रहें, अपनी बातें हम तक पहुँचाते रहें और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ होते हैं। अगला जो मैसेज है, दयालपुर दिल्ली में रहते हैं ये, इनका नाम है कृष्ण कुमार मिश्र। लिखा है इन्होंने कि गाना जो है सुनवा दीजिए मेरी पसंद का। तो दोस्त, बिल्कुल, हम इसीलिए आज यहाँ पर हैं ताकि हम आपकी पसंद के ज़्यादा से ज़्यादा गीतों को आप तक पहुँचा पाएँ और इस कोशिश को हम आगे बढ़ाते हैं। एक और गीत आप तक पहुँचाते हैं, ये वाला।

दोस्तों कुछ राज आंखों में नहीं होते हैं बल्कि हमारे दिल में होते हैं, और उन राज को हम अगर जब दूसरों तक पहुंचाते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो राज किसी को अच्छे लगते हैं, कुछ राज की बात पता चलती है, कहीं आप जाते हैं। तो आज के दिन से जुड़ी अगर हम बातें करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो ख़ास तौर पर हम याद कर सकते हैं, जिनको एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। और वो ये है कि कोई ऐसी जगह जहां आप कभी गए हों पर्यटक के तौर पर, और वहां से कुछ यादें ऐसी हो जो आपके दिल में बसी हुई हैं एक राज की तरह। राज हो सकता है ऐसा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि राज सिर्फ हमारी जिंदगी से ही जुड़ा हुआ हो। किसी जगह के बारे में जब हम कुछ अच्छा जानते हैं, उसके बारे में कोई ऐसी चीज जो हमारे मन को बहुत भाती है और हम लोगों तक उस बात को पहुंचाते हैं, उस जगह से जुड़ी हुई बातें, तो फिर लोगों का भी रुझान उस तरफ होता है। वहां जाने की दिशा में भी लोग सोचते हैं कि हाँ वाकई में अगर उन्होंने इस तरह की बात हमें बताई है तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए, वहाँ की चीज़ों को महसूस करना चाहिए। तो आज जो पर्यटन दिवस है, तो इस दिवस पर आपकी भी कुछ पर्यटन से जुड़ी अगर बातें हों, यादें हों, तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तरीका वही है, पुराना वाला। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात बता सकते हैं 9868107070 पर, 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इस व्हाट्सएप नंबर पर अब तक आपने क्या क्या बातें पहुंचा दी हैं, चलते हैं उस तरफ। लिखा है हमें, इनका नाम है रिंकू कुमार, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से एक गाना सुनने की इन्होंने फरमाइश की है। पुनीत सिंघल, अमिता सिंघल, इन्होंने बदरपुर से लिखा है एक गाना। और हमें मैसेज किया है दार्जिलिंग के विधान नगर शांतिपाड़ा से, वेस्ट बंगाल से, विप्लव दास ने एक गाना सुनने की इन्होंने भी फरमाइश की है।

इस्लाम सलमानी, महिपालपुर अदनान सलमानी, अमन सलमानी, सब लोग एक गाना सुनना चाहते हैं और इन्होंने फिल्म का नाम भी हम तक साझा किया है। और साथ ही साथ हमारा जो अगला मैसेज दिख रहा है स्क्रीन पर, यह है सतरंग श्रोता परिवार की तरफ से, कुम्भार गली श्रीरामपुर से और पूर्णावले पुणे से। कुम्भार गली श्रीरामपुर से मैसेज किया है अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले ने। वहीं पूर्णावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवने का भी मैसेज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खरसावां झारखंड से सुक्रा नायक का मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है, फरमाइशें हम तक लगातार पहुंच रही हैं। काजगंज से मास्टर राधेश्याम शाक के लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं एक और फरमाइश, और फरमाइशें हम तक पहुंच रही हैं कुछ और भी। मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का, ये सभी इन्होंने अपनी फरमाइशें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। जोया ने मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखकर पहुंचाई है अपनी बात, और धन्यवाद भी कहा है देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से कविता चौहान ने। इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की थी और इनकी फरमाइश पूरी हो चुकी है। तो अक्सर कई बार होता है कि कुछ ऐसे समय में जब हम आपकी फरमाइशें देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि आपकी फरमाइशें हम अब तक पहुंचाएं। कई बार कुछ कारणों से हम आपकी फरमाइशें नहीं पहुंचा पाते, लेकिन जब आपकी फरमाइशें अब तक पहुँचती हैं और आपको अच्छा लगता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अगला जो मैसेज है, सत श्री अकाल राजेश पाजी, कैसे हो? असी वधिया है जी, तोड़ा की हाल है? नाम मैंने बिल्कुल आपको पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी से। और कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और गाना, अच्छा आपने तो पूरा एकदम लिस्ट ही बना दी है, जब वी मेट से चाहिए आपको और कई फिल्मों से चाहिए, तो दोस्त हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का कोई गीत आप तक पहुँचाएँ। अमरदीप कुमार कुप्पमपट्टी जलाकंडा पुरम बाजार सेलम ज़िला तमिलनाडु से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है और फरमाइशें हम तक लगातार पहुंच रही हैं। प्रणव कुमार जी लिखते हैं, कहाँ से? मैं नवलू वरक फ्रॉम गांव मलपुर ज़िला उत्तर गोवा से। अच्छा लिखा है इन्होंने कि एक गाना सुनने की इनकी फरमाइश है, इसको पूरा किया जाए। और ये रेगुलर लिसनर हमारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका प्रोग्राम्स हमारे सुनने के लिए, और न सिर्फ सुनने के लिए बल्कि प्रोग्राम के बीच में आप जो अपने मैसेजेस हम तक पहुँचाते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जबकि आप भी हमारे दिलों में बसते हैं और आपकी जो फरमाइशें हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं, एक ऐसी ही फरमाइश आप तक।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं राजेश और दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपकी जो बातें हम तक पहुंची है उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, साथ ही आपकी जो फरमाइशें हैं उन्हें भी आप तक पहुँचाते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
5: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
5: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
6: आज फिर लेट हो गए?
7: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
6: क्यों बैठे थे बाहर?
7: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
6: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
7: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
8: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
9: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
8: इम्पॉसिबल
9: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज के दिन से हमने जुड़ी बातें की, तो आज के दिन से जुड़ी आपकी बातें हम तक लगातार पहुंच भी रही हैं। तो आज इंटरनेशनल डॉटर्स डे है, तो इस दिन से जुड़ी भी बहुत सारी बातें आप लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं और गाने भी सुनने की आपकी फरमाइशें हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। डॉली का मैसेज आया दिल्ली से, इनको गाने पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा आनंद विहार से मुख्तार आलम ने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और फरमाइशें हैं किसकी, रीना लोधी कंकर खेड़ा मेरठ कैंट से प्रोग्राम सुन रही हैं और इन्होंने कहा है कि एक गाना इनकी पसंद का हम इन तक पहुंचाते, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त अपनी पसंद का वो गीत हमारे साथ साझा करने के लिए। और प्रमोद चिंचोलकर, इनका भी अकोला महाराष्ट्र से मैसेज आया है और इन्होंने भी गाना सुनने की फरमाइश की। फिलहाल इससे पहले कि वो समय जो आप लोगों ने गाना सुनने की फरमाइश की है आज के दिन से

जुड़े हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल डॉटर्स डे से। तो वो गीत सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। और इस गीत के साथ ही सभी लोगों को इस खास दिन की शुभकामनाएं।

0: और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है मेरे दोस्त विदुषी वत्स। विदुषी, जैसा कि हम पिछली अपडेट में बात कर रहे थे, भारत के जो मेडल हैं वो अभी कुछ खास नहीं, लेकिन इस घंटे की अपडेट में बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत खास मेडल आया है भारत के लिए। बताना चाहूंगा महिलाओं के जो बात करें तो अभी मुकाबले शुरू होने अनाहत सिंह उतरेंगी, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ गई है। एशियाई खेलों में भारत के अभय सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल स्क्वाश में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, फाइनल में अभय सिंह को मलेशिया के एनईओ के हाथों 9-11, 5-11, 5-11 से शिकस्त का सामना करना पाए। स्क्वाश का मुकाबला था, लेकिन यहां पर उम्मीद जरूर थी अभय सिंह यहां पर गोल्ड जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से मलेशियाई खिलाड़ी ने उन्हें लगातार 3 गेमों में लगातार हराकर जीत दर्ज की, इसलिए उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अभय ने मुकाबले में जोरदार शुरुआत की और कई मौकों पर अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी चुनौती दी। तीसरे गेम में भी उन्होंने शुरुआत में बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन एनईओ ने जल्द ही अपनी लय हासिल कर ली, मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। इस जीत के साथ ही एनईओ लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि अभय सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं अनाहत सिंह, जिसका मैंने जिक्र किया था, सबसे ज्यादा उम्मीदें अनाहत सिंह पर है। महिला एकल के फाइनल मुकाबले में सिंह सुवारी सुब्रमण्यम के खिलाफ उतरेंगी, भिड़ेंगी। यहां भारतीय जरूर उम्मीद करें।

0: गोल्ड मेडल यानी पीला तमगा है। लेकिन हाँ, आज का दूसरा पदक आ चुका है। इससे पहले आपको बता दें, अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वजन वर्ग में पदक पक्का किया सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए। आज का दूसरा पदक यानी दो पदक भारत की झोली में अब तक आ चुके हैं।
1: With these two brilliant news, we can absolutely say that it is in total a very mixed day for India today. So now we take a complete update from women's specific draw, where India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. South Korea took the opening game 15-8 before winning the second 15-3 to wrap up the match in straight games. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines, and they came away with another state games victory for Philippines, winning 15-12, 15-6. So India have now suffered two defeats in two Group B matches, losing both encounters 0-2.
0: घुड़सवारी की बात कर लेते हैं। आईसी नागोया में भारत का जो घुड़सवारी का अभियान है वो समाप्त हो गया। जी हाँ, एशियन गेम्स में जिस तरह से उम्मीद की थी, पिछली बार जिस तरह प्रदर्शन था, वैसा प्रदर्शन इस बार देखने को नहीं मिला। हृदय छेदा 72.680 के स्कोर के साथ इंडिविजुअली ड्रेसेस फाइनल में 8वें स्थान पर रहे, जबकि उनके साथी जयसूद 71.490 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर रहे। हाँ, यहाँ पर एक और खबर दे दे, इंडिया वर्सेस वियतनाम। जी हाँ, भारत बना वियतनाम का जो वॉलीबॉल का मुकाबला चल रहा, भारत ने 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है। अगर बताएं पहले सेट की बात करें तो भारत ने 25-23 से वहां पर अपना जो सेट था वो जीता था। जेरेमी विनीत ने पहले सेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 अंक अर्जित किए थे। यहां पर भारत ने अब दो जो सेट है अपने नाम कर लिया। पहला सेट जैसा मैंने बताया 25-23 से, दूसरा सेट 23-18 से जीत लिया। यानी दूसरे सेट में भारत ने और बेहतर प्रदर्शन किया है और देखना है कि भारत आगे किस तरह प्रदर्शन करेगा। हालांकि अब स्कोर ताजा अपडेट बता दे, दोनों के तीसरे सेट में 1-1 अंक बने हैं। विदुषी,
1: Absolutely. Now let's move on to the surfing update of the day, where India has had mixed results in the women's and men's short board events. Starting with the women's competition, Kamali Murthy was in action in round 3 against Indonesia. She scored 5.93 across two waves, while her Indonesian opponent finished with 11.64, bringing Kamali's campaign to an end. Now Shanti Sugargayan also bowed out in round 3 up against Japan. Sugar finished with 5.17, while her Japanese opponent scored 14.60. So both women Indian surfers have now exited the competition after reaching round 3. Moving on to the men's event, Sivaraj Babu was in action in round 2, where he faced Iran's Kadir. Sivaraj produced a strong score of 8.96, comfortably ahead of Kadir's 3.60. And we also mentioned Kishore, who is already qualified to round 3. So both Kishore and Sivaraj are now through to round 3. But that stage is yet to take place and is scheduled for tomorrow.
0: ये बताते हुए श्रोताओं की भारत के 4 गोल्ड, 13 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज समेत 31 पदक हो गए। अगले 1 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और दोस्तों आप हैं हमारे साथ लगातार बने हुए, क्योंकि आपके जो मैसेजेस पहुंच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 9860707070, इस पर आप लगातार अपनी बातें पहुंचा रहे हैं हम तक, और हम भी कोशिश में हैं कि आपकी अधिक से अधिक बातें इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो चलिए इस कोशिश को और आगे बढ़ाते हैं। अंश सोनिया का, अच्छा नहीं, अंश का है सोनिया बिहार से मैसेज, और इन्होंने कहा है कि मुझे किसी भी गाने में मेरा नाम जो है शामिल कर दीजिए। तो बिल्कुल जी, आपका नाम शामिल हो जाएगा। अगला जो गाना है ये समझिए कि आपका नाम उसमें शामिल हो गया है। और अगला जो मैसेज है, इनका नाम मैं ढूंढ रहा हूँ, नाम आपका मिल नहीं रहा है। हाँ, कंचन का, इनका भी सोनिया बिहार से मैसेज आया है, और इन्होंने भी एक गाने में अपना नाम शामिल करने की बात कही है। आफसा खानम का धामपुर ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश से मैसेज आया है, और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से इन्होंने अपनी बात लिखकर पहुंचाई है और गाना सुनना चाहा है। साथ ही साथ अगला जो मैसेज है इनका नाम है निसार

सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, इन्होंने भी गाया कि हमें किसी गीत में शामिल कर लीजिए। बिल्कुल जी, आपको शामिल कर लिया है। और राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैसेज किया है पवन कसेरा ने खिलचीपुर से। इन्होंने अपनी बात लिखकर हम तक पहुंचाई है और कहा है कि कोई भी गाना सुनवा दीजिए। एक इन्होंने फिल्म का नाम भी बताया है। और अगला जो मैसेज है आपका, मैं मैसेज थोड़ा बड़ा है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा है इन्होंने, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपको भी। आपका नाम है, नाम कहाँ है आपका? लेकिन हाँ, संजीव कुमार, अमन कुमार, इन्होंने मैसेज किया है। कहाँ से किया है? हरियाणा के करनाल से मैसेज किया है। और इन्होंने कई गाने हम तक लेकर पहुँचाए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए दोस्त आपका। अगला जो मैसेज है इनका नाम है अशरफ अली, बबलू कश्यप, रोहिणी अवंतिका से। एक नहीं, इन्होंने अनेक मैसेज किए हैं, एक साथ कई मैसेज किए हैं, इसलिए इनका मैसेज जो है पढ़ने में हमें थोड़ा सा, जब तक हम इन तक पहुंचते इनका मैसेज एक और आता है, फिर ये और ऊपर अपनी फहरिस्त में अपने आप को कर लेते हैं, क्योंकि इस फहरिस्त में तो हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का भी मैसेज आया है। और मैसेज किया है किसने, कई और हमारे साथी हैं, इनका नाम अभी पढ़ दिया था दूसरे मैसेज से, इन्होंने फिर से इन्होंने अपना मैसेज भेजा है। और मैसेज किया है हमें किशन वंजानी, नीलम स्वाति, सरिता, सुमन महाजन और किशु ने रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। साथ ही साथ मैसेज किया है किसने, फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा ने कस्बा गन्नौर यूपी से। और एक गाना सुनने की फरमाइश की है। फरमाइशें हम तक और भी पहुंची हैं, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा जी की भी। इन्होंने मैसेज किया है हमें भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और मैसेज किसने भेजा है, किसी ने भेजा था उसने डिलीट भी कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से आप भेज सकते हैं। अगला जो मैसेज है इनका कहना है कि आज रिवर डे है तो कोई ऐसा गीत होना चाहिए। रिया का मैसेज इन्होंने कहा है। और साथ ही साथ मैसेज भेजा है हमें कोलार रोड से राम बाबू मालवी और मनीषा मालवी ने, एक गाना इन्होंने भी सुनने की फरमाइश की है। और फरमाइशें जो है आपकी लगातार हम तक पहुंच रही हैं। यश चोपड़ा जी की फिल्म से गीत तो हमने आपको सुनवाया, चलिए आपको एक और गीत सुनवाने की हम कोशिश करेंगे। और मैसेज जो हम तक लगातार आपके पहुंच रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो मैसेज है इनका नाम ढूंढ रहा हूं मैं, नाम है, मिल गया, बबलू कश्यप, नवाब अहमद, अशरफ अली, पिंटू दीवाना, संजय मालाकार, ये लोग नई दिल्ली से हैं और इन्होंने अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। और भी बातें हम तक पहुंची हैं जिनके नाम है, आदाब अर्ज किया है रेशमा बेगम और सलीम अख्तर ने, इन्होंने भी अपने मैसेज के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचाई है। और दिग्दर्शन और कविता गौड़ का भी मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है, मेरठ से इन्होंने मैसेज किया है। और कई हमारे साथी, अनिता वर्मा का द्वारका दिल्ली से मैसेज आया और इन्होंने हैप्पी डॉटर्स डे बोला है, साथ ही एक गाना जो सुनने के लिए फरमाइश की थी, इनकी फरमाइश का गीत तो हम सुन चुके हैं, तो हमें अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा हमें उम्मीद है। अगला जो मैसेज है इनका नाम है, क्या नाम है आपका, हाँ, कृष्ण कुमार मिश्र जी, इन्होंने कहा कि अरे गीत तो सुनाया नहीं। तो दोस्त कई बार क्या होता है कि हमारे पास समय जो होता है ना थोड़ा कम होता है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन गीत जब हम चलाते हैं ना तो हमारा समय जो कहता है कि आप 7-8 गीत चला पाते हो। तो अगर आपका गीत आपकी पसंद का नहीं भी चला है तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका नाम हमने शामिल किया और नाम के साथ साथ जब आपकी बात लोगों तक पहुंचती है तो अच्छा लगता है ना। तो चलिए एक गीत और सुनते हैं और इस गीत के बाद वापस आते हैं आपके मैसेजेस की तरफ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: ओन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और आपके बहुत सारे मैसेजेस और भी हम तक आए हैं और उन मैसेजेस तक हम बिल्कुल चलेंगे और उनको आप तक पहुंचाएंगे भी। और इस कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि आपने और कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। मैसेज किया है हमें निधि ने पंचकुला से। इन्होंने के गाना सुनने की फरमाइश की है और फरमाइशें हम तक आई हैं कुछ और हमारे साथियों की। आमिर कमर गुन्नौर, शुक्रिया इन्होंने कहा है और इन्होंने कुछ बातें अपनी लिखकर पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त उसका। और अगला जो मैसेज है अमरदीप कुमार का, इन्होंने लिखा है कि मेरा मैसेज पढ़ा कि नहीं, तो पढ़ दिया था आपका मैसेज। आप जब आपका मैसेज पढ़ा जा रहा होगा उस वक्त शायद आप किसी और काम में लगे होंगे। इसी तरह का कुछ हमारे एक और साथी हैं प्रदीप सलूजा जी, उनका भी मैसेज है कि ग्राहक आ गए थे तो सुना नहीं, तो कोई बात नहीं, आपका नाम फिर से हमने इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। अगला जो मैसेज है इनका नाम है नवाब अहमद भारती और शबाना भारती बल्ली मारान से। इन्होंने मैसेज किया है, एक गाना सुनने की फरमाइश की है और फरमाइशें और भी हैं हमारे पास आई हुई। आकांक्षा ने मुंबई से गाना सुनने की फरमाइश की है, 2-3 गाने इन्होंने सुनने चाहे लेकिन किसी कारण से हम इन तक वो गाने नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आप जब अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाएंगी तो आपकी फरमाइश को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से कई हमारे साथी हैं जिन्होंने मैसेज किया है। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा और शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप, इन सभी लोगों का मैसेज आया है। साथ ही साथ मैसेज किया है हमें सुदर्शन मुखी जी ने, अनिता मुखी और सिमरन मुखी ने शांतिनगर सोनीपत से। और मैसेज किसने किया है, मैसेज किया है देहरादून से रेनबो के नियमित श्रोता आलोक पंवार और मिनी ने भी। इन्होंने कहा है कि गाना अच्छा लग रहा है, किसी भी फरमाइश के गाने में हमारा नाम शामिल कर लीजिए। तो दोस्त बिल्कुल आपने कहा और हमने आपके इस कार्य को कर दिया, तो अगले गाने में अपना नाम आप शामिल माने। विवान धवन का मैसेज आया है, इन्होंने कई गाने हमारे साथ साझा किए हैं और इन्होंने लिखा है कि मैं जो है ये प्रोग्राम जो है लगभग रोज सुनते थे लेकिन किसी कारण से इनका रेडियो जो है 1 महीने पहले टूट गया, लेकिन आज इन्होंने नया रेडियो लिया है और प्रोग्राम को सुन रहे हैं और 1 महीने के बाद और ये बहुत अच्छा लग रहा है और जो इनकी गाने की फरमाइशें हैं वो भी इन्होंने पहुँचाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वियान, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा की, आप रेडियो को इतने ध्यान से सुनते हैं, लगातार अपनी बातें भी पहुँचाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती नई दिल्ली से मैसेज किया है, इन्होंने कई गानों की फरमाइश इनकी है और मैसेज हम तक कई और भी आए हैं। इनका नाम है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है नागौर राजस्थान से नोरत राम सुवासिया। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से इनकी दोपहर बहुत ही शानदार हो जाती है, गाने खूबसूरत हैं और राजस्थान के मौसम के बारे में इन्होंने बताया कि राजस्थान का जो मौसम है अभी बहुत सुहाना है। इसके अलावा मैसेज किया है हमें मुकेश कोहली, उषा रानी, वेदिका अर्नव ने गांव रिखोली धारम रानीखेत से। और किसने मैसेज किया है हमें, ये मैसेज आया है, आपने नाम तो अपना बताया है, कान्हा ने मेरठ से लिखा है ये मैसेज और इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और फरमाइश भेजने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं, फिरोज खान, नूरी फिरोज, अरबाज खान, शाहबाज खान, इन्होंने कहा है कि कोई भी गाना सुनवा दीजिएगा। तो बिल्कुल जी, कोई भी क्यों, जो आप पसंद चाह रहे हैं हमारे और भी श्रोता, तो उन्हीं की पसंद में आपका भी नाम हमने शामिल कर दिया है। मोहित कम्बोज का मैसेज आया है, गांव क्या है इनका, जोधावन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम सुन के मज़ा आ रहा है। और मैसेज किया है ज्ञान प्रकाश ने किशनगंज बिहार से, इन्होंने कहा है कि एक गाना इन्हें भी सुनना है तो सुनवाया जाए। तो दोस्त आप इसी तरह से लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि समय की तरफ मैं देख रहा हूँ तो कह रहा है कि जल्दी आप गाना अब तक पहुँचाएं, नहीं पहुँचाएंगे तो फिर समय कम रहेगा और हम नहीं चाहते कि समय गाने के लिए कम पड़े।

दोस्तों, एक बाहर की तरह होते हैं आपके मैसेजेस भी जो लगातार हम तक पहुंचते हैं। हम आपसे कहते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी बातें हम तक पहुंचाएं, अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाएं और कुछ जो आप कहना चाहते हैं वो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। तो आपने पहुंचाया भी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हम साथ में इसलिए भी करना चाहेंगे क्योंकि हमने जो बातें आपको कही थी उसके अलावा भी आपने कुछ बातें हम तक पहुंचाई हैं। इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने की दिशा में आपने काम किया है। अगला जो मैसेज है ये है संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम को सुन रहे हैं और किसी भी गीत में शामिल कीजिएगा और अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। यूपी के रतनपुरा शुमाली से मैसेज इन्होंने कहा है, एक गाना सुनने की फरमाइश है। इन्होंने लिखा है कि एक दोस्त है, इनकी शादी है वाजिद शेख, और उनके लिए एक गाना सुनना चाहते हैं। शादी करके फंस गया यार। ये आप बिल्कुल दोस्तों वाला काम कर रहे हैं आप। हमें उम्मीद है कि आपकी इस बात को वो मानेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तो सब फिक्स हो चुका है और आपको ये गाना सुनवा के क्यों ही आप उनको उनकी मोटिवेशन को कम कर रहे हैं। अगला जो मैसेज है वो है रिवर्स डे पर इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और इनका नाम मैं वरुण वार्ष्णेय है। इन्होंने अपनी बातें लिखकर पहुंचाई हैं। ऋषिकेश से हमारे एक साथी हैं पुनीत रावत, इनका मैसेज आया है। एक गाना सुनने की इन्होंने भी फरमाइश की है और फरमाइशें जो हम तक लगातार पहुंची हैं उनमें एक हमारे साथी हैं पिंटू दीवाना, इन्होंने भी अपनी बात लिखकर पहुंचाई है। बबलू कश्यप है, नवाब अहमद भारती, अशरफ अली, संजय मालाकर। अच्छा, इन्होंने भी पहले भी मैसेज किया था और मैसेज किया है रात और गजला ने, नेहटौर बिजनौर यूपी से। इन्होंने भी गाना सुनने की फरमाइश की है। जैद और हुडा का भी मैसेज आया है, इनकी भी मैसेज में अपनी बात लिखकर इन्होंने पहुंचाई है। मोनू पाराशर का मैसेज आया है अलीपुर दिल्ली से। अनीता वर्मा ने भी द्वारका दिल्ली से मैसेज लिखकर पहुंचाया है और मैसेज किया है, इनका नाम ढूंढ रहा हूं मैं, खुशबू खुशबू तो नाम नहीं, इनका नाम योगेश है और इन्होंने गाना जो सुनना चाहा था वो शायद उससे मिलता जुलता कुछ शब्द था, वो जो मैंने बताया आपको, देहरादून के विकास में इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका। साथी मैसेज किया है हमें, हमारे साथी हैं राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से, भी लिख रहे हैं कि सुन रहे हैं शुभ दोपहर। और मैसेज किया है हमारे कुछ और साथियों ने, इन्होंने कहा है कि मेरा मैसेज देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, कौन है ये, आपका मैसेज पढ़ दिया था आपने शायद उसको सुना नहीं। तो इस तरह से हो सकता है, ऐसा तो हम करते ही नहीं है। आप अगर मैसेज हम तक पहुंचा और हम उनको शामिल ना करें ऐसा तो बहुत कम ही होता है। उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनोज कुमार, सुनीत कुमार ख्याला से, इनका भी मैसेज आया। अनिल ठाकुर, रीना ठाकुर, सराय काले खान दिल्ली से, इनका भी मैसेज हम तक पहुंचा है और मैसेज पहुंचाया हमें कई और साथियों ने जिनमें अपनी बातें इन्होंने लिखकर पहुंचाई है। अनिल ठाकुर का एक बार फिर से मैसेज आया। तो दोस्तों, आपके मैसेजेस के लिए, आपके फीडबैक्स के लिए, आपकी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक और गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये गीत आप लोगों की ही फरमाइश पर है, आपने कहा है तो हमने आपके लिए इस गीत को चुना है। और इस गीत को सुनने के साथ साथ आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 2 बजे से आप हमारा अगला प्रोग्राम सुन पाएंगे और उस प्रोग्राम में आपके साथ हमारे जो साथी हैं उनके बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। अगला जो प्रोग्राम आप सुनने वाले हैं वो है आशियाना, जिसमें छोटे उस्ताद में आज आपके साथ होंगी कोमल भारती। और इस गीत के साथ ही राजेश कुदरी जी, अनुमति नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। दोपहर के 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में झड़खाली की कुछ महिलाओं द्वारा मैंग्रोव वन लगाए जाने की चर्चा की। इनमें से अधिकांश वे महिलाएं हैं जिन्होंने बाघों के हमले में अपने पति को खो दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय केरलम दौरे पर हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई मुख्य रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने 70 होटलों, रेस्तरां और खाने पीने से जुड़े अन्य स्थानों का औचक निरीक्षण करने के बाद 25 को स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन के कारण बंद कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए सभी युद्धग्रस्त देशों से तनाव कम करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्कमेनिस्तान सरकार और विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव को स्वाधीनता की 35वीं वर्षगांठ पर बधाई दी है।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक कई लोगों की मौत। उत्तराखंड में तेज बारिश और बिजली गिरने को लेकर रेड अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। ओडिशा के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न होने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गृह मंत्री अमित शाह और संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन दिनों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। एशियाई खेलों में आज भारत के मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव को 5-0 से हराकर देश के लिए मुक्केबाजी में पहला पदक पक्का कर लिया है। और एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, ये है आकाशवाणी एफएम रेनबो और आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इसे दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली एनसीआर के बाहर देश दुनिया में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर आप हमसे जुड़े हुए हैं हमारी न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इसके अलावा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और डीटीएच पर भी। और दोपहर के 2 बज चुके हैं। जैसे कि संडे का दिन है तो संडे के दिन आशियाना के तहत हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए छोटे उस्ताद, जहां हम बातें करते हैं बच्चों की, किशोरों की, उनकी खुशियों की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी क्यूरियोसिटी की और कुछ ऐसी बातें जो उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और आज के इस आशियाना यानी छोटे उस्ताद में मैं हूं आपके साथ, आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। और दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है ना, वो थोड़ा सा सीरियस जरूर है लेकिन है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी। जरा सोचिए, बच्चा होमवर्क में मदद के लिए एआई चैटबॉट से बात करता है, फिर कोई कहानी पूछता है और फिर कोई सवाल, और धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स भी उससे शेयर करने लगता है। तो सवाल ये है कि एआई चैटबॉट बच्चों का स्मार्ट हेल्पर है, एक वर्चुअल फ्रेंड है, या फिर हमें थोड़ा सा रुक कर सोचने की जरूरत है। आज के छोटे उस्ताद में इसी पर होगी खुलकर बातचीत। जानेंगे कि एआई बच्चों को इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, एआई से बातचीत में उन्हें क्या अच्छा लगता है, कब होमवर्क की हेल्प इमोशनल बातचीत में बदल सकती है, और इसका बच्चों की क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, पेशेंस और रियल लाइफ रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ सकता है। और इन सबसे जरूरी ये है कि ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर करें या उन्हें टेक्नोलॉजी की समझदारी से इस्तेमाल करना उन्हें सिखाएं। हम बात करेंगे उन छोटे छोटे तरीकों की, उन छोटी छोटी सी बातों की जिन्हें पेरेंट्स बच्चों की डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, और बिना डांट, बिना डर और बिना किसी बात पर मोबाइल बंद करो कहकर बच्चों की दुनिया में शामिल हो सकते हैं। तो आज की बातचीत है बच्चों के लिए भी और उन पेरेंट्स के लिए भी जो चाहते हैं कि उनके बच्चे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें लेकिन रिश्तों से जुड़े रहें। तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आज है छोटे उस्ताद में बात एआई की भी और इंसानी कनेक्शन की भी।
2: चकरक चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो।

आप सुन रहे हैं आशियाना, और आशियाना में मैं हूं आपके साथ कोमल। और आज संडे स्पेशल में छोटे उस्ताद हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। और दोस्तों, अब जरा बच्चों की जगह पर खुद को रखकर सोचिए। आपने कोई बात कही, सामने वाले ने बीच में नहीं टोका, आपने गलती की, उसने हंसकर मजाक नहीं बनाया, आपने वही सवाल 10 बार पूछा लेकिन उसने ये नहीं कहा कि अरे तुम्हें ये भी नहीं पता। दरअसल AI चैटबॉट अक्सर ऐसा ही एक्सपीरियंस देता है, और ये एक आज के ज़माने में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो इस वर्ड को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में प्रभावित मानते हैं कि जजमेंटल फ्री। जी हाँ, AI चैटबॉट जो होता है वो उनके लिए जजमेंटल फ्री होता है, जजमेंट नहीं करता है उनको। मतलब कि जहाँ आपको लगे कि सामने वाला आपको जज नहीं कर रहा, जो बच्चा थोड़ा शाही है, जिसे लगता है कि उसकी बात कोई नहीं समझता, या जो अपने मन की बात कहने में थोड़ा सा शर्माता है, थोड़ा सा झिझकता है, उसे AI से बात करना बहुत ईजी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत प्यारी सी और छोटी सी बात याद रखनी होगी कि AI जो है ना, वो जवाब ज़रूर दे सकता है लेकिन इंसानी रिश्ते और उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मम्मी की गोद हो, पापा का कंधा हो, दोस्त की हंसी हो या टीचर की समझ हो, इनका कोई भी डिजिटल वर्जन नहीं होता है। तो छोटे उस्तादों और उनके पेरेंट्स, टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो सकती है लेकिन रिश्ते हमेशा दिल से कनेक्ट होते हैं।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई, असंक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, ऑल इज वेल, यही कहता है एआई जब भी आप उनसे कोई भी सवाल करते हैं, फिर चाहे बड़े हों या बच्चे। और इसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल होती है, एआई मेरा होमवर्क समझा दो, फिर एआई होमवर्क समझा देता है, फिर उससे कहते हैं बच्चे की हमारे लिए एक स्टोरी बना दो, और फिर कहते हैं कि आज मेरा मूड खराब है। और ऐसे ही कभी कभी बात पहुंच जाती है कि क्या एआई मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मान सकता हूं। बस यहीं पर पेरेंट्स को थोड़ा सा पॉज बटन दबाना चाहिए, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि बच्चा एआई यूज कर रहा है या नहीं, सवाल ये है कि वो एआई का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है, होमवर्क के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्रिएटिव आइडियाज के लिए, या फिर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, डर, रिश्तों की परेशानी और पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। बच्चे एआई से बात करना ज़रूर सीख सकते हैं और ये गलत नहीं है, लेकिन कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर नहीं रुकना है, या कहाँ पर बच्चों को रोकना है, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब चैटबॉट वाला पहला और सबसे ज़रूरी इमोशनल सपोर्ट बनने लगे, तब थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एआई को शॉर्टकट रखिए, अपने बच्चे की जिंदगी का मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी मत बनने दीजिए।

0: स्कोर था उसके साथ अपने पक्ष में किया। इस तरह तीनों राउंड में जो तीनों राउंड का प्रदर्शन था उसके आधार पर जजों के सर्वसम्मत फैसले से प्रवीण ने 5-0 से मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ प्रवीण ने महिला 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत के लिए एक पदक और सुनिश्चित हो गया है। आपको यह भी बता दें कि आज ही अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का बॉक्सिंग में पदक पक्का किया था।
1: Didn't we say this is a day of twists and turns and welcoming of medals? So as we continue this roller coaster of an update, it is important to remind you of another one of the brightest stories from today's action. That is, alongside the silver medals coming in from squash and other sports, the Indian archery contingent has given us plenty to celebrate as well, with strong performances across both recurve and compound. If we take a look at how Indian archers have made it a really encouraging day, is when in recurve men's team defeated China and booked their place in semi-finals. The women's team defeated Chinese Taipei and did the same. The mixed recurve team beating Vietnam after an earlier victory over the UAE, which means three Indian recurve teams are now through to the semi-finals. But the good news still does not stop there, because the compound teams have also reached the semi-finals like that. And we now have the semi-finals match that we look up to on September 30th for compound and on October 2nd for recurve events. So after the excitement and silver medals from squash, this is another really bright spot for India today.
0: बात कर लेते हैं वॉलीबॉल की, जहां भारत को जीत हासिल हुई। एशियाई खेलों के पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी के मुकाबलों में भारत जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है उसको कौन देखते हुए आज का जो मुकाबला था बेहद खास था। वियतनाम को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और तीनों सेट अपने नाम कर लिए। पहले सेट में भारतीय खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबले के बाद 25-23 से बाजी मारी। दूसरे सेट में भी भारत ने अच्छी लय बरकरार रखी, 25-21 से जीत दर्ज की। और तीसरे सेट में भारत ने शुरुआत से जो बढ़त बनाए रखी थी उसे जारी रखी और 25-20 से सेट अपने नाम कर 3-0 से मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में हांगकांग चीन का सामना करेगी। यह मैच 28 सितंबर यानी कल खेला जाएगा। खबरें और हैं, लगातार मुकाबले जारी हैं, लेकिन फिलहाल इस घंटे की अपडेट में इतना ही। मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। अगले घंटे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं इस वक्त छोटे उस्ताद और मैं हूं आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी। और आज हम बातचीत कर रहे हैं कि एआई चैटबॉट जो है वो आपके बच्चों का मददगार है, दोस्त है या फिर हमें रुककर सोचने की कुछ जरूरत है। और दोस्तों अब आते हैं उस हिस्से पर जहां बात होती है थोड़ी सी सीरियस। हर सवाल का अगर इंस्टेंट आंसर मिल जाए तो सोचने की पेशेंस जो होती है वो कम हो जाती है। अगर हर कहानी एआई बना दे तो अपनी इमेजिनेशन को मौका कम मिलेगा। हर बोरूम में स्क्रीन मिल जाए तो बच्चा खुद से खेलना, कुछ इन्वेंट करना, खिड़की से बाहर देखना, सपने देखना भूल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, बोरूम यानी बोरियत। अक्सर हम सोचते हैं कि बोरूम खराब है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी सी बोरूम भी होना यूजफुल हो सकता है। क्योंकि जब बच्चा कहता है कि मम्मी मैं बोर हो रहा हूं, तो कभी कभी इस बोरूम से जन्म लेता है एक नया खेल, नई ड्राइंग, कोई कहानी, कोई शरारत और कोई ब्रिलियंट आइडिया भी। तो दोस्तों हर खालीपन भरना जरूरी नहीं होता, कुछ खालीपन बच्चों की क्रिएटिविटी से भरने के लिए भी छोड़ देना चाहिए।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड

0: watch for free.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: और रेनबो पर चल रहा है प्रोग्राम छोटे उस्ताद, जिसमें आज हम बातचीत कर रहे हैं अपने छोटे उस्तादों के AI के इस्तेमाल के बारे में। और दोस्तों, एक और बड़ा फर्क है AI और रियल लाइफ में। AI चैटबॉट बहुत पेशेंटली जवाब देता है, लेकिन रियल वर्ल्ड मम्मी कह सकती हैं नो, पापा कह सकते हैं अभी नहीं, टीचर कह सकते हैं ये सही तरीका नहीं है, दोस्त कह सकता है मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, और ये सुनना और सीखना भी पड़ता है। अगर बच्चा हर समय एक ऐसी जगह पर रहे जहां उसकी हर बात को वैलिडेशन मिले, तो रियल लाइफ डिसएग्रीमेंट संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चों को सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, उन्हें कन्वर्सेशन चाहिए। सिर्फ तारीफ नहीं, कभी कभी प्यार से मिली करेक्शन भी चाहिए। और हर बार यस सुनना कंफर्टेबल है, लेकिन लाइफ हमें नो सुनकर भी आगे बढ़ना सिखाती है। आप सुन रहे हैं आशियाना और मैं हूं आपके साथ, आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। एफएम रेनबो पर 9:00 बजे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: और रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद। और अब थोड़ा सा माइक करते हैं पेरेंट्स की तरफ। जी हाँ, कई बार पेरेंट्स की जिंदगी इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि बच्चा चुपचाप मोबाइल लेकर बैठा है तो लगता है पेरेंट्स को कि चलो कम से कम बच्चा बिजी तो है। लेकिन बच्चे के लिए सबसे बड़ी जरूरत हमेशा कोई नया गैजेट नहीं होती, बस इतना पूछ लेना भर होता है कि आज स्कूल में क्या हुआ, आज किस बात पर हंसी आई, या ऐसी कोई बात हुई जिससे तुम्हें बुरा लगा। और सबसे जरूरी, बच्चे की बात सुनते समय तुरंत उसे लेक्चर देना शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि अगर हर कन्फेशन के बाद बच्चे को 10 मिनट की 15 मिनट की डांट मिलेगी तो अगली बार वो आपसे कन्फेशन करेगा ही नहीं। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि घर वो जगह है जहां पर वो अपनी बात कह सकता है बिना किसी डर के। एक कन्वर्सेशन रोज शायद किसी ऐप से ज्यादा पावरफुल कनेक्शन बना सकती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आशियाना और मैं हूँ आपके साथ कोमल।
4: बकबक।

आप सुन रहे हैं छोटे उस्ताद और मैं हूं आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। और दोस्तों, अब जब एआई का इतना यूज बच्चे कर ही रहे हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि पेरेंट्स ऐसे में क्या करें, एआई छीन लें, मोबाइल बंद कर दें या चैट बूट डिलीट कर दें। शायद बात इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है।

10 मिनट साथ बैठते हैं। फर्क छोटा है, कनेक्शन बड़ा बनेगा। डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत मोबाइल से नहीं, रिलेशनशिप से कीजिए। तो प्यारे साथियों, आज के छोटे उस्ताद में हमने बात की, समझने की कोशिश की कि जो हमारे बच्चों की आज की जिंदगी और आने वाले कल दोनों से जुड़ी हुई है। हमने जाना कि AI चैटबॉट बच्चों की पढ़ाई, जानकारी और क्रिएटिविटी में मददगार तो हो सकता है, लेकिन जब बातचीत, होमवर्क से आगे बढ़कर लोनलीनेस और डर, पर्सनल प्रॉब्लम्स और इमोशंस तक पहुंचने लगे तो पेरेंट्स को इंटरफेयर करना जरूर बनता है। तो फिलहाल आज के छोटे उस्ताद में यहीं तक आपका साथ मेरे साथ रहा। फिर मिलूंगी आपसे शाम को 4 बजे रेनबो जीनियस लेकर के, तो आप बिल्कुल जुड़िएगा हमारे साथ शाम 4 बजे से। फिलहाल आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। कोमल को दीजिए फिलहाल इस प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर वो प्रोग्राम जो लाता है जवाब आपकी क्वेरीज का, आपके सवालों का। रोज एक नए विषय, नए विकार या फिर ये कहें कि एक अलग बीमारी पर चर्चा के साथ सवालों के समाधान का। तो आज का दिन हमने चुना है हियरिंग केयर फॉर ऑल, यानी सभी के लिए श्रवण संबंधी देखभाल। और इस विषय से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो ENT स्पेशलिस्ट हैं एम्स दिल्ली से, और मैं हूं आपके साथ RJ रश्मि। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: जी धन्यवाद, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार सर। हमारी सर पांचों इंद्रियों में से एक है कान, और इसी की वजह से, या ये कहें कि ये ही कान के होने से ही हम सुन पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ईश्वर की खूबसूरत नियामत से परिचित नहीं है, या किसी वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो सुन नहीं पाते। तो आज के दिन हम, इससे पहले कि लिसनर्स के मैसेजेस शुरू हो हमारे साथ जुड़े, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि कान में किस तरह की तकलीफ होती है।
3: जी जैसे आपने बताया, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सुनाई ना देना या कम सुनाई देना। तो एक तो कान की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा कान में दर्द होना, कान से पस आना, या कान की वजह से कई बार चक्कर भी आते हैं। ये तीन चार सिम्टम्स हैं जिससे वजह से हमें पता चलता है कि कान के अंदर प्रॉब्लम है।
2: हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश कुमार, एम्स दिल्ली के ENT स्पेशलिस्ट।

0: जी हाँ, बिल्कुल प्यार हो जाएगा यदि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सुनाई देगा और आपको कुछ भी चीज, कोई भी आवाज सुनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन होता यही है कि जब भी सुनने की क्षमता में थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो हमें कुछ भी अच्छा लगना बंद हो जाता है। तो ये सोचिए, जिन्हें किसी भी तरह से सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम है या उन्हें सुनने में तकलीफ होती है, वो किस तरह की परिस्थिति से गुजरते होंगे। तो डॉक्टर साहब, सुनने की क्षमता की यदि हम उनके कारणों की बात करें कि क्या कारण रहते हैं कि सुनने की क्षमता कम हो जाती है, तो उनके क्या रीजंस आप बताएंगे?
1: जी, अगर हम इसको तीन हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें कि बच्चों में, एडल्ट्स में और ओल्ड एज में,
0: जी,
1: तो बच्चों में एक जो मेन कारण है वो है कि जन्मजात होना, उसमें कि बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं और अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा भी नहीं। तो इसमें तो ये करना होता है कि सबसे पहले हम इसका पता लगाएं, और पता लगे जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएंगे उतना जल्दी बच्चा नॉर्मल

0: सुन भी लेगा और बोल भी लेगा।
1: तो सर ये किस वजह से मतलब हमें लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी ये कराना चाहिए, उसमें इलाज पूरी तरह से संभव है?
0: जी, आजकल एक नई टेक्निक आ गई जिसको हम कॉकलियर इम्प्लांट बोलते हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते या बोलते हैं उनमें किया जा सकता है, लेकिन एक ही इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जितनी जल्दी करें, जल्दी का मतलब है अगर हम विश्व में बाकी देशों में देखें जो विकसित है वहां पे करीब 3 या 4 या 6 महीने पे कर देते हैं कॉकलियर इम्प्लांट, हमारे यहाँ वही चीज होती है 4-5, 5.5 साल पे जाके। तो हमें उसको नीचे लेके आना है, तो हम ये बोलते हैं कि कम से कम एक बार जांच जरूर कर लें 1 साल से पहले, जिससे हम उसका इलाज करें और वो नॉर्मल बोले। इसके अलावा दूसरे कारण जो बच्चों में होते हैं कि मान लीजिए कि जो उसका जन्म हुआ लो बर्थ वेट है, उसमें बच्चे के इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हैं, या माँ का मेल न्यूट्रिशन है तो बच्चे तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा उसकी वजह से हो सकता है
1: जी।
0: या आयोडीन की कमी से जो थायराइड होता है बच्चों में उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन है जैसे बार बार सर्दी जुकाम होना, उससे कान पे असर पड़ना, फिर कान के में दर्द होना और फिर पर्दा फट जाके पस निकलना, वो एक कॉमन कारण है। इसके अलावा जो थोड़े से बड़े बच्चे अडल्ट हैं उसमें कान में वैक्स जमा होना, उसकी वजह से कम सुनाई आ सकता है।
1: सर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं खासतौर पे जो बधिर हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता
0: जी,
1: तो क्या उनसे उनके बच्चे में भी होने के चांसेस होते हैं?
0: जी जरूर होते हैं, लेकिन उसके लिए ये कहना कि सारी बधिर महिलाओं के बच्चे बधिर होंगे ये ठीक नहीं होगा, उसमें कुछ परसेंटेज में हो सकता है। तो हम ऐसे जो नव दंपत्ति हैं उनको ये बोलते हैं कि आप एक बार जेनेटिक काउंसलिंग कर लें, तो वो रिस्क करके बता देते हैं कि कितने चांस हैं बच्चे के नॉर्मल होना या बच्चे का मुंह और बधिर होना बच्चे का।
1: तो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर हो जाता है?
0: जी वो आपकी काउंसलिंग कर देंगे और उसके हिसाब से फिर आपको वो बताएंगे कि कैसे अवॉइड करना है और अगर जन्म हो तो उसके लिए क्या क्या करना है जन्म के बाद।
1: सर यहाँ कुछ सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो मैं सबसे पहले लेना चाहूंगी। मंजीत कुमार रामगढ़ झारखंड से लिख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको नमस्कार बोला है उन्होंने।
0: नमस्कार।
1: उन्होंने बताया है कि मेरी उम्र 24 साल है और मेरा एक कान, बाएं कान की बात उन्होंने की है, उसमें कुछ भी आवाज आने पर दोबारा सुनाई देता है
0: जी,
1: जैसे कि सनसन की भांति आवाज सुनाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है?
0: जी जैसे उन्होंने बताया, ऐसा लगता है कि उनके एक कान की जो सुनाई की नस है उसमें डैमेज है, तो उसके लिए मैं ये चाहूंगा ये जाके ENT विशेषज्ञ को दिखाएं और सुनाई की जांच कराएं। अगर उसमें नस खराब है तो उसके लिए कुछ चीजें अवेलेबल हैं जिसमें हियरिंग एड है और कई बार दवाई भी देते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है, खासतौर से अगर रिसेंट ऑनसेट है कि जल्दी में हुआ। अगर बहुत पुराना है तो फिर दवाइयों को तो उतना असर आता नहीं है, लेकिन आजकल मशीनें हैं और दूसरे तरीके भी हैं जिससे वो उनकी मदद हो सकती है
1: जी। तो सबसे पहले तो हम अपने सभी लिसनर्स को यही कहेंगे कि कोई भी यदि आपको परेशानी लग रही है, सुनने में कोई भी दिक्कत है, तो सबसे पहले जाइए और अपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो आपको बताएंगे कि आगे आपको कैसे करना है। एक मैसेज और आया है सर हम तक, लिखने वाले हैं अमिताभ कुमार मेरठ से, कहते हैं मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, कोई होम रेमेडी हो तो बताइए।
0: इन्होंने अपनी एज नहीं बताई है शायद हमें ना।
1: तो अमिताभ जी यदि आप हमें सुन रहे हैं तो अपनी एज भी लिखकर भेजिए ताकि बताने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। कोई भी लिसनर्स जो इस वक्त हमसे सवाल पूछ रहे हैं, यदि अपने से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो आप अपनी उम्र का ध्यान जरूर उसमें उम्र का जरूर मेंशन कीजिए ताकि डॉक्टर साहब सही सलाह आपको दे सकें।
0: जी जो हल्का सुनने में कमी के जो कॉमन जो कारण है उसमें से एक है कान के अंदर वैक्स होना, और अगर खांसी जुकाम होता है हम सभी ने देखा है कि कान ऐसे लगते हैं किसी ने ढक्कन लगा दी दोनों तरफ से,
1: जी बिल्कुल,
0: बट वो टेम्परेरी है, जैसे ही आपको जुकाम ठीक होता है वो भी ठीक हो जाते हैं।
1: सर इन्होंने अपनी उम्र बता दी है, इनकी उम्र है 37
0: यंग है, तो इसका मतलब एक बार इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आजकल जो यंग एज में एक और चीज जो देखने में आ रही है वो आ रही है ईयरफोन लगा के जो लोग सुन रहे हैं हाई वॉल्यूम पे, वो चाहे काम के लिए है या म्यूजिक सुनने के लिए है। लोग कई बार दूर दूर ट्रेवल करते हैं 1-1.5 घंटे और बाहर इतना शोर होता है, उसको काउंटर करने के लिए हम वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि जो ऐसा कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि जो एक सेफ वॉल्यूम है वो मैं बोलता हूँ कि 30-40% है जो टोटल वॉल्यूम का, उससे आगे ना बढ़ाएं। मान लीजिए टोटल 10 है तो वो 3 या 4 मैक्सिमम रखें। तो उससे
1: सर ऐसा ही एक सवाल आया है और इन्होंने लिखा है कि मेरा सवाल ये है, फैमिली फंक्शंस में और रोड पर व्हीकल्स में स्पेशली आजकल बहुत बाइक्स में भी सुनेंगे बहुत लाउड आवाज होती है या व्हीकल्स में लाउड म्यूजिक सुनते हैं शादियों में फंक्शंस में भी बहुत ज्यादा, तो उसी से रिलेटेड है क्या ये प्ले करना और इस तरह से, इससे भी कान खराब हो सकते हैं?
0: जी बिल्कुल खराब हो सकते हैं, खासतौर से तब जब एक क्लोज एनवायरनमेंट में हो रहा है, जैसे हम डिस्को में गए हैं या फैमिली फंक्शन है क्लोज रूम में हो रहा है जहां पे बहुत तेज स्पीकर चल रहे हैं और आप

0: उनके पास ही खड़े हैं, तो अगर आपको चिल्ला के बात करनी पड़ रही है इसका मतलब ये है कि आसपास नॉइज बहुत ज्यादा है, तो आपको वहां से तुरंत दूर होना है। अगर तुरंत दूर नहीं हो पा रहे हैं तो कान को अपनी दोनों उंगलियों से दोनों कान बंद करें और उसके बाद वहां से जितना जल्दी हो सके दूर चले जाएं, वरना क्योंकि दिक्कत ये है कि जो नॉइज या शोर और क्रैकर की आवाज से जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। अगर एक बार डैमेज हो गया तो वो दवाइयों से या किसी कोई मेडिसिन या कोई ऐसा नहीं है इलाज जिससे हम ठीक कर पाए। तो एक हियरिंग है जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहनी है और उसे हमें प्रोटेक्ट करना है।
1: ये सवाल था आरएस चड्ढा का सुभाष नगर दिल्ली से। सर इसी में जैसे आपने बताया कि क्रैकर्स यानी कि पटाखों की आवाज से भी ये दिक्कत हो सकती है और ये दिक्कत परमानेंट हो सकती है। हम केवल व्हीकल्स में फैमिली फंक्शंस में नहीं, आजकल बच्चों को हेडफोन्स और ईयर प्लग्स लगाने का बहुत ज्यादा हो गया है और उसी से वो घंटों कई घंटे लगातार कान में लगाकर वो अपने या तो हाई वॉल्यूम पे अपना काम करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी वॉल्यूम जरूर कंट्रोल में रखें, ज्यादा वॉल्यूम होगा तो कान को डैमेज होगा। कान को कितने वॉल्यूम से डैमेज होता है ये कहना इस चीज पे आप समझ सकते हैं कि जो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं उसको अगर हम डीबी में नापते हैं इसका लाउडनेस ना, तो वो करीब 50 डीबी है। अगर हम एरोप्लेन में जब एयरपोर्ट पे जाते हैं जो उसकी आवाज आ रही है वो करीब 120 से 140 डीबी है।
1: अच्छा,
0: उस पर अगर हम एक्सपोज करते हैं तो वो इमीडिएटली डैमेज हो जाएगा। ऐसी फायर क्रैकर है अगर क्लोज जैसे रूम के अंदर आपने क्रैकर चलाया और उसकी आवाज काफी तेज है तो कान का टोटल डैमेज हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया लाउडनेस, जितनी लाउडनेस ज्यादा होगी उतना डैमेज ज्यादा होगा, जितनी कम होगी वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा लेकिन डैमेज होगा। तो जहां पर भी आपको ऐसे लगे कि आपको दूसरे की बात सुनने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है या दोबारा रिपीट कराना पड़ रहा है इसका मतलब नॉइज ज्यादा है, उसको नॉइज को लेवल को आपको कम करना है।
1: तो सर क्या ये परेशानी नापने का, श्रवण संबंधी सुनाई देने की क्षमता कम हो गई है, इसे मापने का कोई यंत्र होता है या कोई टेस्ट होता है जिससे ये किया जा सकता है, पता चल सकता है?
0: हाँ, इसको हम लोग ऑडियोमेट्री बोलते हैं, जिसको सुनाई की जांच जिसको हम लोग बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, कान के ऊपर हेडफोन लगा दिया जाता है और करीब 5 से 10 मिनट में टेस्ट हो जाता है। इसमें कोई दवाई नहीं देना, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, सिंपली आवाज सुनाते हैं और उससे हम देखते हैं कि आवाज से कैसा रिस्पॉन्स है। तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है,
1: बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है डॉक्टर साहब ने बताया, और उन लोगों के लिए खासतौर पे जो हेडफोन्स लगाना पसंद करते हैं उन्हें वो हेडफोन लगाकर भी अपना टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन यदि आप जनरली लंबे समय तक हेडफोन का या ईयरप्लग्स का इस्तेमाल करते हैं और लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो उसे आज ही बंद कर दीजिए, हो सकता है कल को आप भी इस परेशानी से जूझने लगे। तो डॉक्टर साहब एक मैसेज और आया है हम तक, लेकिन मैसेज पढ़ने से पहले मैं सोच रही क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और वापस आते हैं हम डॉक्टर साहब के सवालों के साथ। हमारे लिसनर्स को एक बार फिर से बता दूं, रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट एम्स दिल्ली से, और आज का हमारा विषय है हियरिंग केयर फॉर ऑल, सभी के लिए श्रवण संबंधी देखभाल।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, बिल्कुल चुपके से नहीं, आप बिल्कुल खुलकर सुनिए और सारी बात सुनिए। और ऐसे ही सुनते सुनते हमारे एक लिसनर का मैसेज हम तक पहुंचा है। जिला हापुड़ से लिख रहे हैं आरिफ रबानी, इन्होंने कहा रोज कान में ईयरफोन और हेडफोन लगाकर मैं एफएम रेनबो सुनता हूं और थोड़ी आवाज भी कम आती है, लेकिन अब आपने जैसे बताया है कि वॉल्यूम कम करके सुनिए, तो मैं आगे से यही करूंगा। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया सर आपका भी कि आपने अपनी बात, हमारी बात ध्यान से सुनी और हमें मैसेज करके बताया कि आप हमारे इस प्रॉब्लम को, मतलब हमारे इस सॉल्यूशन को आपने ध्यान से सुना और अब आप ध्यान से रखेंगे अपने कान का भी। एक और मैसेज आया है, लिखने वाले हैं 72 इयर्स ओल्ड एसएस मुखर्जी कोलकाता से
2: जी।
1: ये कह रहे हैं कि मेरे कान में लेफ्ट ईयर में लगभग 3 साल से रिगिंग साउंड आती है और उसकी वजह से हियरिंग जो पावर है वो भी थोड़ी कम होती जा रही है और आई हैव फेस वर्टिगो अटैक और साथ में वॉमिटिंग आती है टाइम टू टाइम। तो उनके लिए कुछ बैलेंसिंग प्रॉब्लम कुछ बता, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कोई मेडिकल एडवाइस? ये बैलेंस भी रहे, वर्टिगो भी बैलेंस रही और सुनने की क्षमता भी।
2: जी मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि अगर ये ड्राइविंग करते हैं तो फिर बिल्कुल ना करें
1: जी।
2: और कोई स्टूल पे खड़े होके या सीढ़ी पे चढ़ के कुछ काम ना करें, क्योंकि चक्कर आएगा तो ये गिर सकते हैं और चोट लग सकती है
1: जी।
2: पहला। दूसरा ये है कि अपने आप को एक्टिव रखें। एक्टिव रखने का मतलब ये है कि रात में बाहर ना निकलें, लेकिन शाम को या दिन में अपना मॉर्निंग वॉक करें, डे में वॉक करें, और जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे चक्कर कम रहेंगे
1: जी।
2: ऐसे ना करें कि बिस्तर पे लेट जाएं। दूसरा, क्योंकि चक्कर आ रहे हैं जिसमें उल्टी भी आ रही है और कान में सीटी की आवाज भी आ रही है, तो इसका मतलब ईएनटी डॉक्टर को दिखाना है। वो जांच करके बताएंगे इसका कारण क्या है और उसके लिए कुछ दवाइयां देंगे जो हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने चलाते हैं, उसके साथ साथ एक्सरसाइज बताएंगे जिससे चक्करों में भी आराम आ जाएगा और जो इनकी आवाज आ रही है कान में उसमें भी आराम आ जाएगा।
1: सर एक और मैसेज आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन इन्होंने कहा है मेरी उम्र जो है लगभग 20 साल।

0: हाल है, और 2019 में उन्हें कान में बहुत ज्यादा खुजली होती थी और कभी कभी कुछ चींटी किसी साउंड आती है, कुछ अलग सी साउंड आती है, उन्हें भी कोई आप एडवाइस दे सकें?
1: जी, पहली एडवाइस ये है कि आजकल काफी लोग कान को ना साफ करते रहते हैं
0: जी,
1: ईयरबड लेके।
0: हाँ, हाँ।
1: होता क्या, क्योंकि अच्छी फीलिंग आती है तो आदमी बार बार करता है। अब उससे नुकसान ये होता है कि जो कान के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम वैक्स बोलते हैं, वो भी पूरी निकल जाती है।
0: ओके।
1: और जैसी चमड़ी खुश्क होगी तो उसमें खुजली स्टार्ट हो जाएगी। तो कान साफ ना करें, ईयरबड या कोई नुकीली चीज डाल के या पेंसिल इससे साफ ना करें तो खुजली वैसे कम हो जाएगी। और जो ये सेंसेशन बता रहे थे कान में चीटी वाले सेंसेशन, अगर इन्होंने हियरिंग टेस्ट करा लिया है और वो नॉर्मल है तो बहुत कुछ चिंता की बात नहीं है। अगर हियरिंग टेस्ट नहीं कराया तो एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके हियरिंग टेस्ट करा लें। अगर हियरिंग में इश्यू है तो फिर हमें देखना पड़ेगा ये किस वजह से है।
0: सर, जैसे आप बता रहे हैं कि हियरिंग टेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके करा लें, तो ये जो लैब्स होती है जगह जगह, क्या ये टेस्ट वहां हो सकते हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर वहीं पर जो ईएनटी विशेषज्ञ होंगे वो बताएंगे तभी ये टेस्ट होगा?
1: नहीं मैम, ये नॉर्मल लैब्स में नहीं होंगे।
0: ओके।
1: ये आपको ईएनटी डॉक्टर को दिखाएंगे ओपीडी में, किसी भी हॉस्पिटल में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है।
0: okay.
1: तो वो कान को पहले जांच करते हैं कोई वैक्स वगैरह तो नहीं है, एक बार वैक्स नहीं है तो फिर सुनाई की जांच करते हैं। हाँ जी
0: सर, एक मैसेज हम तक और आया था और वो शायद मुझसे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। उन्होंने ये कहा था कि क्या कान में हाइड्रोजन परऑक्साइड डालकर उसे साफ किया जा सकता है?
1: आजकल हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल के हम कान साफ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसमें कंसंट्रेटेड चला गया तो कान की जो चमड़ी है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ना डालिए। अगर कान में कुछ मेल है तो उसके लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो उसको लाइट के अंदर देख के साफ कर देंगे उसको।
0: सर हाँ, ये लिखने वाले थे अनिल यादव अम्बेडकर नगर से। इन्होंने कहा चूंकि 5 साल से छोटे बच्चों में खास तौर पे इन्होंने बोला है, तो मुझे लगता है छोटे बच्चों के तो कान में कुछ डालना ही नहीं चाहिए।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बिल्कुल ना डालें। दूसरे जो वैक्स को सॉफ्ट करने वाली दवाइयां मिलती हैं मार्केट में, वो डॉक्टर जरूर लिख देंगे, और उसको 4-5 बूंद कान में डाल के हल्के से कान को मसाज कर दें 4-5 मिनट के लिए। उसके बाद कपड़े से बाहर से उसको साफ कर दें, कान के अंदर कुछ ना डालें, तो धीरे धीरे मेल्ट होकर अपने आप बाहर आ जाता है, उससे साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है।
0: ओके। तो सर मुझे लगता है जो हमारे लिसनर थे संदीप कुमार मेरठ से, इन्होंने यही जानना चाहा था कि कान की सफाई का सही तरीका क्या है, वो आपने बता दिया है। तो संदीप जी, आई थिंक आपने सुन लिया होगा और आपको आपके सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, यूं तो बहुत सारे सवाल लगातार हम तक आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें एक बार मैं फिर से बता दूं, आज का हमारा विषय है सभी के लिए श्रवण संबंधी समस्या का निदान। यदि आपको भी इससे रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड कोई भी यदि समस्या है, आप कोई क्वेरी जानना चाहते हैं, कुछ भी आपका सवाल है, आपको लग रहा है कि आपको सुनने की में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आज का रेडियो डॉक्टर खास है आपके लिए। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश कुमार, एम्स दिल्ली के ईएनटी स्पेशलिस्ट।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: वेलकम टू द एशियन गेम्स आर्ली अपडेट। दिस इज विदुषी वत्स विद शाहिद आजमी ब्रिंगिंग यू early latest updates of the games that are going. As we look back, you know, at the Indian campaigns that came to an end today, there were certainly some tough exits, but there were also several fighting performances and valuable experiences for the athletes and the teams. Let's start with badminton, where India's individual campaign came to an end today, where PV Sindhu, Unnati Hooda and the women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayathri Gopichand all saw their Asian Games journeys conclude at the quarterfinal stage. There were of course some challenging moments along the way, but reaching the knockout stages itself meant India remained firmly in contention in the individual events. Moving to fencing, the Indian women's sabre team also saw their campaign come to an end in the quarterfinals. There were also individual exits in fencing today, bringing several Indian campaigns to close after some competitive bouts. Surfing also gave us a mixed picture in the women's shortboard. Kamali Murthy and Shanti also had their issues where they both bowed out in round 3, bringing Indian women's campaign in the event to an end, but still something to look forward to in the men's competition with Seva Raj Babu as well as Kishore. When it comes to Kurash as a discipline, also saw several Indian campaigns concluding today with Yash and Vishal and Sangeeta and Bharti all suffering exits in their respective categories. But it wasn't all about exits today. Boxing provided a plenty of encouragement to us, and squash gave India something to celebrate with the Indian contingent securing silver medals, adding to the country's medal tally and providing another highlight from the day.
3: विदिशी पिछले एक घंटे में मात्र एक मुकाबला जो भारत का खेला गया वो बॉक्सिंग करा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के सचिन सिवाच का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया, समाप्त हो गया। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सचिन को जापान के शुनसुके कितोमोतो के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। सभी जजों ने मुकाबला जापानी मुक्केबाज के पक्ष में दिया। सचिन ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में करने की कोशिश की, लेकिन कितोमोतो ने अपनी लंबाई, रक्षात्मक तकनीक और सटीक पंचों के जरिए भारतीय मुक्केबाज पर दबाव बनाए रखा। सचिन अपनी लय हासिल नहीं कर सके और मुकाबले के दौरान उन्हें वापसी का कोई भी मौका नहीं मिला। इस हार के साथ सचिन सिवाच पदक से एक कदम दूर रह गए। इससे पहले आज महिला 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, वहां भारत की परवीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान के नवखोर खादिमो को 5-0 से हरा दिया। परवीन ने पहले राउंड में 4-1 की बढ़त हासिल की। उसके बाद परवीन ने अगले दोनों राउंड 5-0-5-0 से जीतकर तीनों राउंड के प्रदर्शन के आधार पर जजों ने सर्वसम्मत से परवीन को 5

0: के से विजेता घोषित कर दिया। इस जीत के साथ प्रवीण ने महिला 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत के लिए एक पदक और भी पक्का उन्होंने कर लिया। आपको यह भी बता दे, इससे पहले आज ही अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का बॉक्सिंग में एक और पदक पक्का किया था।
1: Now that we have looked as to all the matches that have taken place, all the disciplines that have happened, it's important to look as to what we have in the next few hours. Right now, right at this moment, the Indian women's hockey team is taking on Singapore with their Pool B match getting underway. Also in athletics, the women's long jump final is getting underway right now with Shailee Singh and Nancy Sojourn in action. Later today at 3:55, we have Harita and Unnati line up in the women's 200 meter final, followed at 4:05 by Animesh Kujur in the men's 200 meter final. Furthermore, we also have men's high jump final where Sarvesh and J. Adarsh Ram will be looking to challenge for the medals. And later, we also have women's 100 meter hurdles final where Nandini will be competing for us.
0: जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण मुकाबले बाकी हैं और यहाँ पर भारत जीतता है तो यकीनन उसके जो पदक का जो तालिका है उसमें इजाफा होगा और भारत की जो अभी रैंकिंग उसमें भी इजाफा होगा। फिलहाल अगर बता दें जो पदक तालिका चल रही है उसमें चीन सबसे ऊपर है, 114 गोल्ड और इसके अलावा 44 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज समेत 191 पदक के साथ सबसे ऊपर है। जापान दूसरे स्थान पर 33 स्वर्ण, 54 रजत और 55 कांस्य समेत 142 पदक जीते हैं, जबकि कोरिया के नाम 18 स्वर्ण, 22 रजत और 38 कांस्य समेत 78 पदक। वहीं भारत 12वें स्थान पर है, 4 स्वर्ण, 14 रजत, 14 कांस्य समेत 32 पदक भारत के खाते में यानी भारत की झोली में आ चुके हैं। और क्या अगले एक घंटे में होता है बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है, घंटे बाद 4:30 पर। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, अगले घंटे बाद मुलाकात होगी, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की अपडेट।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
4: यहाँ पर हम आपके साथ मौजूद है रेडियो डॉक्टर लेकर और आज का हमारा विषय है हेयरिंग केयर फॉर ऑल, सभी के लिए श्रवण संबंधी देखभाल। आपको बता दें हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राकेश कुमार जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है एम्स दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब, लगातार सवाल हम तक पहुंच रहे हैं हमारे लिसनर्स के, तो एक मैसेज आया है, लिखने वाले हैं सैयद दानिश जरी वाले ब्रह्मपुरी से और इनकी उम्र है 30 साल। इन्होंने कहा है कि 10 दिन पहले इनके कान में एक दाना हुआ था और दाना तो ठीक हो गया लेकिन इनका कान बंद हो गया, तो इसके लिए कोई होम रेमेडी हो या कोई और एडवाइस हो वो बताइए। एक चीज उन्होंने और लिखी है कि इन्हें जुकाम बहुत ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी होता है।
5: जी, जो आवाज कम होने का दो कारण समझ आ रहे हैं मुझे इनके केस में, एक तो जो जुकाम है उस वजह से भी कान बंद लग सकते हैं
4: जी,
5: तो उसके लिए तो अगर गर्म पानी की भाप ले लेंगे नाक से तो कान खुल जाएंगे।
4: Okay.
5: इसके अलावा दूसरा कारण होता है अगर कान में फुंसी हुई है और उसका एक बार पस निकल के कान में इकट्ठा हो जाता है पर्दे के आसपास, तो अगर वो है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाएंगे तो कान को साफ कर देंगे और कान फिर से खुल जाएगा।
4: तो मुझे लगता है सैयद दानिश आपने ये बात सुन ली होगी कि हो सकता है आपका दाने फट गया हो, उस पर पस हो, और तो आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए तुरंत। गाजियाबाद चाणक्य चौक से मनोहर लाल गांधी लिख रहे हैं, कह रहे अक्सर हम वाहन चलाते समय हेलमेट पहनते हैं और हेलमेट से कान पर दबाव पड़ता है और उतारने के बाद कानों में भारीपन या सुनपन लगता है, तो क्या ये हेलमेट पहनने से होता है या किसी और वजह से? एक बात और भी पूछना चाह रहे हैं, हेलमेट और कानों के बीच लोग मोबाइल लगाकर चलाते हैं या सुनते हैं, तो क्या इससे भी कानों पर कोई असर हो सकता है?
5: जी, कानों से तो क्वेश्चनेबल है, होगा नहीं होगा, लेकिन जान को जरूर खतरा हो सकता है
4: जी, बिल्कुल।
5: तो ड्राइव करते हुए प्लीज मोबाइल फोन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट हो। आपको अगर सच में ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो बाइक साइड पे रोकिए, उसके बाद आप फोन को लगा के सुनिए।
4: तो मुझे लगता है गांधी साहब को इसका जवाब मिल गया होगा और ये सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें हम बता दें, याद दिला दें कि ड्राइविंग करते समय आपको कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो केवल आपकी जान माल के लिए ही नहीं और जो आपके साथ साथ सड़क पर और दूसरे वाहन चल रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और भी सवाल लें, सवाल मुझ तक भी बहुत बहुत देर से मेरे मन में घूम रहा है. बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से क्या मतलब लोगों को आज बहुत लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सी बीमारियां हैं, क्या उनकी वजह से भी कोई ऐसी बीमारी भी है जिसकी

0: जैसे सुनने की क्षमता में कमी आती है या लोगों को परेशानी हो सकती है?
1: जी, कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो कान को डायरेक्टली कान से नहीं है बट बॉडी में होती हैं, जैसे शुगर।
0: जी
1: अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है काफी टाइम तक तो वो हमारी एजिंग बढ़ा देती है। जो चेंजेस मान लीजिए हम कहते हैं 50 साल पे होंगे, हो सकता है जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है वो 30 से 40 साल पे भी हो सकते हैं। पहला ये है। दूसरा ये, अगर हम सफाई का ख्याल ना रखें,
0: ओके
1: जैसे आसपास मान लीजिए ओवर क्राउडिंग है, फ्रेश एयर नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो वहां देखा गया है कि ऐसे जगहों पे बच्चों को कान की बीमारियां काफी होती हैं, जैसे कि कान बहना है, बार
0: जी
1: बार
0: जी
1: खांसी जुकाम होना है। इसके अलावा अगर हम साफ सफाई का ख्याल ना रखें तो उसकी वजह से भी कान में दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए सर के अंदर डेंड्रफ है तो कान के अंदर भी वो फिर इचिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद बाकी प्रॉब्लम है। खान पान अगर हमारा ठीक नहीं है, जैसे पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं एक जो रिक्वायर अमाउंट है, तब भी कान के इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांस है। इसके अलावा लाइफस्टाइल, जैसे हमने पहले बात की, शोर शराबा किसी भी
0: जी
1: फॉर्म में, चाहे वो रिक्रिएशनल है कि म्यूजिक सुन रहे हैं या हमारे वर्क से रिलेटेड है, जैसे ईयरफोन पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, या जो हमारा वर्क प्लेस पे शोर है, तो उसकी वजह से असर आ सकते हैं।
0: सर, एक चीज और है, गर्मियों में जनरली लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग
1: जी
0: करने जाते हैं, वहां पर हर तरह के लोग एक साथ एक ही पूल में स्विमिंग करते हैं, अक्सर वहां से बच्चों को या एडल्ट्स को भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
1: जी पहला तो ये है कि अगर आप हेल्दी हैं तो
0: जी
1: पूल में जाएंगे तो खास उस
0: असर
1: पे
0: नहीं होगा।
1: असर होगा नहीं।
0: जी
1: जो कान में प्रॉब्लम होने के जो कॉमन कारण है ये है, जब आप पूल से बाहर आते हैं और कान बंद बंद लगता है तो आप कान को अंदर से साफ करने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से कान में डैमेज हो जाता है और फिर इन्फेक्शन आता है।
0: जी
1: कुछ लोगों में जैसे कि अगर डायबिटीज है अनकंट्रोल्ड, अगर वो जाते हैं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है।
0: जी
1: या आप कान को स्क्रैच कर रहे हैं उसके बाद जो मान लीजिए मैच स्टिक है या हेयर पिन है तो उस पे अगर फंगस है तो वो कान तक पहुंच सकता है।
0: पहुंच सकता है।
1: तो जब भी स्विमिंग पूल में आए, बाहर निकले, तो आप कान को एक तरफ करके और सूखे कपड़े को कान के टच में रखेंगे तो अपने आप पानी बाहर आ जाएगा। उससे ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं होती है। उसको स्क्रैच ना करें, बहुत ज्यादा सुखाने की कोशिश ना करें।
0: ना करें।
1: और कई बार होता है अगर आप स्विमिंग जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लें, कई बार कान में थोड़ा वैक्स होता है और पानी उस वैक्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर वो अपने आप बाहर नहीं आता,
0: ओके।
1: तो फिर हम स्क्रैच करते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है।
0: सर, जैसे आपने अभी बताया कि जिनको डायबिटीज होती है और उनको सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी
1: जी
0: हियरिंग पावर कम हो सकती है, लेकिन मान लीजिए कि बीमारी कंट्रोल में आ गई है
1: जी
0: और उनकी जो हियरिंग पावर है वो कम हो चुकी है, तो क्या वो भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, या उसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा?
1: अगर आपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है तो आपकी हियरिंग इफेक्ट नहीं होगी।
0: ओके।
1: वो इसका इम्पोर्टेंस है कि आप शुगर कंट्रोल में रखिए। अगर उस वक्त तक डैमेज हो गया है तो हम उसको जरूर हेल्प कर सकते हैं, ये देख के कि किस वजह से है सुनाई में कमी, कि मान लीजिए कान में इन्फेक्शन है, जरूर उसको ट्रीट किया जा सकता है। कान की नस में कमी है तो हम उसको हेयरिंग एड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी सर, हेयरिंग एड से ही जुड़ा हुआ एक सवाल हम तक पहुंचा है, लिखने वाले हैं सौरभ दिल्ली से, कह रहे हैं मेरे ब्रदर जो लगभग 80s में है, अर्ली 80s में है, और हेयरिंग एड लगाते हैं जिसका प्राइस जो है अलग अलग तरह की आती है, मतलब 15,000 से 15 लाख तक इन्होंने मुझे बताया है यहाँ पर, तो हमें किस तरह की एड हियरिंग एड खरीदनी चाहिए और कौन सी अच्छी रहती है, प्लीज एडवाइस।
1: जी ब्रांड बताना यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन मैं एक ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो दो तरह की हियरिंग एड होती है, एक एनालॉग होती है, दूसरी डिजिटल होती है। तो डिजिटल ने थोड़ा सा महंगी होगी, लेकिन उसमें फायदा ये होता है कि उसको हम लोग मरीज के अकॉर्डिंगली उसको ट्यून्ड किया जा सकता है कि मरीज को क्या चाहिए। जहां तक पैसे की बात उन्होंने की है कि भाई 15,000 से लेकर 15 लाख तक है, तो उसमें प्राइस पहले ना देखें, पहले देखें कि मरीज को किससे फायदा हो रहा है, सबसे कंफर्टेबल फिट क्या है, उसके बाद अपने बजट में वो आप उसको खरीद लें। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी हियरिंग एड लेंगे तो बहुत अच्छी होगी, सस्ती लेंगे खराब होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो पेशेंट है उसकी हियरिंग पावर कितनी है और उसको कितनी हेल्प चाहिए उस पर डिपेंड करता है। डिजिटल हियरिंग एड लें जो कंफर्टेबल हो, क्लैरिटी मैक्सिमम हो, तो वो आप परचेज करें।
0: सर, एक और मैसेज आया है, प्रदीप सेठी लिख रहे हैं, ये अजमेर से, इनकी उम्र 66 साल है और स्पीच ऑडियोमीटर ऑडियोमेट्री टेस्ट इन्होंने कराया है, आई थिंक चूंकि बहुत इन्होंने कट एंड शॉर्ट में लिखा है, आप आई थिंक समझ जाएंगे, स्पीच ऑडियोमेट्री टेस्ट PTA राइट एंड लेफ्ट ईयर इज 25 dB,
1: ठीक है,
0: दिस इज गुड और नॉट।
1: कितना कितना एज बताया ना?
0: 66
1: में 25 dB इज एक्सलेंट।
0: ओके,
1: बहुत अच्छी है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वही कंटिन्यू करें।
0: सर जैसे इन्होंने बताया कि 66

0: की उम्र के हैं और इन्होंने ये टेस्ट कराया,
1: जी
0: तो आप कौन सी एज में ये टेस्ट रेकमेंड करते हैं जनरली एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए?
1: देखिए, स्वस्थ व्यक्ति मेरा मानना है कि जब वो अपने जनरल चेकअप के लिए जा रहे हैं और इन्हें लगता है हियरिंग इफेक्ट हो रही है, तो जरूर चेकअप करा लें। आप उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आप ENT के डॉक्टर को भी मिलना चाहते हैं और हियरिंग टेस्ट कर लें। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल टेस्ट है और हार्डली 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। तो इसके अलावा एज ए रूटीन चेकअप, कोई भी व्यक्ति जो 50-55 साल से ऊपर का है, वो एज के साथ हियरिंग कम होती है। अगर लोग कह रहे हैं कि आप जाके वॉल्यूम बढ़ा रहे हो टीवी का, या आप बार बार पूछते हो क्या बोला, तो वो टाइम है हियरिंग चेकअप करने का।
0: मीन्स कुल मिला के जो लक्षण है वो यही कि यदि आपको दूसरे की बात को थोड़ा सा दबाव लगाकर सुनना पड़ रहा है, जोर लगाकर सुनना पड़ रहा है, या आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यदि सर जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, चूंकि बहुत सारी बातें हुई लेकिन उन छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें इन सिम्टम्स को कैसे पहचान सकते हैं?
1: जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जो माँ है
0: जी,
1: या घर पे जो दादा दादी हैं, वो बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे जो बच्चा जस्ट बॉर्न हुआ है, तो कभी भी आप देखिए जब तेज आवाज आती है, जैसे बर्तन कोई घर में गिर गया, तो वो एकदम थोड़ा सा कहना चाहिए स्टार्टल रिफ्लेक्स होगा, थोड़ा सा वो चौंक जाएगा।
0: जी, जी, जी।
1: इसका मतलब वो सुन रहा है। जैसे बच्चा 3 महीने का होता है तो स्माइल करने लगता है, अगर आप उसके नाम से बुलाओगे या उसकी माँ बुलाएगी तो स्माइल करेगा,
0: रिएक्ट करता है बेसिकली।
1: जी, 5-6 महीने होने के बाद वो हेड कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है, तो वो आवाज की डायरेक्शन में अपना मुंह घुमाएगा और कोशिश करेगा कहाँ से आवाज आ रही है, लोकलाइज करने का। और इसके बाद जो बच्चा करीब 8-9 महीने का होता है, तो फिर वो कुछ कुछ वर्ड बोलेगा, जैसे बाबा, दादा, माँ, इस टाइप के। और करीब 10-12 महीने का हो जाएगा तो वो 2-3 वर्ड का पानी, खाना, बिस्किट, वो कुछ कुछ चीजें मांगना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम उसको ये देख लें कि अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमें चेकअप कराने की जरूरत है। और अगर हल्का भी डाउट है तो उसके लिए वेट ना करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देख लेंगे। आप फौरन जाके जांच कराइए। अगर हियरिंग नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नॉर्मल है तो हम उसको जितना जल्दी पकड़ेंगे ना सुनने का, उतना अच्छे से इलाज हो पाएगा और उतना बेहतर उसका आउटकम होगा।
0: और सर की इन सारी डॉक्टर साहब की बातों से मुझे एक फिल्म याद आ रही है, संजीव कुमार और जया भादुड़ी की एक फिल्म थी कोशिश, जिसमें वो दोनों ही मूक बधिर होते हैं और वो जब उनका बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है तो वहां उन्हें यही टेंशन हो जाती है कि कहीं ये भी हमारी तरह बधिर तो नहीं है। और वहीं से हम भी समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानी बधिर व्यक्ति महसूस कर सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इस परेशानी को पहचानिए और अपने ENT स्पेशलिस्ट के साथ जुड़िए। और हमारे साथ लगातार हमारे व्हाट्सएप पर हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं। एक सवाल आया है सर, उम्र है इनकी 32 साल और नाम है बालचंद्रा मेरठ कैंटीन से, कह रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी जुकाम आ जाता है। बिकॉज आप ENT स्पेशलिस्ट है, कान की बात हो रही है और जुकाम के साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है इन्हें होंगी, तो आप इन्हें प्लीज उपचार बता सकें।
1: जी, अगर बार बार जुकाम हो रहा है तो उसके जो कारण मुझे समझ आता है वो ये हो सकता है कि इनको एलर्जी हो नाक की। इसके अलावा भी बाकी सुनने वालों के लिए भी हम ये बता सकते हैं, जब बार बार नाक में इन्फेक्शन हो रहा है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे कान पे असर आ सकता है। और सबसे पहले पता लगता है कान से कम सुनाई देना, कान ब्लॉकेज होना, तो एक तो उसका इलाज कर लें कि क्यों जुकाम हो रहा है। अगर एलर्जी है तो उसकी दवाई देंगे डॉक्टर, वो ठीक होगा तो कान भी ठीक हो जाएगा। अगर जुकाम के साथ साथ कान में दर्द स्टार्ट हो गया तो डॉक्टर को मिलना है, क्योंकि कई बार जुकाम कान तक पहुंचता है, तो अगर हम उसको नेगलेक्ट करेंगे तो कान के पर्दे में सुराख होकर पस बाहर आने लगेगा, तो उसका इलाज करने में ज्यादा मेहनत लगेगी, पेशेंट को ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, बल्कि जब कान बंद हुआ है, कान में दर्द स्टार्ट हुआ है, उसका इलाज करने में।
0: अच्छा सर, जैसे ये तो इन्होंने बताया कि कोल्ड हो जाता है और आपने बताया कि इन्फेक्शन हो जाएगा या लंबे समय तक यदि ये परेशानी रहेगी तो श्रवण संबंधी परेशानी आ सकती है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या जैसे पीछे हमने कुछ समय से कोविड बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगे हैं, वायरल इन्फेक्शन, तो क्या उनका असर भी श्रवण संबंधी परेशानी से जुड़ता है या कोई ऐसा है
1: जी,
0: कि उन्हें भी सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम होती है?
1: जी, जितने भी वायरसेस हैं जो हमारा नाक के थ्रू या गले के थ्रू जाते हैं, वो एक कॉमन कोल्ड की तरह से ज्यादा पता लगता है कि जुकाम हो गया
0: जी।
1: और ज्यादातर केस में कान पर असर नहीं होता है। कुछ केसेस में कुछ वायरसेस हैं जैसे मम्प्स जो होते हैं, जिनको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कनफेड़े होना, या मीजल्स है, या इवन कोरोना जब आया था तो कुछ परसेंट में बहुत कम होता है कि सुनाई की शक्ति पे असर आ गया। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास फौरन जाएं, वो कुछ दवाई देंगे, उससे जो सुनने की शक्ति वापस आ जाएगी। अगर आपने वेट किया ज्यादा तो

0: वो उसमें हो सकता है कि वापस ना आए।
1: सर एक सवाल हम तक पहुंचा है, नोएडा से लिख रहे हैं आलोका, कहना चाहती हैं कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग स्विमिंग फॉर इयर्स।
0: जी, स्विमिंग के लिए हमने पहले बात की थी, कान को साफ करने की कोशिश नहीं करना स्विमिंग के बाद के, कान में पानी भरा है उसमें साफ करना है। प्रॉब्लम स्विमिंग से कम होती है, कान को साफ करने से ज्यादा है,
1: ज्यादा होती है जी।
0: और दूसरा ऐसे मैंने पहले बताया, अगर ऐसा लगता है कि कान बंद बंद हो रहा है बार बार, तो एक बार डॉक्टर को दिखा लें, हो सकता है कान में वैक्स हो, वो निकाल देंगे तो वो जो हल्की फुल्की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।
1: जी सर, लेकिन ये स्विमिंग पे जाने से पहले कुछ कानों में लगा सकते हैं, क्योंकि जो स्विमिंग वाले देते हैं या हम लोग स्विमिंग ईयरबड्स यूज करते हैं, उनके बावजूद भी पानी चला जाता है
0: जी,
1: तो क्या कोई और ऐसी चीज है जो लगाई जा सकती है कान में?
0: ईयर प्लग मिलते हैं
1: जी,
0: अगर आप स्पोर्ट्स शॉप पे जाएंगे तो कंप्रेसेबल, उसको कंप्रेस करके कान में लगाया जा सकता है।
1: ओके,
0: बट आमतौर से अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, तो कोई खास कुछ करने की जरूरत है नहीं कान के लिए।
1: जी सर, इसी तरह से एक और मैसेज आया है, लिखने वाले हैं सागर, 23 इयर्स ओल्ड है और लिख रहे हैं विजयपुरा कर्नाटका से। उन्होंने कहा है कि एक हेल्दी कान के लिए, हेल्दी कानों के लिए और दूसरी पूरी जिंदगी में बड़ी उम्र तक कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम अपने कानों को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकें।
0: बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर हम बचपन से देखें तो जब आपका माँ के गर्भ में है
1: जी,
0: तो मदर को वैक्सीन लगना, फिर बच्चे का जो बर्थ है वो मेडिकल कंट्रोल में हो जैसे हॉस्पिटल में या आंगनवाड़ी में, उसके बाद उसके वैक्सीन लगना, फिर जब जो छोटे बच्चे हैं जो हमने नॉइज की बात की उससे बचाना है कान को, खांसी जुकाम बार बार ना हो उसके लिए पौष्टिक आहार लेना है, खुले और हवादार जगह पे रहें, उससे फायदा होगा। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कान पे चोट लगे, जैसे कई बार उसको किसी ने थप्पड़ लगा दिया बच्चे को, कान पे लग गया, कान का पर्दा फट गया, वो आपको नहीं करना है। और अगर आपको कभी भी लगता है कि सुनने में दिक्कत है तो उसकी जांच करा लें। जांच हम छोटे से छोटे बच्चे को न्यू बॉर्न में भी टेस्ट किया सकता है कि बच्चा ठीक से सुन रहा है सुन रहा, और जब 5 साल से ऊपर बच्चे को तो हियरिंग टेस्ट हम नॉर्मल करते हैं, उससे पता चल जाता है।
1: सर क्या प्राणायाम, मेडिटेशन या योग से भी सुनने की क्षमता का इलाज किया जा सकता है?
0: जी, इसको
1: या
0: मैं
1: कुछ फायदा होता है इन
0: कि,
1: सब
0: हाँ, जो डैमेज हो गया उसमें तो शायद फायदा ना हो, लेकिन जो हेल्दी बॉडी है उसी में हेल्थ होगा
1: जी।
0: तो अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, तो आपका जरूर हियरिंग पे भी नुकसान कम से कम होगा। तो आपकी जो भी आपको भगवान ने दिया है, चाहे वो देखने की क्षमता है, सुनने की है, स्मेल की है, तो आपको लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करनी है, तो उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बड़े हों तो शोर शराबे से दूर रहें, अगर काम की जगह पे शोर है उससे बचाव रखें, और थोड़े बड़े हो गए हैं तो कान की नस, जैसे हमारी बॉडी वीक होती है कान की नस भी वीक होती है
1: जी।
0: तो उसके लिए फौरन अपना इलाज कराएं, उसके लिए आजकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग हियरिंग एड या कई बार कॉकलियर इम्प्लांट भी कुछ लोगों में होता है जिसमें हियरिंग एड से फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज के जो वैज्ञानिक जो टाइम है इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जरूरत है कि हम उसको अवेल करें, वहां जाएं, उसकी जांच कराएं, और जो जरूरी होगा उस चीज को हम अपनाएं इलाज।
1: सर एक मैसेज आया है, इन्होंने नाम कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि वर्टिगो ट्रीटमेंट क्या होता है?
0: वर्टिगो जो कान के अंदर जो दो हिस्से हैं कान के अंदर वाले भाग के, एक जैसे हम सुनते हैं और दूसरा कान को बैलेंस से, जो कान की वजह से वर्टिगो होता है उसके साथ उल्टी आती है और उल्टी आने का मन करता है और साथ में चक्कर आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके कान का सुनने वाला हिस्सा प्लस बैलेंस वाला हिस्सा दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, तो एक बार हॉस्पिटल में जाके जांच करा लें इसका कारण क्या है, वो कारण के हिसाब से इलाज किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेड पे ना लेटे रहें
1: जी।
0: आप अपने आप को एक्टिव रखें, एक्टिविटी मेंटेन रखें, और आसपास जो एरिया है वो क्लटर फ्री रखें। ऐसे ना हो कि रात में उठें, मान लीजिए वॉशरूम जाना है और रास्ते में कुछ चीजें पड़ी हैं, पैर अटक जाएगा तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। लेकिन आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जिससे कान का जो बैलेंस है वो वापस आएगा, और साथ में दवाइयां देते हैं जो कि इनिशियल फेज में हफ्ते दो हफ्ते तक देते हैं जिससे चक्कर ठीक हो जाते हैं।
1: सर क्या जो कान का इन्फेक्शन होता है उसका और हमारे लाइफस्टाइल का, साथ में जो टॉल्स या चादरें या टॉवल तकिए पिलोज हम यूज करते हैं, उनका भी आपस में कोई कनेक्शन है यदि किसी को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है?
0: आमतौर से एक से दूसरे तक बीमारी नहीं फैलती है, लेकिन ये हम कह सकते हैं, पहले हमने बात की जहां पे पर्सनल हाइजीन पुअर है, तो ऐसे लोगों में खांसी जुकाम ज्यादा होता है और खांसी जुकाम की वजह से कान की बीमारियां ज्यादा

0: जी हाँ, जिंदगी सवारने के लिए, सुनने को सवारने के लिए सुनना जरूरी है रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, तो चलते चलते हमारे लिसनर्स को क्या टिप्स और देखभाल आप बताना चाहेंगे?
1: जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, उसमें आपका इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत हाई रखना है। अब थोड़ा भी डाउट है सुनने में तो उसकी जांच कराएं और उसका इलाज कराएं। इसके अलावा जो हमारे यंग लोग हैं वो शोर शराबे से दूर रहें, ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर बहुत जरूरत है कि आपको फोन पे ही काम करना है, कंप्यूटर का काम करना है, तो स्पीकर फोन पे लगा लें। इसके अलावा जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसा ना सोचे कि हमें अगर हियरिंग एड लगाएंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग अगर आंखें कमजोर है तो हम लोग चश्मा लगाते हैं, तो हियरिंग एड लगाएं, जरूर फायदा होगा।
2: जी धन्यवाद।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी आप

के लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। शाम के बजे हैं 4, टीजे सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में झड़खाली की कुछ महिलाओं द्वारा मैंग्रोव वन लगाए जाने की चर्चा की। इनमें से अधिकांश वे महिलाएं हैं जिन्होंने बाघों के हमले में अपने पति को खो दिए थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिवसीय केरलम दौरे पर हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। 2 दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने 70 होटलों, रेस्तरां और खाने पीने से जुड़े अन्य स्थानों का औचक निरीक्षण करने के बाद 25 को स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन के कारण बंद कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए सभी युद्धग्रस्त देशों से तनाव कम करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्कमेनिस्तान सरकार और विदेश मंत्री राशिद मोरेदोव को स्वाधीनता की 35वीं वर्षगांठ पर बधाई दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक कई लोगों की मौत। उत्तराखंड में तेज बारिश और बिजली गिरने को लेकर रेड अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गृह मंत्री अमित शाह और संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। एशियाई खेलों में आज भारत के मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव को 5-0 से हराकर देश के लिए मुक्केबाजी में पहला पदक पक्का कर लिया है। और एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले कार्यक्रम रेनबो जीनियस की।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर और मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। दिमाग की घंटियां बजाने, याददाश्त को थोड़ा खंगालने और अपने ज्ञान का दम दिखाने का समय आ गया है, क्योंकि शुरू हो गया है हमारा खास क्विज शो रेनबो जीनियस। यहां बजती है सवालों की घंटी और खुलता है ज्ञान का पिटारा। हमारे लिसनर्स हमें कॉल करेंगे और उनसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज पर बेस्ड पांच सवाल। अगर आपने पांचों सवालों का सही जवाब दिया तो बस आप समझिए कि आज की इस रंगीन महफिल में आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और अपने ज्ञान की चमक से इस स्टूडियो को रोशन कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला रेनबो जीनियस आप ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम रेनबो जीनियस।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. माता पिता और बच्चों का रिश्ता जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बन सकता है। पॉजिटिव सकारात्मक पेरेंटिंग तकनीक बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य और नीति नियम के साथ उनका विकास हो सकता है, इस तरह से काम करती है और हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और ये जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में ये वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह अगर माता पिता सिखाते हैं कि कैसे एक मालिक की तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने और उसे पोषण देने में सक्षम बने तो उनका गार्डन सुगंधित हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग की ओर निर्देश करते हैं। जब माता पिता प्रभावी पेरेंटिंग का कौशल विकसित करते हैं तो वे पीढ़ी अंतराल यानी जेनरेशन गैप को मिटाने के सक्षम होते हैं। जब पेरेंट्स इस बात को समझने लगते हैं किन चीजों में मर्यादा रखी जाए, कहां प्रोत्साहित किया जाए और कहां अंकुश रखा जाए, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बाल्य और किशोर अवस्था के दोनों वर्गों अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। इस हेतु से शुद्ध प्रेम और समता के साथ उनका कैसे विकास किया जाए, ये मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नैतिक मूल्यों, अच्छे शिष्टाचार और पॉजिटिव पेरेंटिंग संबंधित उन्होंने उत्कृष्ट समाधान दिए हैं जो युवावस्था के दौरान भी काम आते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए आज के समय अनुसार गाइडेंस, अपने बच्चों की संभाल कैसे करें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी रिलेशनशिप से बनेंगे बच्चों का हेल्थ। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए इसीलिए सबसे अच्छा स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल से ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी सीखेंगे। तो हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानो तो बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण उसे

अच्छे स्कूल में भेजने से ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर सभी स्कूल एक जैसे होते हैं और अपने हर छात्र पर बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता उनका होमवर्क करने में मदद करते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं और बच्चों के सभी स्कूल इवेंट्स अटेंड करते हैं, उनके बच्चे दूसरों बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा और जरूरी बंधन है। यह रिश्ता बच्चों की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार और पसंद की नींव डालती है। यही से उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास होता है। जीवन में दूसरे लोगों से भी अपना रिश्ता अच्छा बनता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू रखना, बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और भाषा का विकास होना, बच्चे का आशावादी और आत्मविश्वास से पूर्ण होना, बेहतर सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस रहना। आप चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़े, तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदल दें। बच्चे की उम्र कुछ भी हो, उससे हमेशा प्यार से बात करें और गर्मजोशी दिखाएं। उनको बातों बातों में प्यार से ये समझाएं कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं। बच्चा जो कुछ भी कहे, उसे ध्यान से सुने और उसके प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी दिखाए। कोई भी समस्या हो, उसे हल करने में उसकी मदद करें। जब आप अपने बच्चों के साथ कोई भी समस्या को हल करेंगे, तो वह आपको देखकर सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल हालात में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उसके करीब आ सकते हैं और उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे जरूरी है और अच्छा बंधन होता है। यह रिश्ता बच्चों के व्यवहार का पसंद और बच्चों की पर्सनालिटी पर असर डालता है। यही से बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हो तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और भाषा का विकास होना, बच्चों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना और आशावादी होना, मुश्किल वक्त में और परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, बेहतर एकेडमिक और सोशल स्किल्स होना। तो दोस्तों, यह थी बेस्ट पेरेंटिंग के कुछ असर अपने बच्चों पर। होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल दोस पेरेंट्स। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज प्रोग्राम ऑफ लम्हे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आरजे चेतन से। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग लिसनर्स, तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपकी नॉलेज का होगा रियलिटी चेक। कुछ सवाल होंगे आसान और कुछ शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका जवाब देते हुए आप कहें अरे यार ये तो मुझे पता था बस अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन असली मजा तब आता है जब आप सिर्फ जवाब जो है वो जानते ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ उनके आंसर्स शेयर भी करते हैं। क्योंकि रेनबो जीनियस में हमारे साथ जुड़ते हैं आप और हमारे लिसनर्स, और हम पूछते हैं आपसे ज्यादा से ज्यादा 5 सवाल। जनरल नॉलेज हो या करंट अफेयर्स हो, बस ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं हमारे पास। और अगर आपने दिए उन 5 सवालों के सही जवाब तो फिर आप सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि आपके नाम के साथ जुड़ता है एक खास टैग, रेनबो जीनियस। तो दिमाग को कर लीजिए ऑन, कॉन्फिडेंस को रखिए फुल चार्ज और तैयार हो जाइए ये साबित करने के लिए कि ज्ञान की इस रंगीन दुनिया में जीनियस कौन है। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी टेलीफोन लाइंस पर जो कि है 2342-1084 और 2342-1080। दिल्ली के बाहर के श्रोता हमें कॉल करें तो 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।

0: और अब जो है हमारे साथ हमारे पहले लिसनर जुड़ चुके हैं, देखते हैं कि वो बनते हैं हमारे रेनबो जीनियस या नहीं। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका रेनबो जीनियस में। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं उमेश बात कर रहा हूँ हरियाणा से।
0: जी उमेश जी, आप पहले भी खेल चुके हैं रेनबो जीनियस प्रोग्राम।
1: जी जी, जी।
0: बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आपका भी। और चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा होता है।
1: जी, ये बाहरी अंग त्वचा जो स्किन होती है वो सबसे बड़ा अंग होता है।
0: बिल्कुल, बहुत खूब आपने बताया। और आप हमें ये बताइए कि खून का रंग जो है वो लाल क्यों होता है।
1: ये आयरन के कारण, जो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है।
0: बिल्कुल सही। और तीसरा सवाल है हमारा कि बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट जो होता है वो नॉर्मली किस धातु का बना हुआ होता है।
1: ये टंगस्टन का होता है, W से नोट करते हैं इसको।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं और लगता है कि आप पहले ही कॉलर के रूप में अभी पहले रेनबो जीनियस मिलने वाले हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न आपसे पूछते हैं कि विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है।
1: ऑस्ट्रेलिया।
0: बिल्कुल, क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। और अब ये आखिरी सवाल, अगर इसका आपने जवाब दे दिया तो आप बन जाएंगे हमारे रेनबो जीनियस। तो सबसे अब आप हमें ये बताइए कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा है उसके लिए प्रसिद्ध स्थानों में से कौन सा स्थान है, उसे क्या कहते हैं उस जगह को।
1: मौसिन ग्राम या चेरापुंजी के नाम से जानते हैं, मेघालय में ये।
0: जी बहुत खूब,
1: धन्यवाद।
0: और इसी के साथ हमें हमारे पहले ही कॉलर के रूप में हमें मिल चुके हैं हमारे रेनबो जीनियस उमेश जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको।
1: जी धन्यवाद
0: जी। और कैसा लग रहा है आपको, कितनी बार आप ये खिताब जीत चुके हैं, अपने नाम कर चुके हैं।
1: 2026 की काउंटिंग में 22वीं बार आज बना।
0: क्या बात है, यानी कि आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं और मानना पड़ेगा कि आपकी जो जनरल नॉलेज है ना वाकई बहुत अच्छी है। और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें उम्मीद है कि आप आगे भी जो है इस तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे और रेनबो। तो दोस्तों ये तो थे हमारे पहले ही कॉलर के रूप में मिले हमें हमारे पहले रेनबो जीनियस। तो चलिए देखते हैं हमारे दूसरे कॉलर कौन है। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए।
2: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: जी बताइए, आप पहली बार कॉल कर रहे हैं हमें या पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
2: हाँ पहले भी जुड़ चुके हैं, पहले भी जीनियस बन चुके हैं।
0: अरे क्या बात है, तो देखते हैं कि आज आप जीनियस बन सकते हैं या नहीं। तो आप हमें ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है वो कौन सा है।
2: राजस्थान।
0: कौन सा।
2: राजस्थान।
0: नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान मैंने आपसे पूछा और वो है सहारा रेगिस्तान, क्योंकि ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जबकि अंटार्कटिका का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो ठंडा रेगिस्तान है, लेकिन गर्म रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार फिर आप हमसे जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप रेनबो जीनियस बन जाएं। श्रोताओं, हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी के फोन कॉल्स का, और आप चाहें तो हमें फोन करके बन सकते हैं हमारे आज के रेनबो जीनियस और शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2342108 और 2342108011 दिल्ली का एसटीडी कोड है, जिसे लगाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर हम स्टूडियो में कर रहे हैं इंतजार, पहला हमें रेनबो जीनियस मिल चुका है और देखते हैं और कितने मिल सकते हैं आज के प्रोग्राम में।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: जैसे जैसे शाम ढल रही है एशियन गेम्स से भारत के लिए कई अच्छी खबरें आ रही है। उन खबरों को बताने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं हम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी, मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। तो चलिए इस घंटे के अपडेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं भारत की झोली में जो पदक आया है। जी हाँ, एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स से भारत के लिए एक और पदक पक्का हो गया है। महिला 100 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत की हरिता भद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23.20 सेकंड का समय निकालते हुए तीसरा स्थान पर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। हरिता ने पूरे फाइनल में दमदार चुनौती पेश की और पोडियम पर जगह बनाकर भारत की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की दूसरी धाविका उन्नति बोलन भी फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन छठे स्थान पर रहते हुए उन्होंने अपना जो अभियान था वो समाप्त किया। इस तरह महिला 100 मीटर में भारत के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया और एथलेटिक्स में देश की पदक की संख्या में इजाफा हुआ। जिस तरह से हरिता भद्रा ने दिल्ली में इंडिया ओपन भी प्रदर्शन किया था और यहीं पर उन्होंने अपनी बातचीत में आकाशवाणी से बताया था, मैं 23 से ऊपर अगर एशियन गेम्स में करूंगी तो यकीनन पोडियम फिनिश करूंगी, और ऐसा ही उन्होंने कर दिखाया।
3: And what a moment for India! What a moment for India! Another medal coming in athletics, and this is turning into a day where the Indian contingent is really showing its strength across disciplines. We have already seen the silver medals in squash from Abhay Singh and Anahat Singh, and now Harita adds a bronze in the women's 200 meters. The medals are coming, the performances are coming, and importantly, the momentum is building. And speaking of powerful performances, the medal hopes are right up there in athletics as well, because we are watching live the women's long jump final right now, and India has two strong contenders in the field. Ansi Sojan dominating it right now, currently sitting at the top of the standings with the best jump of 6.49 meters. Her first attempt was 6.49, the second one invalid, the third again came at 6.46, and despite that, Ansi remains at the top. And other contender Shali Singh is currently in fourth position with 6.34 meters. Her first attempt was 6.25. She improved to 6.34 on her second and has matched that distance again with her third attempt. So there is plenty to watch, plenty to cheer for, and plenty still to come.
2: एशियन गेम्स में लगातार उठा पटक का दौर जारी है। डेकाथलॉन की बात करेंगे, पुरुषों की स्पर्धा में जेवलिन थ्रो में भारत के तेजस्विन शंकर ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। तेजस्विन ने अपने 3 प्रयासों में, जो पहला प्रयास था उनका 46.29, दूसरा प्रयास था 53.37 जो सबसे बेस्ट उनका प्रयास था, इसके बाद हालांकि तीसरे प्रयास में उन्होंने 51.81 मीटर का थ्रो किया, लेकिन उनका जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वो 53.37 मीटर रहा है। जेवलिन थ्रो के बाद डेकाथलॉन में तेजस्विन शंकर की चुनौती बताएं तो अंतिम इवेंट 1500 मीटर दौड़ जो वो अभी खेली जा रही है, वहां डेकाथलॉन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आकलन के सभी 10 स्पर्धाओं में जो हासिल किए अंकों के आधार पर किया जाता है, वहां फैसला होगा कौन पोडियम पर पहले स्थान पर रहता, कौन दूसरे, कौन तीसरे। हालांकि अभी तेजस्विन शंकर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।
3: And while we continue to follow the result coming in from athletics, there is an update from the men's 200 meters final as well. Animesh Kudur finished fifth, clocking 20.80.

0: 0 seconds in the final and missing the podium. Now let's move on to another men's event happening live right now. That is the men's high jump final with Sarvesh Kushare and Jyoti Shankar representing India. Jyoti Shankar has cleared 2 meters and is currently sitting in 6th position, while Sarvesh remains in contention as the competition continues. Another medal opportunity is very much in focus as the athletic action continues.
1: एक और मेडल इवेंट की बात करते हैं जहां भारत को होप है, भारत को उम्मीद है, यहां पर पदक जरूर आएगा, वो है हॉकी। और हॉकी में महिला हॉकी टीम जिस तरह से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रही है, उसी का एक आधार यहां भी दिखाई दे रहा है। सिंगापुर के खिलाफ भारतीय महिला टीम जिस तरह प्रदर्शन कर रही, 5-0 की एक भारी भरकम लीड ले चुकी। तीसरा जो क्वार्टर है वो जारी है। आपको ये भी बता दें, भारत ने जो 5 गोल स्कोर किए वो दूसरे क्वार्टर में गोल किए थे, दूसरे क्वार्टर में उन्होंने 5 गोल स्कोर किया। हालांकि तीसरा क्वार्टर जो है अभी जारी है, वहां पर कोई गोल नहीं हो सका, लेकिन जिस तरह से मजबूती से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, लगातार गोल कर रही है, यकीनी तौर पर माना जा रहा है यह भी एक टीम साबित होगी जो पदक के यानी पोडियम पर पहले दूसरे स्थान पर दिखाई दे सकती है।
0: एंड विद दीज अपडेट्स वी आर स्टिल वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, ब्रिंगिंग इन मोर एथलेटिक मैचेस एंड लाइव अपडेट्स टू यू आफ्टर एन आवर। एंड विद दिस, दिस इज विदुषी वत्स विद शाहिद आजमी। स्टे ट्यून्ड to Akashwani.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: बिल्कुल, आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपसे और पूछते हैं आपसे ज्यादा से ज्यादा 5 सवाल। देखते हैं कि अब कौन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ा हुआ है। हेलो।
6: हेलो,
3: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम रेनबो जीनियस में।
6: नमस्कार मैम
3: जी, अपना नाम बताएं।
6: मेरा नाम रश्मि है।
3: जी रश्मि, आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में जुड़ चुकी हैं या ये पहला अवसर है?
6: नहीं मैम, उससे पहले भी काफी बार।
3: तो चलिए, आप तैयार हैं पूरी तरह से?
6: जी मैम तैयार हूँ।
3: तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है?
6: दिल्ली में।
3: बिल्कुल सही। ओलंपिक खेल वर्ष में कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं?
6: ओलंपिक 5 सालों में। चार साल।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और अगर हम पूछें शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर
6: भारत में हुआ। ये भी भारत में हुआ।
3: बिल्कुल सही। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
6: वंदे मातरम।
3: बिल्कुल सही। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे 5वें सवाल पर। देखते हैं कि इस सवाल का जवाब देकर के आप हमारे रेनबो जीनियस बन पाते हैं या नहीं। तो आप हमें बताइए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है?
6: बेंगलुरु।
3: बिल्कुल सही। और इसी के साथ आप बन जाती हैं हमारी रेनबो जीनियस। तो श्रोता, रश्मि जी को भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं कि वो हमारी रेनबो जीनियस बनी और हमारे साथ जुड़ी। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ती रहेंगी और ये ताज अपने नाम करती रहेंगी।
6: जी बिल्कुल
3: जी। और अब देखते हैं कि हमारे साथ दूसरी टेलीफोन लाइन पर कौन है। हेलो।
7: हेलो,
3: नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
7: नमस्ते नमस्ते मैम, मेरा नाम है मनु मुकुल शर्मा और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं?
3: अरे हम बहुत ठीक हैं, आप बताइए। इतनी दूर से आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत खुशी हो रही है।
7: मेरे को भी बड़ी खुशी हो रही है। मेरा सेकंड टाइम कॉल लगा है और लास्ट टाइम मैं एक झटके में चला गया था, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं क्यों ना दोबारा ट्राई करूं।
3: बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी और को चैलेंज देने की बजाय या किसी और से अपनी प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद से प्रतियोगिता करें कि मुझे पहले से बेहतर करना है।
7: सही में मैम, बिल्कुल। और हम हमेशा जो है

0: अपना प्रोग्राम सुनते हैं और ऑलवेज लाइक गाड़ी चलाते हुए भी हमारा रेडियो यही चलता है इसके अंदर। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे ऐसे बहुत भारतीय हैं यहाँ पे विदेश में जो कि ऐसे अपने देश की जो गाने हैं और प्रोग्राम है उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं।
1: जी बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके मनु मुकुल शर्मा जी। तो चलिए, तैयार हैं आप आज रेनबो जीनियस बनने के लिए?
0: और हाँ जी मैम, और मैं बस एक बात कहना चाहूंगा उससे पहले कि मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो आप एक बार अगर मेरे शहर वालों के लिए कुछ कह देंगे थोड़ा सा, चाहे बाद में चाहे अभी, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।
1: जी बताएं बताएं।
0: हाँ, आप उनके लिए बस एक बधाई संदेश दे देंगे, अब दिवाली आ रही है तो आप उनको सबको अगर एडवांस में थोड़ी सी गुड विशेस दे देंगे तो
1: जी बिल्कुल
0: मेरे को अच्छा लगेगा।
1: जी बिल्कुल, और बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि आप अपने जो भी भाई बंधु हैं, अपने घर के आसपास वाले हैं, उनको आप अपने ही आवाज में, अपने ही अंदाज में उनको दिवाली की शुभकामनाएं दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से इन एडवांस में।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना रेनबो जीनियस का प्रोग्राम।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो चलिए सबसे पहले आप हमें बताइए कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है?
0: कौन सी टीम का मैम? सर
1: एटीएम मशीन जो होती है उसका पूरा नाम क्या होता है?
0: अच्छा, उसका एक्चुअली दो फुल फॉर्म होती है, एक तो होती है ऑल टाइम मनी और एक होता है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड।
1: जी बिल्कुल सही। और इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था?
0: ट्रिकी है थोड़ा सा। क्या सन बताना है मेरे को?
1: जी हाँ,
0: सन में हुआ था?
1: कब हुआ था? चलिए ठीक है, आप दशक ही बता दीजिए, कौन से मतलब कितने साल पहले हुआ था लगभग, ये भी बता सकते हैं?
0: आई थिंक 1992 के आसपास मुझे ऐसा लगता है।
1: नहीं, 1960 के, जी हाँ 1960 के दशक में जो है इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, आपने हमसे संपर्क किया, हमसे जुड़े और हमें बताया कि आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी हुई। और आप हमारे लिए, हमारे सारे लिसनर्स जो हैं हमारे लिए बहुत खास होते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ेंगे और रेनबो जीनियस बनने के लिए खुद को ही एक बार फिर से चैलेंज करेंगे।
0: एब्सोल्युटली मैम, व्हाई नॉट। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
1: थैंक यू। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं 2342108 और 2342108 4, ये हमारी टेलीफोन लाइन से जो आप सभी के लिए खुल चुकी हैं, और आप हमें कॉल करके हमारे आज के रेनबो जीनियस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। देखते हैं हमारे पास अगली कॉल किसकी आई है। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कौन बोल रहे हैं?
2: जी मेरा नाम आकाश है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
1: जी आकाश, बताएं, आप पहले भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ?
2: हाँ जी मैम, मैं पहले भी जुड़ चुका हूँ।
1: जी तो आज आप पूरी तरह से तैयार हैं?
2: जी मैम।
1: देखते हैं कि आज आप हमारे अगले रेनबो जीनियस बनते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बताइए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है?
2: हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल सही। और संविधान के संरक्षण कौन है?
2: संविधान के संरक्षण वैसे न्यायपालिका को माना जाता है, जो भारत की सर्वोच्च न्याय।
1: जी बिल्कुल सही। और लोकसभा का कार्यकाल भारत में सामान्यतः कितने वर्ष का होता है?
2: लोकसभा का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है।
1: और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?
2: भारत का राष्ट्रीय फल आम है।
1: बिल्कुल। और अब आप एक सवाल दूर हैं, एक सवाल का जवाब दिया आपने और आप बन जाएंगे हमारे आज के दूसरे रेनबो जीनियस। तो चलिए बताइए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
2: इंदिरा गांधी जी थी, और भारत रत्न पाने वाली भी पहली महिला वही थी।
1: बहुत खूब।
2: हाँ जी।
1: और इसी के साथ हमें मिल गए हमारे दूसरे रेनबो जीनियस, बहुत बहुत बधाई हो आपको आकाश जी।
2: जी मैम धन्यवाद
1: जी। और कैसा लग रहा है आपको, पहले भी आपने ये ताज अपने नाम किया है या ये पहला ही अवसर है?
2: नहीं मैम, बहुत बार कॉल किया है, इतना तो हमें पता भी नहीं है।
1: जी बहुत बहुत बहुत अच्छा, और ऐसे ही ये कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि इस बहाने जो है हमारे ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, हम लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी ही जो रेनबो जीनियस की जो ताज है उसकी संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश जी। तो श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस और मैं हूं आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और यहां पर लेते हैं एक छोटा सा प्रमोशनल ब्रेक।
3: कोयल सी तेरी बोली।

0: मेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: और FM रेनबो पर चल रहा है प्रोग्राम अल्फा चैन के तहत रेनबो जीनियस, जिसमें आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दे सकते हैं हमारे 5 सवालों के जवाब। और सवालों का सही जवाब देते ही आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। हमारे आज के हमें 2 रेनबो जीनियस मिल चुके हैं। देखते हैं कि अभी समय हमारे पास थोड़ा सा बचा है, लगभग 15 मिनट के करीब हमारे पास समय है, तो देखते हैं कि कौन और कितने रेनबो जीनियस हमें आज के प्रोग्राम में मिल सकते हैं।

0: प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन के तहत रेनबो जीनियस, और हमारे साथ हमारे ढेर सारे श्रोता जो है लगातार जुड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका, आपने नाम बताएं।
1: जी मेरा नाम प्रकाश चंद।
0: जी प्रकाश जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं दिल्ली कड़का डोमा से बोल रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो तैयार हैं आप हमारे आज के रेनबो जीनियस खेल को खेलने?
1: जी प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। तो सबसे पहले ये बताइए कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रकाश चंद जी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने रेडियो सेट की जो वॉल्यूम है वो कम कर लें।
1: मैं वही करने जा रहा हूँ जी। ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम आपने बना दिया, वरना मैं सोचा था आप डायरेक्ट लेंगे मुझे।
0: जी डायरेक्ट ही ले रखा है हमने आपको ऑन एयर। आप हमारे साथ हेलो।
1: जी
0: बताएं कि आप मतलब जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है?
1: अर्जुन पुरस्कार
0: जी
1: ये इसमें
0: जल्दी जल्दी इतना समय नहीं।
1: अर्जुन पुरस्कार ये सेना में दिया जाता है?
0: जी नहीं, पहले ही सवाल का आपने थोड़ा गलत जवाब दे दिया। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ फिर कभी जुड़ेंगे और इस खेल को बखूबी खेलेंगे और जीतेंगे जरूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे साथ प्रकाश चंद जो कि दिल्ली से जुड़े, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे आज के रेनबो जीनियस नहीं बन पाए। तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो
2: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
2: शंकर बोल रहे हैं कटिहार से मैडम।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए कि क्या आप तैयार हैं आज का खेल खेलने के लिए?
2: जी जी।
0: तो सबसे पहले ये बताइए कि पद्मश्री पुरस्कार जो है वो किसके लिए दिया जाता है?
2: खेल के क्षेत्र में जाएगा, पत्रिका क्षेत्र में।
0: किसके क्षेत्र में?
2: पत्रिका के क्षेत्र में।
0: नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। बहुत अफसोस है कि आप पहले ही प्रश्न पर जो है वो सही जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप रेनबो जीनियस जरूर बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बन सकते हैं रेनबो जीनियस। देखते हैं हमारे पास अगला कॉलर जो आया है वो कहाँ से है, कौन है। हेलो
3: हेलो
0: जी नमस्कार मैडम, आपका कौन बोल रहे हैं?
3: जी रजनेश राठी बोल रहा हूँ महेंद्रगढ़ से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका
3: रेनबो जीनियस। धन्यवाद जी।
0: जी तो बताइए कि क्या आप पहले भी रेनबो जीनियस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं?
3: जी बन चुका हूँ जी रेनबो जीनियस।
0: जी बहुत बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज तैयार हैं आप?
3: जी बिल्कुल तैयार हूँ।
0: तो सबसे पहले बताइए कि जापान की राजधानी क्या है?
3: टोक्यो जापान की राजधानी।
0: और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है?
3: जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
0: बिल्कुल सही जवाब। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है?
3: ये फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट।
0: बिल्कुल। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था?
3: रविंद्रनाथ टैगोर ने, जनगण मन।
0: बिल्कुल सही सवालों के जवाब आप देते जा रहे हैं, और चार सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं। देखते हैं कि आखिरी सवाल का जवाब आप दे सकते हैं या नहीं। तो आप हमें ये बताइए कि फीफा जो है वो किस खेल से संबंधित है?
3: ये फुटबॉल की संस्था है, वर्ल्ड कप आयोजित करवाती है।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई हो आपको रजनेश जी कि आप हमारे आज के अगले रेनबो जीनियस बन चुके हैं। और बताइए आपको कैसा लग रहा है एक बार फिर से ये वाला जो ताज है अपने नाम करके?
3: जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आज जितने भी जीनियस बने, अरुण हो गया जैसे रश्मि मैडम थी, और एक और दिल्ली से टीचर है दोस्त मेरे वो बने थे, तो तीनों को बहुत बहुत बधाई।
0: जी बहुत बहुत बधाई हमारे सभी रेनबो जीनियस जो भी आज हमारे बने हैं श्रोता, और साथ ही साथ आपको भी बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर आपसे जल्दी जुड़ाव होगा। और श्रोताओं अब जो है घड़ी की सुइयां हमारे और इशारा कर रही हैं कि हम जल्दी से अपने कार्यक्रम को समेटें। अगर आप भी बनना चाहते हैं रेनबो जीनियस तो जल्दी से हमें कॉल लगाइए। हमारे टेलीफोन लाइन्स जो आप सभी के लिए आज खुली हुई है वो है 2342 1080 और 2342 1084। तो और लीजिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। हेलो
4: हेलो
0: जी
4: नमस्कार,
0: आपका नाम बताएं।
4: केशव चक्रवर्ती, अगरतला त्रिपुरा से।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
5: अगरतला त्रिपुरा से।
0: अरे वाह, आप नॉर्थ ईस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
5: हाँ हाँ मैडम
0: जी, तो तैयार हैं आप आज का खेल खेलने के लिए हमारे साथ? जी तो बताइए, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?
5: ये तो अपना 2008 में बेजिंग अभिनव बिंद्रा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारा अगला सवाल जो है वो ये है कि कंप्यूटर के जनक जो है वो किसे कहा जाता है?
5: अच्छा, बेबेज।
0: बिल्कुल।

0: ये यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है?
1: आई थिंक टू नेम सम कम टू माय माइंड, डैन्यूब.
0: बताएं?
1: डैन्यूब, डैन्यूब और वोल्गा.
0: हाँ, वोल्गा नदी जो है वो सही जवाब है.
1: वोल्गा रशिया.
0: और
1: रशिया नदी.
0: बिल्कुल बिल्कुल. और इसी के साथ आप बनते हैं हमारे आज के अगले रेनबो जीनियस.
1: मैडम थैंक यू वेरी मच. आई लाइक दिस प्रोग्राम फॉर मेनी डेज. I tried every day to participate because telephone lines are too busy.
0: क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ने की लगातार कोशिश करते हैं. और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां कि आप जो है हमारे आज के रेनबो जीनियस बने. और हमारे बाकी के जितने भी श्रोता आज जो रेनबो जीनियस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो रेनबो जीनियस बने या नहीं बने, लेकिन आप सभी ने कोशिश की और कुछ लोगों ने अपने आप से ही प्रतियोगिता की कि पहले वो नहीं बन पाए थे और इस बार उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया. तो ऐसे ही प्रयास हम सभी को करते रहने चाहिए क्योंकि ये एक हेल्दी प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं होती है. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोता जो हैं वो हमसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही हमसे प्यार करते रहेंगे. तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम का जो समय है वो यहीं पर समाप्त होता है. उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर आप सभी से मुलाकात होगी और बहुत सारे श्रोताओं से बातचीत होगी. फिलहाल कोमल को दीजिए इजाजत. फिर होगी मुलाकात आप सभी से रेनबो की तरंगों पर, यूं ही चलते फिरते. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. नमस्कार.

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक उदाहरण पेश किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में झड़खाली की कुछ महिलाओं द्वारा मैंग्रोव वन लगाए जाने की चर्चा की। इनमें से अधिकांश वे महिलाएं हैं जिन्होंने बाघों के हमले में अपने पति को खो दिए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज एक दिवसीय केरलम दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ किया। 2 दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने 70 होटलों, रेस्तरां और खाने पीने से जुड़े अन्य स्थानों का औचक निरीक्षण करने के बाद 25 को स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन के कारण बंद कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उत्तराखंड में तेज बारिश और बिजली गिरने को लेकर रेड अलर्ट जारी, चार धाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। एशियाई खेलों में आज भारत के मुक्केबाज अंशुल पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में तजिकिस्तान के नेक्रोज सलीमोव को 5-0 से हराकर देश के लिए मुक्केबाजी में पहला पदक पक्का कर लिया है। और अंत में एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून कर लिया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक। दोस्तों, शाम ढलती है तो मौसम जो है ना बेहद खुशनुमा हो जाता है, और संडे की शाम है तो अपनों का साथ भी है, लजीज व्यंजन भी है जी, खुशबू आ रही है, तरह तरह के पकौड़े परोसे गए हैं, और एक कप अच्छी वाली चाय अपनों के साथ, बहुत ही मीठी सी चाय, ढेर सारी बातें, और एफएम रेनबो का साथ दिल से दिल तक। मैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स के साथ कंचन, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे इस खुशनुमे शाम में। प्रोग्राम सिटी लाइट्स, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक।

0: दोस्तों, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जीवन के छोटे छोटे और सरल पहलू पर हम लोग बिल्कुल भी गौर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक ऐसी कलाकार हमारे साथ हैं जो जिंदगी को बहुत ही सरलता से उकेरती हैं अपने चित्रों के जरिए, और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं रीना उपाध्याय, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। हेलो।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: हेलो मैम, एफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, आपको आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: जी मैम, 26 से 29 सितंबर बहुत खास है आपके लिए, क्या कुछ खास होने जा रहा है?
1: हाँ, शुरू हो चुका है जो खास हो रहा है मेरी लाइफ में, जो कि मेरा पहला एग्जीबिशन आर्ट शो इस वक्त स्टेनलेस गैलरी में चल रहा है नई दिल्ली में। ये एक ग्रुप शो है जिसमें करीब 14 कलाकार हैं, मैं उनमें से एक हूँ, और ये मेरी पहली एग्जीबिशन है लाइफ की, और तो इसलिए मेरे बहुत खास है।
0: जी, तो मैम किस तरह की तैयारियाँ आपने की हैं?
1: तैयारियाँ तो बस हमें ये देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, हमारे साथ हमारा पर्सपेक्टिव देख सकें, और उससे कुछ अगर उनको कुछ आनंद मिलता है तो बस वही हमारे लिए काफी है। बाकी तो तैयारियां तो इतने साल से जो हम पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो तैयारियां ही हैं पिछले 5-7 साल से।
0: जी, तो मैम आप चित्र बनाती हैं, चित्र के जरिए जीवन को उतारती हैं कैनवस पर, तो किस तरह से आपकी शुरुआत हुई थोड़ा बताएं?
1: देखिए, बचपन में मैं बहुत ये करती थी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, पर जैसे कि हम जैसे लाइफ की आपाधापी में होता है तो मैं एडवर्टाइजिंग की फील्ड में चली गई, जो कि जिसमें मैं आर्ट डायरेक्टर काफी साल तक थी, और अभी भी मेरी अपनी एक ब्रांड और डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म है जिसपे अब मेरा काम है, लेकिन मेरा फोकस लाइफ में मेरा जो असली जो मुझे लगता है जो सबसे इंटरेस्ट का काम लगता है वो पेंटिंग, तो वो मैं पिछले 5-7 साल से कर रही हूँ। मेरी एज सच कोई फॉर्मल पेंटिंग में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये सारा कुछ मैंने अपने आप ही अपने हिसाब से किया है।
0: जी, तो मैम आपकी जो पेंटिंग है उसका मीडियम क्या होता है? ये मिक्स मीडियम होता है या किसी खास मीडियम पर आप ज्यादा जोर देती हैं, और थीम क्या होती है आपकी पेंटिंग्स की?
1: तो मैं ज्यादातर वाटर कलर, जिसमें एक मीडियम गुआश होता है, वो यूज करती हूँ, और इंक्स यूज करती हूँ।
0: जी जी।
1: और मैंने एक्रेलिक्स और ऑयल्स में भी काम किया है, लेकिन वो मेरे पसंद के मीडियम नहीं है।
0: जी जी।
1: और मैं ज्यादातर सरलता की ओर अपना नजरिया रखती हूँ, तो मैं आर्ट में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं कहना चाहती हूँ।
0: जी,
1: तो मेरी ज्यादातर जो पेंटिंग्स अगर लोग आपके श्रोता आए देखेंगे तो उनको खुद ही समझ में आएगा कि मैं अपने चित्रों के में कहानियाँ सुनाने की कोशिश करती हूँ।
0: तो ये जो एग्जीबिशन है वो कहाँ पर है मैम?
1: ये है स्टेनलेस गैलरी है, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है, और जो कि नेहरू प्लेस से बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता है, और मेट्रो स्टेशन भी पास ही है, और यहाँ पर नहीं और भी कलाकार हैं, तो हर तरह का आपको काम देखने को मिलेगा इसमें। कई कलाकार बाहर के शहरों से भी आए हैं, नेहल देसाई आई हैं अहमदाबाद से
0: जी।
1: और कई कलाकार नोएडा, बॉम्बे और गुड़गांव से भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छे कलाकार साथ में उनका काम देखते हैं।
0: जी मैम, आप एफएम रेनबो के साथ जुड़ी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आपने मुझे अपना
0: और आपकी ही पसंद का ये बहुत ही प्यारा सा गीत लता जी की आवाज में।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। और दोस्तों, स्वच्छ वातावरण से ही स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है, स्वच्छता ही समृद्धि की तरफ एक कदम है। और जैसा कि बापू ने कहा था कि सफाई जो है कोई काम नहीं है बल्कि एक आदत है। सफाई की इस आदत को अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हम तन से मन से भी स्वस्थ रहेंगे और बेहतर सामाजिक जीवन जो है हम जी सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में से एक है। इंसान की जो समृद्धि है वो सिर्फ उसकी आय से हम बिल्कुल भी नहीं आंक सकते, है ना। तो स्वच्छता की कमी से हमारी सेहत प्रभावित होती है, शिक्षा और सोच भी प्रभावित होती है। इसलिए हम अपने दफ्तर से लेकर घर और पब्लिक प्लेसेस को हर संभव साफ रखने की कोशिश करें और जिम्मेदारी लें कि हम हर तरफ जो है स्वच्छता बरकरार रखें। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने आसपास बिल्कुल स्वस्थ और स्वच्छ माहौल रखेंगे, तभी समृद्धि की तरफ एक कदम हमारा और आपका एक छोटा सा प्रयास। प्रोग्राम सिटी लाइट्स में आपके साथ कंचन।

0: जुगाड़।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
5: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धड़ा का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
12: आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, मैं आपके साथ कंचन हूँ। और दिल्ली में जो मौसम है ना दोस्तों, क्या जबरदस्त है। कल बूंदाबांदी हुई और अचानक लगा कि बस शारदीय नवरात्र आने ही वाला है। बहुत ही सुंदर मौसम हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। वैसे आज हल्की धूप थी, लेकिन धूप में जो वो तपिश है ना, वो बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही सुहाना मौसम है दिल्ली का, और इस सुहाने मौसम में हमारा आपका साथ FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

दोस्तों, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के पास आते ही पूर्वांचल को जाने वाली ट्रेन्स में जबरदस्त भीड़ होती है, टिकट्स नहीं मिल पाते। लेकिन क्या करें, टिकट्स नहीं मिलेंगे तो क्या घर नहीं जाएंगे, ऐसा सवाल बिल्कुल उठता है। लेकिन खास प्रबंध किया गया है और ये प्रबंध है कि आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के लिए विशेष रेलगाड़ी 10 अक्टूबर से चलाई जाएगी 25 नवंबर तक, और ये ट्रेन दोपहर 12 बजे चलकर अगले दिन 1:30 बजे भागलपुर पहुंचेगी और गाड़ी संख्या 0406 भागलपुर से रोज 11 अक्टूबर से 26 नवंबर तक शाम 4:30 बजे चलकर आनंद विहार पहुंचेगी। तो देखिए, एक बहुत अच्छी खबर है ना, तो इस छुट्टी आप घर जाने की तैयारी बिल्कुल

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे किसानों, मुझे मत पहचानो, इस बात को जानो। ये प्रोग्राम है कौन सा? इस प्रोग्राम का नाम है फार्म टू सिटी। इस प्रोग्राम को आप तक लाता है भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हमने आपको अपने किसी पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी छोटी सी बालकनी के लिए एक ट्रैक्टर इजाद करूं, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। मैंने बहुत लोगों से बात कही, लोग बोल रहे हैं बड़ा इम्प्रैक्टिकल विचार है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं कोई नया आइडिया लेके आऊंगा। तो मेरे जहन में एक नया आइडिया आया है कि क्यों ना हम बागवानी में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, इक्विपमेंट्स, उपकरण, औजार, खुरपी, फावड़े, इन सब की बातें आज के एपिसोड में करें। ट्रैक्टर पर कभी और कर लेंगे मौना, लेकिन फिलहाल आपको यह है जानना कि प्रोग्राम का नाम है फार्म टू सिटी और इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपका प्यारा फार्मर ओपी राठौर। और ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से। और गाने के उस ओर मिलेंगे हम अपने एक्सपर्ट से इन द प्रोग्राम फार्म टू सिटी।

0: जनाब, जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही हमने आपको सूचित कर दिया था, अवगत कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था,
1: अरे कितने बारे में बोलोगे?
0: हाँ, मैं कह रहा था कि मतलब आपको पहले ही शुरुआत में ये जानकारी दे दी गई थी कि आज के इस फार्म टू सिटी गार्डनर्स पैराडाइज में हम बात करेंगे बागवानी में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों के बारे में। मेरे उपकरण अर्जुन कब आएंगे? आज के उपकरण के बारे में, इन्हीं उपकरणों के बारे में, यानी कुछ लेटेस्ट भी आ रहा है या वही खुरपी और वही सब पुराना तसला वगैरह ही चल रहा है? हमने सोचा क्यों ना हम अपने एक्सपर्ट को बुला के इस बारे में कुछ मालूमात कर लें। तो आज के इस अंक में हमारे खास एक्सपर्ट हैं कृषि अभियांत्रिकी विभाग पूसा के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी सिन्हा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बागवानी में लोग सोचते हैं क्या उपकरण लगेंगे, कुछ तो है नहीं, ना ट्रैक्टर लगता है, ना इसमें रोटावेटर लगता है, ना इसमें स्प्रिंकलर लगता है, मतलब कौन कौन से उपकरण बागवानी में इस्तेमाल यूजुअली होते हैं?
2: अर्बन फार्मिंग के लिए कुछ आजकल IoT बेस्ड भी उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे हाइड्रो फार्मिंग करनी है तो उसमें पानी का जो गुणवत्ता है उसको मॉनिटर करना, छिड़काव करना है तो छोटे छोटे यंत्र हैं जो कि वो अपने स्वचालित भी हैं और खासकर बहुत सारे उपकरण का कंट्रोल उनका ऑटोमेटिक होता है, तो इससे उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और कम लागत होती है।
0: और समय के साथ जब लोग मॉडर्न हो गए हैं, थोड़ा सा टेरेस गार्डनिंग शुरू कर दी है, तो पानी कैसे दें ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। निराई गुड़ाई, पीले हो गए पत्ते उन्हें निकालना, खरपतवार रिमूव करना, दवाइयां छिड़कना, मल्टीपर्पस बर्तन, ये कुछ नया हो तो सर उसके बारे में बताएं।
2: पानी की निरंतर आर्द्रता बनी रहे इसके लिए IoT बेस्ड भी है कि जो सेंसर होता है वो सेंस करता रहता है कि कब पानी की कमी है और ड्रिपर से हम पानी देते रहते हैं, तो टैंक में होता है, अपने आप आपको अपनी जरूरत नहीं देखनी पड़ती है, वो हर

0: करता है, घर बंद भी है, बालकोनी में लगी हुई है, तो पानी आप टैंक में भर के छोड़ दें, वो अपने आप डालता रहेगा जब आवश्यकता होगी। निराई गुड़ाई के लिए तो वो छोटे छोटे हैंड टूल्स अवेलेबल हैं, जो कि ज्यादा दूर वो काम नहीं करते हैं, जाके गमले में लगा हुआ है तो उनकी जड़ नहीं कट जाए। तो इस तरह से उसकी विकसित रूप से जो आजकल छोटी कंपनियां बना रही हैं तो वो उपलब्ध हैं। और खाद के लिए जैसे ड्रिप के द्वारा भी फर्टी इरिगेशन भी हम कर सकते हैं, और छिड़काव के लिए छोटे स्प्रेयर्स आते हैं जो उनमें खाद की मात्रा को डाल के और एक एनपीके का बैलेंस्ड यूज करके उसको ड्रिपर के थ्रू डाल दें तो संतुलित आहार मिल सकता है।
1: तो ये सब मिलेगा कहाँ, इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सर?
0: यह तो आजकल छोटे छोटे प्रौद्योगिकियों में उपलब्ध हैं, आप जो आज के इंटरनेट की सुविधाएं हैं इसे बहुत सारी कंपनियां जो कि यह उपलब्ध कराती हैं। और अगर इसको प्रत्यक्ष दर्शन भी करना है, देखना है किसान भाइयों को, या हमारे जो भी इच्छुक हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध भी है।
1: जी, और ऐसे कोई उपकरण जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा सा बड़ा गार्डन है, वो क्या कर सकते हैं?
0: सबसे पहले किसी भी कृषि कार्य के लिए पानी की आवश्यकता है, और दूसरा है जो रासायनिक खाद अगर यूज कर रहे हैं वो तत्व, जो उपेक्षित तत्व हैं उनको तत्वों की समुचित मात्रा मिले, बैलेंस्ड फूड फॉर द प्लांट मिले, उसके लिए ये IoT बेस्ड ड्रिपर सबसे उपयुक्त है। और कभी भी अगर कोकोपीट का यूज कर रहे हैं आप, जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे टेरेस फार्मिंग में या रूफ टॉप फार्मिंग में अगर मिट्टी का उपयोग करेंगे तो वो ज्यादा भारी होगा, उससे आपके पुराने स्ट्रक्चर हैं तो उनको नुकसान होने की संभावना बनी रहेंगी, इसलिए वो कोकोपीट का यूज करें और कुछ दिनों बाद उस मिट्टी को निकाल दें, क्योंकि उसमें पैथोजेंस ग्रो हो जाते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, तो उसको चेंज करते रहना भी जरूरी है।
1: तो चलिए जी, इतनी तो हमें हो गई है जानकारी कि आज बनेगी ताजी ताजी तरकारी। I mean to say, हमें अब नए उपकरणों के साथ आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते समय ढोल बाजा सिंगर अपने को लगता ही लगता है, क्योंकि हमारे गमले भी गमले हो जाते हैं, उनको खुश ले करने के लिए हम कुछ गाने प्ले करते हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में हम सब मिलकर मना रहे हैं सेवा से संकल्प अभियान जो चल रहा है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। इसके अंतर्गत भारत सरकार ही नहीं लोग भी मिलकर कई कार्यक्रम चला रहे हैं। भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तो हमेशा से ही तत्पर रहता है अपने इस कार्य में। तो किस तरह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार किसानों के हित के लिए सोच रहा है, आइए जानें माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से।
1: मित्रों, अगर एग्रीकल्चर के हमारे टारगेट्स क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, इस पर मैं बात करूं तो तीन हमारे लक्ष्य हैं। एक, 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी। अब इतनी बड़ी आबादी की फूड सिक्योरिटी हमको सुनिश्चित करना है और आज के दौर में तो ये और जरूरी हो गया है। अब हम हमारे भोजन के मामले में दुनिया पर निर्भर नहीं रह सकते। मिडिल ईस्ट में और बाकी जो संकट हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो स्थिर सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन दुनिया में कब क्या हो जाए इसका ठिकाना नहीं। इसलिए हमारा टारगेट है फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। हमारा दूसरा टारगेट है किसानों की आजीविका सुनिश्चित करना। वो किसान जो जीवन दाता है, अन्न दाता है, वो कैसे सुखी हो, उसकी इनकम कैसे बढ़े। लेकिन एक तीसरा टारगेट भी है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। भोजन तो मिले लेकिन पोषण युक्त मिले, इसकी चिंता भी करनी है।
0: ओके, तो हम अब सेवा से संकल्प अभियान को अपना मूल मंत्र बना के आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आप ही में से किसी एमेच्योर यानी शौकिया गार्डनर अपनी बालकनी में पौधे लगाने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर अंशु राठी से। नमस्कार डॉक्टर अंशु राठी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अपने बारे में ही कुछ बताइए।
2: हाँ जी, मेरा नाम है डॉक्टर अंशु। बाय प्रोफेशन मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैंने पीजी भी करी हुई है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं हूँ रुड़की उत्तराखंड से। और उसके बाद मैं एक गार्डनर हूँ, क्योंकि मेरा शौक था गार्डनिंग करना। उसके बाद मैंने गार्डनिंग शुरू करी, उसके भी रीजन था मेरी बेटी, उसकी वजह से मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी।
0: तो आपने जो शौक अपनाया है बागवानी का, इसमें आपकी बेटी का रोल है, जरा उसको स्पष्ट कीजिए।
2: बेटी का रोल इसलिए कि हमारे घर के सामने ना एक बाग है, तो उस बाग में ना अमरूद लगते थे। तो जब वो छोटी थी ना, मैं उसको लेके जाया करती थी वहां पर। तो हम लोग वहां गए तो हमने देखा कि चलो अमरूद बड़े अच्छे लगे थे। तो नीचे बहुत सारे इंजेक्शन, एक होता है इंजेक्शन नॉर्मल इंजेक्शन, एक थे कि बड़े वाली सिरिंज जो 20 ml वाली आती है ना, 10 ml वाली, वो 10 और 20 ml वाली इंजेक्शन पड़े थे बड़े वाले। और एक था कि पूरे मैदान पे फैल रखे थे, जितने पेड़ थे उनके बीच बीच में जो उन्होंने स्पेसिंग छोड़ी हुई थी, एक लेन दूसरी लेन, उसके बीच में सब में इंजेक्शन ही थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या है। तो बाद में मुझे वहीं किसी कोई बंदा था, उसने बताया कि मैम ये ना हम इंजेक्शन लगाते हैं अमरूद को, इसलिए कि वो ना रात में जिसको बड़ा होना होता है रात रात में बड़ा हो जाता है, और नहीं तो गल के गिर जाते हैं वो। तो मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि एक अमरूद जैसी चीज जो कि 12 मासी है, मतलब बहुत सारी वैरायटीज आती है इसमें, अमरूद तो ऐसा होता है ना कि बिना केमिकल के आप उगा सकते हो, उसको भी इतना ज्यादा कमर्शलाइज कर दिया है कि उसमें भी तुम केमिकल डाल रहे हो। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट छोटी है मेरी बेटी, तो वो अगर मैं 2 भिंडी भी उगा रही हूँ ना तो वो खा सकती है। तो बस इसलिए फिर मैंने ये गार्डनिंग में और ज्यादा घुस गई थी। तो उसके बाद मैंने वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू करी थी।
0: जी, आप ये सब तो करती हैं, आप डॉक्टर भी हैं, घर भी देखती हैं, बच्चा भी आपका छोटा है, तो ये सब के बीच में टाइम कैसे मैनेज करती हैं?
2: ये मैनेज होता नहीं है, करना पड़ता है। मैं क्या करती हूँ अपना, या तो सुबह या दोपहर जब भी वक्त मिलता है, क्योंकि मेरा जो क्लिनिक होता है वो वीक में 2 दिन होता है, बीच में टाइम मिलता है और उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। मैंने एक रियलिटी शो भी करा था डीडी नेशनल पे।
0: जी, तो अंशु जी, ये जो बागवानी है इसको आप कितने साल से कर रही हैं?
2: जब मैं मेडिकल कर रही थी तब भी मेरे पास 2 प्लांट तो थे। मैं रखती थी एक एलोवेरा और एक जीजी प्लांट। मुझे याद है 2016 में, क्योंकि हम लोगों को रूम मिल जाता था पीजी करते हुए, उसमें मैं ये रख लेती थी। और उसके बाद जब मैं निकली वहां से पास आउट होके, उसके बाद हम रेंटेड अपार्टमेंट में आए, मैंने वहां से बालकनी गार्डनिंग शुरू करी थी। उसके बाद हमारा घर बना, उसके बाद मैंने घर में अपना गार्डन सेटअप किया।
0: तो अभी आपके इस बगिया में जो आपने बताया है, क्या कुछ लगाया हुआ है आपने?
2: इस वक्त मेरा जो गार्डन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है इंडोर प्लांट जिसका गार्डन अलग है मेरा सेकंड फ्लोर पर, एक है मेरा फ्रूटिंग प्लांट जो कि मैंने सेकंड फ्लोर पर क्लिनिक की छत पे लगाया हुआ है, जिसमें खाली फ्रूट्स वगैरह लगता है, और एक है मेरा वेजिटेबल गार्डन जो कि मेरी टेरिस पर है, उस पर मैं केसर के बल्ब

0: लगाए हुए, मैं ना केसर वगैरह उगाती हूँ और उग जाता है। लोगों को लगता है कि नहीं उगता है, बट उग जाता है। मेरे यहाँ पे भिंडी लगी हुई है, मलबरी लगी हुई है, मेरे यहाँ पे अभी जो लगा हुआ है मौसमी, अभी आए हुए हुए हैं पेड़ पे, अभी मैंने उसको हार्वेस्ट नहीं करा है। और मैंने मूंगफली भी लगाई हुई है, तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो मैंने ना ट्राई करी हो। मैंने पाइन एप्पल कट करके पाइन एप्पल भी लगाया हुआ है, तो मेरे पे मोर देन 40 वरायटी ऑफ फ्रूट्स है।
1: ये इतने सारे आपने तीन तीन तलों पर तीन तीन लेवल्स पे बागवानी करते हैं, इतने सारे काम में घर के किसी मेंबर की भी हेल्प आपको मिलती है?
0: गार्डनिंग आपने अधिकतर देखा होगा ना, ये आपके परिवार में एक इंसान को पसंद होती है और लोगों को वो कूड़ा कबाड़ लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि एक मच्छरों का ठिकाना इकट्ठा करा हुआ है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो भी डॉक्टर है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी डॉक्टर है,
1: जी,
0: तो उनका क्या है कि मेंटली उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं वो।
1: आपने कोई माली रखे हैं?
0: लास्ट 1 महीने पहले मैंने एक माली को बुलाया था, क्योंकि मैं एक बार अगर एक गार्डन में हिस्से में लग जाती हूँ तो दो मेरे रह जाते, तो उसके लिए मुझे सिर्फ खरपतवार निकलवानी थी और मिट्टी की गुड़ाई करनी थी। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने उसको 600 रुपए दिए और मैंने उसको बुलाया।
1: अभी हाल फिलहाल में गार्डनिंग का क्या ट्रेंड है? लोग इसको ज्यादा अपना रहे हैं या कुछ ही लोग हैं जो गार्डनिंग कर रहे हैं?
0: गार्डनिंग ना ट्रेंड कर रही है, जो लोगों को कुछ भी नहीं आता था ना उगाना, मतलब वो लोग भी वैल्यू समझ रहे हैं। दूसरी बात, लोग ना सस्टेनेबिलिटी की वैल्यू समझ रहे हैं आप, जो कि गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा है। लोगों को पता है कि भाई घर के कचरे से खाद बनाना है, पहले नहीं पता था लोगों को। लोगों को पता है कि मुझे प्लास्टिक का यूज कम करना है, तो लोग उस चीज में अवेयर हो रहे हैं। लोगों को ये हो रहा है कि अगर मैं बेसिक सब्जी जैसे कि टमाटर, मिर्ची, धनिया और पुदीना, ये अगर आप घर पे उगा रहे हो तो यानी कि आप बेसिक हार्वेस्टिंग तो ले ही रहे हो, जो आपको डेली रूटीन में चाहिए होती है, और उसमें अनियन ग्रीन्स और गार्लिक ग्रीन्स आ ही जाते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास स्पेस भी कम है तो आप कितने इजीली आप उगा पा रहे हो। तो और ऊपर से ना बालकनी गार्डनिंग का, टेरिस गार्डनिंग का, अर्बन गार्डनिंग का जो ट्रेंड है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इवन कंपनियां आ गई हैं जो कि आपके यहाँ पे आके पूरा टेरिस सेटअप करके जाती हैं।
1: जी अंशु जी, क्या आप मानती हैं कि गार्डनिंग जो बालकनी में, छतों पर या अपने घर के आंगन में करते हैं, ये रोजगार की भी शक्ल ले सकता है?
0: बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता है। कितने लोग हैं जो कि गार्डनिंग को एज ए रोजगार यूज कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग जीवा अमृत बना रहे हैं, जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है, जिनके यहाँ गाय भैंसे हैं, या जो लोग रूरल एरिया से हैं जहाँ पे उनको गोबर मिल जाता है, वो लोग वर्मी कम्पोस्ट भी बना रहे हैं, वो लोग खाद बना रहे हैं, वो लोग कुछ लोग बायो एंजाइम बना रहे हैं जिसके पास ये है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग वो सिखा भी रहे हैं, मतलब कंसल्टेंसी देते हैं वो लोग और वो सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें रोजगार नहीं बन सकता। अधिकतर मैंने देखा है कि आपको ना गार्डनिंग करके एक्सपीरियंस जाता है कि कौन सी चीज इजीली लग जाती है और क्या दूसरे लोग ये चीज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो अगर मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा तो उन लोगों को हेल्प हो जाएगी और मेरे को पैसे मिल जाएंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशु, आपने इतनी सारी हमसे बातें की और हमारे श्रोताओं को बताया कि गार्डनिंग एक नया उभरता हुआ ट्रेंड है जिसमें लोगों का आना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए हमारा प्रोग्राम फार्म टू सिटी भी बहुत बहुत बहुत पॉपुलर हो रहा है रातों रात। तो शुक्रिया अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आप भी अगर अंशु राठी जी की तरह ही हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, फीचर होना चाहते हैं, आपकी बगिया का जिक्र करना चाहते हैं, तो हमें अपने बारे में कुछ लिखिए अपने बगीचे का फोटो के साथ में। हमारा ईमेल आईडी है farm2citydelhi@gmail.com, FARM2 जैसा नंबर में होता है, CITYDELHI@gmail.com। तो लिखिए, हम आपके ईमेल्स का भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, जानकारी के सागर में गीत का एक मोती भी हम आप तक पहुंचा देते हैं।

0: अब समय है चलने का, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। लोग आपको कितना चीट करते हैं आपको पता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं कि आपको मनी प्लांट पकड़ा देते हैं। अब मनी प्लांट तो वो होता है, लेकिन आपको उनसे पूछना चाहिए, भैया रूपी प्लांट दीजिए, डॉलर प्लांट दीजिए, पाउंड प्लांट दीजिए, है ना, तब जाके बात बनेगी। और मैं इसी दिशा में नई रिसर्च कर रहा हूं कि अब मनी प्लांट जैसा जिसका मनी ही नहीं पता, नोट दो तो कोई मानता ही नहीं उसे, तो एब्सोल्यूट रिकॉग्नाइजेबल मनी उस पे हो गई, ये मेरी नई खोज का विषय है। तो मैं अपने लैब में जा रहा हूं, अगले संडे निकल के आऊंगा, देखता हूं इस बार पाउंड निकलता है डॉलर, लेकिन आप चाहिएगा नहीं, सुनते रहिएगा एफएम रेनबो को और यहां से उठिएगा नहीं, अगले संडे यहीं बैठे मिलिएगा। अर्थात चलिए जो चाहे करिए। नमस्ते। भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपका धन्यवाद करता है कि आपने हमारे कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुना। नमस्ते, मेरा नाम ओपी राठौर है, बाय बाय।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का नया उदाहरण पेश किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के ओलंपियन राजेंद्र सिंह की सराहना की, जो राउंड ग्लास हॉकी अकादमी के माध्यम से खेल के प्रति अपने समर्पण को आगे बढ़ा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज साबरमती में 1500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में उन्होंने यह बात कही। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने सतत विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका सृजित करने के लिए राज्य में बांस आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया है। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र में किवू झील में एक नाव के पलट जाने से 12 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश और बिजली गिरने को लेकर रेड अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। केरलम में भी तटीय और निचले इलाकों के लिए रेड अलर्ट है। एशियाई खेलों में आज भारत के मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेक्रोज सलीमोव को 5-0 से हराकर देश के लिए मुक्केबाजी में पहला पदक पक्का कर लिया है। 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हुई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, रविवार की शाम है और ये वो समय है जब पूरा हफ्ता एक तरफ और संडे की शाम में एक तरफ। थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम है और मन में एक छोटा सा सवाल भी है, आज अपने लिए क्या किया जाए। वैसे जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों के लिए खुद को रोकते रहते हैं, है ना। नहीं अभी नहीं, ये बाद में करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, पैसे बचाने हैं और डाइट चल रही है, कल से पक्का, है ना। इस तरीके की बातें हम करने लगते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सामने कुछ ऐसा आ जाता है कि दिमाग कहता है कि नहीं और दिल कहता है चलो आज रहने दो। और फिर हमारा वो फैसला जो 5 सेकंड पहले तो बहुत पक्का था और 5 सेकंड में गायब। आज के मैसेज मसाला मिक्स में बस इसी छोटी सी ह्यूमन वीकनेस के साथ थोड़ी सी मस्ती करेंगे, लेकिन क्या है वो चीज़ ये बताएंगे आपको पहले गाने के बाद। और तब तक सुनते हैं एक ऐसा गाना जिसे सुनकर शायद आपका मूड भी कहे कि चलो आज थोड़ा दिल की सुन लेते हैं। मैं हूं प्रणव, आपके साथ रेनबो 102.6 पर, सुनते रहिए और शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स।

मैसेज मसाला मिक्स की एक खास बात यह है कि भाई आप लोगों को शो का इंतजार रहता है और मुझे आप लोगों से मिलने का मैसेज के जरिए ही सही, लेकिन हम लोगों के बीच में जो बातें होती हैं ना उसमें आपकी इतनी इंटरेस्टिंग बातें पढ़कर सुनकर लोगों के सामने सुनाकर मुझे बहुत मजा आता है। और हमारे साथ पहले ही जुड़ चुके हैं इस समय किशन वजनानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ बबलू कश्यप हैं मंगोलपुरी से भी, और अनूप कुमार झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के मैसेज मसाला मिक्स में, क्योंकि नंबर तो आप सबको पता ही है 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसे सेव कर लीजिए। मैं रहूँगा आपके साथ मैसेज मसाला मिक्स में, पढ़ेंगे आपके इंटरेस्टिंग मैसेज, लेकिन किस बारे में भाई? तो ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी, तो आप जरा मुझे ये बताइए कि आपको दुनिया की कौन सी चीज देखकर नहीं कहना सबसे मुश्किल लगता है, यानी आपको टेम्पटेशन, आपकी वो टेम्पटेशन जिसने जिसके सामने यू नो आपका सारा सेल्फ कंट्रोल हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई अब तू ही देख ले। किसी के लिए शायद समोसे हो सकते हैं, और किसी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, किसी के लिए कोई सेल हो, भाई कंट्रोल नहीं होता आजकल तो सेल का सीजन भी चल रहा है, और किसी के लिए शायद चाय, कि भाई चाय के सामने तो वो मना कर नहीं सकते, ऑलरेडी दिन की 4-5 चाय हो गई है लेकिन फिर भी कह देते हैं, अगर कोई प्यार से पूछे कि चाय पियोगे तो कह देते हैं हाँ थोड़ी सी ले लेंगे। किसी के लिए घूमने का अचानक बना प्लान होता है जिसके लिए वो कभी ना नहीं गया।

पाते हैं, और किसी के लिए शायद बस एक एपिसोड, और जब वो बिंज वॉच करने की कोशिश करते हैं। तो आज का सवाल बड़ा आसान है, आप लोग जरा मुझे ये बताइए कि किस चीज़ के सामने आपका नहीं हमेशा हाँ बन जाता है। सोचिए मत, पहला जो भी जवाब आपके दिमाग में आता है वही व्हाट्सएप कर दीजिए, भाई मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और अपना अपना नाम, अपनी जगह का नाम लिखना मत भूलिए, और ये भी बताइए कि साथ में क्यों आप उसे ना नहीं कह सकते, है ना, ये ज़रूरी है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं कि भाई आज मैसेज मसाला मिक्स में किसकी कमज़ोरी सबसे ज़्यादा कॉमन निकलती है। आपके जवाबों का इंतज़ार है, मैं हूँ प्रणव, आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6।

0: म्यूजिक तो आपको पसंद आ रहा होगा आज के मैसेज मसाला मिक्स में, क्योंकि आपके लिए चुनकर लेकर आया हूँ। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैसेजेस बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। टॉपिक एक बार फिर से बता देता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी ना नहीं कह पाते, है ना, कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन आप ना नहीं कह सकते, वो ज़रा मुझे जल्दी से मैसेज पर लिख कर भेजिए 9868107070। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और करेंगे ढेर सारी बातें मैसेज के थ्रू।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
9: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
8: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
9: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
8: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
9: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: एक बार फिर से स्वागत है आपका, मैं हूं प्रणव आपके साथ रेनबो 102.6 पर और शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और आज के मैसेजेस पढ़ने का शुरू करते हैं भाई सिलसिला। आफशा खानम फ्रॉम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं कि गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, कोल्ड ड्रिंक एंड समोसा इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, तो आपको ये भी बताना है कि भाई क्यों आप उसे मना नहीं कर पाते, अगर शायद आपको टेम्पटेशन होती है, उसका टेस्ट बहुत पसंद है भाई, लेकिन कोल्ड ड्रिंक समोसा अगर दोस्त आपको खिलाए पिलाए तो अच्छी बात है, कभी कभी चलता है, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखा जाए, है ना। अगला मैसेज हमारे पास आया है नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से लिखते हैं, गुड इवनिंग शुभ संध्या, सर हम ट्रैकिंग या घूमने फिरने जाने को कभी ना नहीं कह सकते। भाई बिल्कुल सही कहा आपने, ये आदत तो मेरी भी है, अगर मुझसे कोई घूमने के लिए एक बार पूछ ले और फिर पूछने के बाद प्लान कैंसिल कर दे तब बड़ी तकलीफ होती है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए ना नहीं कह पाते लेकिन उसके लिए टाइम निकालना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना, अपनी जॉब से या फिर आप अगर कॉलेज गोइंग हैं तो अपने कॉलेज से क्लासेस से टाइम निकालना मुश्किल है, लेकिन टाइम ज़रूर निकालना चाहिए क्योंकि ट्रैवल हमें बहुत कुछ सिखाता है। विजेंद्र गहलोत अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं कि भाई मैसेज मसाला मिक्स सुन रहे हैं, चाय के साथ हम कभी भी मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि चाय पिलाने वालों से प्रेम रहता है। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, चाय गर्मा गर्म चाय हाँ और सुकून आ जाए। भाई चाय आपसे कोई भी पूछ ले, जिनको चाय का शौक होता है ना सिर्फ वही शौकीन लोग जान सकते हैं कि भाई चाय पीने में क्या मज़ा है, और ख़ास करके जब आपके अपने साथ हों। अगला मैसेज अनिल शर्मा सरिता विहार से लिखते हैं कि मुझसे ना नहीं हो पाता जब कोई मीठा सामने आ जाए क्योंकि शुगर का मरीज़ हूँ और शादी ब्याह में परिवार से छिपकर गुलाब जामुन रसमलाई दिल को नहीं रोक पाता हूँ। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, एक उम्र हमारी कभी कभी हमसे ये कहती है या फिर ये डायबिटीज़ का चक्कर हमसे कहता है कि भाई साहब थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, वो भी ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ क्या करें अगर?

शानदार गानों के साथ शानदार मैसेजेस भी आ रहे हैं आपकी तरफ से। हलवाई कोट हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी लिखते हैं कि मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफ़ी है। जी शेर व शायरी तो चलती रहेगी, लेकिन ज़रा आज के सवाल पे भी कुछ गौर फरमाएं और अपने उद्गार व्यक्त कीजिए। वैसे अगला मैसेज हमारे पास आया हुआ है पंकज का, अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स सुन रहे हैं और मुझे तो क्रिकेट मैच देखने के लिए कोई भी कहेगा ना तो मेरा जवाब हाँ ही निकलेगा, क्योंकि क्रिकेट खेल देखना मुझे बेहद पसंद है और पिछले 30 साल क्रिकेट का खेल देखना 30 साल से

क्रिकेट का खेल देखना पसंद करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे देश में क्रिकेट तो जैसे रिलीजन बन चुका है भाई, सबको इतना ज़्यादा पसंद है। और जब क्रिकेट मैच हो, खास करके कुछ ऐसी टीम से, तब तो भाई मज़ा ही आ जाता है, मज़ा दोगुना हो जाता है। और ऐसे क्रिकेट मैच कभी कभी देखने को मिलते हैं जिनमें कांटे की टक्कर होती है, तो ऐसे मैचेस देखने में बहुत, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर हम साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने अपनों के साथ देखें, तब तो मज़ा डबल हो जाता है। अगला मैसेज हमारे पास आया हुआ है ऑन टुडेज क्वेश्चन, ये जो आंसर आपने लिखा है, नाम लेना चाहूँगा आपका, संजीव कुमार जी, ये इन्होंने लिखा है करनाल हरियाणा से, लेकिन आपका मैं रिप्लाई को समझ नहीं पाया, थोड़ा इलैबोरेट करके बताइए, तब शायद हम इसे ज़रा पढ़ सकें, इस पर गौर फरमा सकें। फिलहाल अगला सॉन्ग आपके लिए, और वापस आएंगे फिर पढ़ेंगे ढेर सारे मैसेज। मैसेज मसाला मिक्स में मैं हूं प्रणव, आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: Welcome, and it's time to bring you all the latest from Asian Games. I am Vidushi Vats here with Mohammed Shahid Azmi, bringing you all the major developments from the last hour and a half, and what a last 90 minutes it has been. Twists, turns, changing positions, dramatic finishes, and now two more silver medals for India. Yes, after the two silver medals we already brought you from squash, India has added two more silver medals, both from athletics, and we begin with a sensational performance in the women's long jump final. Ansi Sojan has done it, silver medal for India. Ansi produced a stunning 6.53 meter jump with her final attempt to secure second place, and what a competition she had. She was the athlete to beat for much of the final, sitting right at the top of the standings and showing remarkable consistency and control. And then when it mattered the most, she delivered a massive 6.53 meters with a final attempt to bring home the silver for India. And that is India's third silver medal of the day, following the silver medal performances from Abhay Singh and Anahat Singh in squash. But the silver medal celebrations don't stop there. Another silver for India, this time in the men's high jump. Sarvesh Koshare has done it. A brilliant performance from the Indian high jumper, who dominated the competition for a major part of the final and spent much of the contest right at the top of the standings, eventually finishing second with a clearance of 2.25 meters. Silver for Sarvesh Koshare, silver for India.
1: जी बिल्कुल, कई पदक बिल्कुल पास आके चले गए, गोल्ड करीब आते आते चला गया, जैसे कहें कि होंठों तक प्याला आके छलक गया। बिल्कुल, एनसी और सर्वेश यहां गोल्ड जीत सकते थे, मामूली अंतर से उनसे गोल्ड छलक गया। बात करेंगे एथलेटिक्स में जिस तरह कामयाबी मिल रही, 13 अब तक पदक एथलेटिक्स से भारत को मिल चुके हैं ओवरऑल अगर देखा जाए इस एशियन गेम्स में। अगर आज के एक और पदक की बात कर लेते हैं, महिला 100 मीटर दौड़ की बात करें तो भारत की हरिता भद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23.20 सेकंड का समय निकालकर तीसरे स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। तेजस्विन ने कुल 7,934 अंक हासिल किए और तीसरे स्थान पर रहते हुए जापान के मारियामान ने वहीं पर 8,123 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि चीन के शिंगहुआ ने 8,012 अंकों के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें 2022 में रजत पदक जीतने वाले यह एशियाई खेलों में यहां बता दें तो डेकाथलॉन में उनका लगातार दूसरा पदक है। कहीं ना कहीं यहां पर तेजस्विन अपना जो पदक का रंग बदलने से चूक गए, लेकिन हां, लगातार दूसरे एशियन गेम्स में उन्होंने पदक जरूर जीता है।
0: Absolutely. Now another big medal moment for India in the women's 3000 meter steeplechase. Parul Chaudhary has done it, bronze for India. Parul finished third to secure a brilliant podium finish with Ankita finishing fourth. What a performance from Parul, holding her ground in a grueling final and bringing another athletics medal home for India.
1: बिल्कुल, पारुल ने एशियन गेम्स में जाने से पहले हमसे बातचीत में भी कहा था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूंगी, ऐसा ही कर उन्होंने दिखाया भी, अपना बेस्ट किया उन्होंने। लेकिन यहां पर बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं विदुषी, एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग ने भी कई कमाल किए हैं। रिंग में भारत के लिए शानदार खबर है, भारतीय मुक्केबाज आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, 3 पदक पक्के कर लिए हैं, अंकुश पंघाल, प्रवीण और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीत लिए, सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। आज मुक्केबाजी के अंतिम मुकाबले का परिणाम बता देते हैं, पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सिथपेक के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र ने यह मुकाबला आरएससी यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम कर लिया, यानी बेहद जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ नरेंद्र ने सेमीफाइनल में जगह बना ली और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर लिया है।
0: Absolutely, as we said, this was some very spectacular last 90 minutes. Now moving across some more athletics results from the events that have taken place today. In the men's 800 meters, Mohammad Afzal finished third in round 1 heat 2, clocking 1 minute 47.37 seconds and advanced to the final. In heat 3, Krishan Kumar also finished third, recording a timing of 1 minute 50.338 seconds. Moving to the women's 100 meters hurdles final, Nandini finished 6th for India, clocking 13.45 seconds. There was no

0: मेडल फॉर इंडिया इन दिस इवेंट।
1: विदुषी चलते चलते हॉकी की खबर देते, एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को 7-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अगले एक घंटे में अब क्या घटेगा जरूर आज की अंतिम अपडेट में 7:30 में बताएंगे। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी और मेरे दोस्त विदुषी बस को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे। मैसेज मसाला मिक्स जारी रहेगा।
4: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्ना पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
8: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
9: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
8: अल्फा जेन,
9: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
10: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो,
3: और शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स मेरे यानी प्रणव के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक एक बार फिर से दोहरा देता हूं आपके लिए कि कौन सी चीज के सामने आपका ना हमेशा हाँ बन जाता है, यानी कि वो कौन सी चीज है, वो आपका कौन सा टेम्पटेशन है जिसके सामने आपका सारा सेल्फ कंट्रोल जवाब दे देता है। आंसर्स बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं मेरे पास। अगला मैसेज मेरे पास आया हुआ है, थैंक यू फॉर टेकिंग द मैसेज, माय नेम इज रवि एंड आई एम फ्रॉम मेलबर्न। आई रेगुलरली लिसन टू रेनबो, कीप इट अप। आई लव दिस चैनल सो मच दैट आई टर्न इट ऑन इन द मॉर्निंग एट 9 AM व्हेन आई सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर and turn it off at 9 PM when I turn off my computer. I love drinking black coffee whenever someone asks, regardless of the weather. I also love listening to Magic Masala Mix. Bhai sahab, aapse guzarish hai that you should, you know, keep the name of the program in mind, which is Message Masala Mix. Or, and then in the end, he has written that on Rainbow, any time of that day, I am home or driving or at और विद फ्रेंड्स। क्या बात है, आप हमेशा रेनबो के साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप रेनबो सुनने के लिए ना नहीं कर पाते हैं तो भाई ये टेम्पटेशन तो बहुत अच्छी है। अगला मैसेज हमारे पास सागर सिंह रावत का, पौड़ी गढ़वाल से लिखते हैं कि अगर मेरे सामने मिठाई हो तो बिल्कुल भी ना नहीं कर सकता, बहुत पसंद है भाई मिठाई। क्या बात है, मिठाइयाँ भाई कुछ लोगों की कमज़ोरी होती हैं, लेकिन मिठाई खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूरी होता है। अब मिठाई आप किस फॉर्म में खा रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है, तो ज़रा खुद का ध्यान रखिए, लेकिन हाँ शौक पूरे करते रहिए, मिठाइयाँ खाते रहिए, हंसते हंसाते रहिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है इम्तियाज़।

एंड सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से लिखते हैं कि सॉन्ग सिलेक्शन बहुत बेहतरीन है, शुक्रिया जी। आज की बात पे कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई भी कोई ऐसा काम या कोई कहे कि भाई मदद कर दें फिनेंशियल या अपने वक्त का, जैसे हॉस्पिटल किसी को कहीं के ले जाना हो, मैं ना नहीं कहता, और जिससे मेरी वाइफ को परेशानी होती है। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है, और कि हर समय जब कोई कुछ बोलता है तो आप तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए कोई तैयार नहीं रहता। मैं प्यार से फिर उन्हें समझाता हूँ, और लोग क्या करते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या करता हूँ ये मुझे फ़र्क पड़ता है। भाई क्या बात है इम्तियाज़ साहब, आपने जो बात कही है बड़ी सेल्फलेस बात कही है। आजकल ऐसा निस्वार्थी होना भी एक अपने आप में, ऐसे लोग ढूंढना बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। लेकिन अगर आप सच में ऐसे हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो उसे जारी रखिए, क्योंकि इस दुनिया में भले लोगों की थोड़ी कमी है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, तो ज़रूर आप खुशियां बांट रहे हैं, और इस खुशियां बांटने के इंतज़ाम को ज़रा, लेकिन हाँ साथ में अपने ना कहीं पीछे छूट जाएं, इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना ज़रूरी है। अगला मैसेज हमारे पास आया हुआ है। गुड इवनिंग जी, ममता दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं वहाँ हर चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है, ओके। लेकिन हाँ एक सिचुएशन और भी है, अगर मेरा मूड ख़राब हुआ ना तो कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह का हो, कितना भी पसंद हो, कितना भी कोई क्लोज इंसान हो, मैं मना कर सकती हूँ, फिर मैं किसी का नहीं सुनूंगी, और ना ही मैं ये सोचूंगी कि ये चीज़ मेरे लिए, मेरी बहुत क्लोज़ है और बहुत फेवरेट है भाई और बहुत पसंद है भाई। ऐसा है, मैं कहना चाहूँगा ममता जी के सारे क्लोज फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, कि ज़रा ध्यान रखिए कि उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, वरना वो किसी भी चीज़ के लिए ना बोल सकती हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है, जिस चीज़ को दिल चाहता है ख़रीद लेता हूँ मैं, जिस चीज़ को दिल नहीं करता फिर नहीं लेता मैं। आदिल कुमार गुन्नौर, शुक्रिया, धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज भेजने के लिए। लिखते हैं कि ना कभी अपना सोचा हमने, ना बचाया हमने, अब बाद में पछताए तो अब क्या किया हमने। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक। हाँ तो तस्दीक साहब, आप ने जो अपना मैसेज किया है तो शायराना अंदाज में, तो ज़रा जिस चीज़ को चाहता है दिल आप ख़रीद लेते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ को आप ना नहीं कह पाते, कभी तो ना करते होंगे ना। कुछ चीज़ों को अपने आस पास बाउंड्री बनाना ज़रूरी होता है, जैसे कि हमें बीच बीच में म्यूज़िकल ब्रेक लेना ज़रूरी होता है।

मैसेज मसाला मिक्स में एक बार फिर से स्वागत है आपका। अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, भुवनेश लिखते हैं अशोक विहार दिल्ली से। हाउ आर यू? ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट आई कैन नॉट से नो टू वॉचिंग क्रिकेट बिकॉज क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट एंड आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू से नो टू लिसनिंग टू द ट्रिपल एम शो बिकॉज आई ऑलवेज विश टू टॉक टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द रेनबो फैमिली एंड दिस शो गिव्स मी अ चांस टू डू सो। वेरी वेल सेड भुवनेश। भुवनेश इफ यू लाइक all the programs presented by All India Radio and FM Rainbow, then, you know, what I can say that, okay, you should continue doing that. बहुत मज़ा आता है, सारे listeners हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें message के माध्यम से, calls के माध्यम से, emails के माध्यम से और हमारे programs और उन सारे music के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसको लगातार जारी रखिए। अगर आप उसे ना नहीं कह पाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। मोहल्ला हलवाइयाँ शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी ने मैसेज किया है कि भाई आपको मेरा प्यार भरा सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और कल से लगातार बारिश हो रही है। मैं अपनी अम्मी को मना नहीं कर पाता हूँ, जब वो किसी काम को कहती हैं तो मैं कर देता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई ये आपका प्यार है और अपनी माँ पर प्यार लुटाना भाई किसका शौक नहीं होता भाई, आपको तो पता ही है। माँ का प्यार, माँ के प्यार की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, है ना? तो अगर आप उनका कहना मान लेते हैं, जो वो कहती हैं सब तुरंत कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला मैसेज हमारे पास आया है, दुनिया की हर चीज़ को तुम ना कह सकते हो मगर बीवी के हुक्म के आगे चुप ही रह सकते हो। जो पूछा उन्होंने कि शॉपिंग पर चलें आज, तो हाँ जी कहकर ही तुम जिंदा रह सकते हो। प्रणव शिंदे लिखते हैं मुंबई से, बड़ा फनी मैसेज भेजा है इन्होंने, कहने के लिए तो फनी लग रहा है लेकिन बात इन्होंने बड़ी पता ही है भाई, जो लोग मैरिड है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे शायद मेरी बात। गुड्डू धाकड़ उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से लिखते हैं कि मेरी बहन है या बुआ जी जब मेरे घर आते हैं ढेर सारे पकवान बनते हैं, खाना बनता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और उसी टाइम में खाता ही खाता हूँ। भाई क्या बात है, खाते ही खाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए, खुश रहिए, हंसते हंसाते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लेकिन अपना ध्यान रखिए, है ना?

मैसेज मसाला मिक्स में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आखिरी कड़ी में जरा कुछ और इंटरेस्टिंग मैसेज पढ़ लिए जाएं। कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दिल्ली शहर, मोरी गेट से लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम सुनना बहुत अच्छा लग रहा है और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। अगर सामने ब्रेड पकौड़े पड़े हों तो शायद ये किसी को ना नहीं बोल पाते, भाई क्या बात है। आप ब्रेड पकौड़े अगर आपके पसंदीदा हैं तो हम विश करेंगे कि आज रविवार की शाम को आपको ब्रेड पकौड़े खाने के लिए मिल जाएं। या तो आप खुद बना सकते हैं या फिर ज़रा फरमाइश कर सकते हैं अगर आपके चाहने वाले हैं जो आपके लिए बना सकते हैं। अगला मैसेज आया है, प्रणव जी नमस्ते, शो में बहुत देर से ज्वाइन किया है इन्होंने। ओके, आज के टॉपिक पर

भी मैं चाहूंगा कि जब भी मौका मिले तो अपने पसंद का खाना जरूर खाइए। उससे क्या रहता है कि हमारा मूड बड़ा खुश रहता है, और जब मूड हमारा अच्छा होता है तो हमसे जितने भी लोग दिन भर में मिलते हैं हम उनसे भी बड़ी खुशी से बात करते हैं। अगला मैसेज हमारे पास बबलू कश्यप का लिखते हैं, जब कोई मुझसे कहता है कि आकाशवाणी भवन चल रहा है तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे आरजे से मिलने की चाहत रहती है। क्या बात है, आपकी चाहतें जरूर पूरी हैं और हमें भी आपसे मिलने की चाहत हमेशा रहती है। तो ये चाहतें अपने दिल में, ये प्यार दिल में बनाए रखिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए मैसेज मसाला मिक्स। अगला मैसेज है भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, मुझे जब भी कोई किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में बुलाए तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। भाई करना भी नहीं चाहिए, कोई आपको बुला रहा है मतलब आपको सम्मान से इनवाइट कर रहा है, और अगर कोई आपको सम्मान दे तो आप कैसे नकार सकते हैं। अगला मैसेज हमारे पास है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का, और इन्होंने लिखा है कि सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं, जहाँ पर ज्ञान की बात, कुछ नया सीखने की बात मिलती है वहाँ हमारी हमेशा हाँ होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ज्ञान जहाँ भी मिले वहाँ बटोर लेना चाहिए, कि जिंदगी में ज्ञान ही तो आपके काम आएगा। भाई आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े और मैसेजेस किए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्यार लुटाने के लिए। मैसेजेस लगातार करते रहिए ऐसे ही, और एंटरटेनिंग शो में फिर वापस आएंगे। फिलहाल ये आखिरी सॉन्ग मैसेज मसाला मिक्स में आपके लिए, मैं प्रणव लेता हूँ आपसे विदा।

0: Okay, that is Coldplay with its clock. Of course, it simply says that it waits for nobody, my dear friend. And time of the studio clock also says it's 27 and a half minutes past 7 p.m. We will be moving ahead for Asian game updates in some time from now. But before we proceed further ahead, I've got a small and teeny mini break. I'm going to take that, but don't you go away. I'll be right back after these messages.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं. आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग-अलग messages हैं.
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
4: मेरे वाले में needle या injection share करने से HIV फैलने की बात लिखी है.
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है.
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क.
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
7: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
8: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा.
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी.
0: All right, we're back from the break, of course, and time on the studio clock says it's about time for me to take you for the Asian Games update, guys, which will start at 7:30, which is about another 30 more seconds to go from that. Well, we are keeping our fingers crossed and hoping for the best that we may get at least a few more gold medals. Let's hope for the best. And if that happens, of course, in the medal tally, we will rise for sure. We were in the 10th spot yesterday. Now we were at the 12th spot. But let's see how things shape up. Still long way to go because we've got a few more days for the Asian Games to go over. But like I said before, it's about time for the Asian Games 2026 updates, which I'm taking you over right away.
10: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
11: शाम जरूर ढल गई है, लेकिन भारतीय जो एथलीट है उनका जज्बा कहां कम होने वाला. शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं एशियन गेम 2026 में. और इसकी ताजा अपडेट और आज की अंतिम अपडेट के साथ मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है मेरे दोस्त विदुषी वत्स. विदुषी, आज देखा जाए भारत ने कमाल किया है. 7 पदक पक्के जीते हैं और 3 पदक

0: पक्के की, यानी 7 और 3 10 पदक आज के दिन से भारत की झोली में आना ही आना है। बात पहले करते हैं आज के अंतिम मुकाबले के एथलेटिक्स की, जहां भारत ने 4x400 मीटर महिला रिले के फाइनल में जगह बना ली है। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में भारत की शानदार प्रदर्शन भारत का देखने को मिला फाइनल में, और इसके साथ जगह बना ली। महिलाओं ने दूसरे हीट में 43.65 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया, जो उनका सीजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके अलावा बात करें तो कुल मिलाकर भारत तीसरे स्थान पर रहा और चीन तथा थाईलैंड के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसी तरह पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में भारत के मोहम्मद अफजल ने फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने 1:47.36 सेकंड का समय निकालकर नॉन ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन स्थान के जरिए फाइनल में जगह बनाई। वहीं कृष्ण कुमार 1:50.38 सेकंड के समय के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए।
1: And now, as we come to the final update of the day, let's take a moment to look at what has been an extraordinary day for India at the Asian Games. India currently stands at 12th position on the medal table with 37 medals, 4 gold, 16 silver and 17 bronze. And today, a major part of that medal haul has come through 4 remarkable silver medal performances across 2 different disciplines. 2 silvers from squash, 2 silvers from athletics, 4 athletes who gave India 4 moments to remember.
0: जी, अगर बताना चाहूं मैं आपको, भारत ने जो 3 कांस्य पदक पक्के किए हैं और 3 जो पदक हैं वो भी आने वाले हैं, उसके बारे में बताऊं तो जो 3 कांस्य पदक भारत के खाते में है, तेजस्वी शंकर ने पुरुषों के डेकथलॉन में कांस्य पदक जीता। जी हां, पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेस में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं जो 3 पदक पक्के हुए उसके बारे में बता दूं, पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश ने बॉक्सिंग में ताजिकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव को हराकर पदक पक्का किया। वहीं महिलाओं के 65 किलोग्राम में जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, वहां परवीन ने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को हराकर पदक सुनिश्चित किया। वहीं पुरुषों की 90 प्लस किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथपोंग सेतपेक को हराकर पदक पक्का कर लिया है।
1: Remarkable medals, remarkable stories, another unforgettable day for India at the Asian Games. But it's also important that as we wrap up today what has been that remarkable day, let's now look ahead to tomorrow and the action that awaits us at the Asian Games. There is plenty lined up across disciplines with several Indian athletes ready to take center stage. We begin with archery, where the compound individual eliminations will be in focus. In the men's event, we'll have Ganesh Maniratnam in action, while the women's compound individual eliminations will feature Chikita and Jyoti Surekha Venom. And after the fantastic performances we have witnessed in athletics today, there will certainly be plenty of attention on the track and field events tomorrow. So the women's discus throw final, we will see Seema and Sandhya Yadav in action after the medals and strong performances India has witnessed in athletics today. All eyes will be on how our throwers perform tomorrow.
0: जी बिल्कुल, कुछ एथलेटिक्स के जो कल मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। अगर बात करें तो अनु राघवन और विथ्या रामराज 400 मीटर हर्डल्स में जहां उतरेंगे, वहीं संतोष कुमार लालिमसान 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में उतरेंगे। वहीं अविनाश साबले, इसके अलावा बात करें तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में पदक के लिए उतरेंगे। वहीं मुरली शिवशंकर और डेविड सुलेमन वो भी उतरेंगे पुरुष लॉन्ग जंप में, जबकि यूनुष शाह और गुलवीर सिंह उतरेंगे 1500 मीटर के फाइनल में। वहीं अगर बात करें यशवीर सिंह और रोहित यादव पुरुषों की जेवलिन थ्रो में उतरेंगे, जबकि बात करें गौतम जयराम महिलाओं के 400 मीटर राउंड एक में उतरेंगे, जबकि पूजा महिलाओं के 800 मीटर। वहीं सीमा और पारुल चौधरी भारत के लिए उतरेंगी 5000 मीटर फाइनल मुकाबले में, और यहीं पर भारत 4x400 मीटर रिले के राउंड मुकाबले खेलता हुआ नजर आएगा। यानी कल भी भारत की झोली में पदकों की संख्या बढ़ने वाली है।
1: Moving to boxing, there are some highly anticipated quarterfinals on the cards. In the women's 75 kg quarterfinal, Lovlina will face Korea's opponent. In the women's 60 kg quarterfinal, Priya will take on Tajikistan. While men's 90 kg quarterfinal, Kapil will face Korea's opponent. And then there will be cricket as well, with India taking on Afghanistan in men's quarterfinal number 2. In hockey, men's team pool A against Bangladesh.
0: जी बिल्कुल, कल देखेंगे किस तरह से भारत आगे बढ़ता लगता है, लेकिन फिलहाल भारत के पदकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खैर ये बताते हुए कि कल सुबह ठीक 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आज रात 10 बजे

0: इस कार्यक्रम सुनना मत न भूलिएगा, जो ओलंपिक जो भारत खेल रहा है, जिस तरह से एशियन गेम्स में प्रदर्शन कर रहा है, उस पर विशेष रिपोर्ट आप 10 बजे सुन सकते हैं आज रात में। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: Hey, welcome back, guys, to the show that's called Live Wire. Well, you were listening to the updates of the Asian Games 2026 just a while back. But now, we're back in the show, and time is 2 o'clock. It says it's 36 minutes past 7 p.m. Time for me to play another track, which I've already queued up out there for you. This one is going to be welcoming you all back again with arms wide open, and this one is by Creed.

0: right, that is Creed out there for you. Time of the 2 o'clock. It's 40 minutes past 7 p.m. You know what? I am taking another short and sweet break, but do not, and I repeat that, do not touch it. I'll be right back after these messages. Break time!
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर।
1: म्यूजिक
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं।

जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: अगली स्टाइल गया है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आपकी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 और शो शुरू हो चुका है म्यूजिक मस्ती, जहां पर हम लगातार रहेंगे साथ और प्ले करेंगे कुछ बेहतरीन म्यूजिकल ट्रैक और साथ में कोशिश करेंगे पूरी मस्ती करने की, आज संडे की शाम को और भी बेहतरीन बनाने की। तो शुरू करते हैं और फिर वापस आते हैं और करेंगे ढेर सारी मस्ती।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी

0: चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, शो चल रहा है म्यूजिक मस्ती, बैक टू बैक म्यूजिकल ट्रैक्स ओनली फॉर म्यूजिक मस्ती। आज की म्यूजिक मस्ती का आखिरी ट्रैक सिर्फ आपके लिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एंटरटेनिंग म्यूजिकल शो में दोबारा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
2: नमस्कार, द आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट हमारी वो सीरीज है जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तित्वों से करवाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, हम सबके लिए रोल मॉडल भी हैं और उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट श्रीमती कुलजीत कौर जी, उनका करते हैं बहुत बहुत स्वागत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम
3: बहुत
2: में।
3: बहुत शुक्रिया तपस्या, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे लफ्ज मेरे लिए बोलने के लिए।
2: नहीं नहीं मैम, सच में आप, मुझे मालूम है जब मेरी आपसे बातचीत शुरू हुई तो इतना कुछ आपके बारे में बात करने के लिए है, जो आपकी लाइफ जर्नी है, जो आपका सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर चाहे वो बतौर टीचर लेक्चरर हो और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और फिर प्रेसिडेंट के रूप में, तो बहुत सी बातें आपसे करनी है। लेकिन शुरुआत अगर मैम हम इस तरह से करें कि फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, मोटे तौर पर क्या कहेंगे सबसे पहले?
3: देखो, औरतों की जो हालत, पार्टीशन से अगर स्टार्ट

0: करें और आज के दिन में हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क है। इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है सोशल एटीट्यूड में औरतों की तरफ, जैसे हम देखते हैं कि देख के आदमी हैरान रह जाता है। हर एक सरकार ने जो है औरतों को एम्पावर करने के लिए बहुत काम किए हैं, बड़े रूल्स भी पास किए हैं, लेकिन अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है इन्होंने इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, जिसके कारण इनका इम्पैक्ट औरतों के ऊपर बहुत है और समाज के ऊपर भी बहुत है।
1: जी, ये बहुत अच्छी बात आपने मैम बोली कि कॉमन मासेस में जब खास तौर से औरतों की हम बात करते हैं तो एक होता है कि जो हमारे गांव में रूरल एरियाज में जो महिलाएं हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ इस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स का आना वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, हमें याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बात न केवल कही थी मैम, ये भी कहा था कि कोई प्रधानमंत्री शायद ऐसा हुआ नहीं होगा जो यहां से टॉयलेट की बात करेगा,
0: बिल्कुल
1: शौच की बात करेगा, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट इशू था मैम, क्या कहेंगे आप?
0: नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप था जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश के लिए लिया, और वाकई उनकी बात से बिल्कुल ठीक थी कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी लीडर किसी कंट्री का ऐसे फोरम से खड़े होकर टॉयलेट्स की बात नहीं करेगा। पर उन्होंने ये सोचा कि जमीन पर एट द ग्रास रूट लेवल औरतों की ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। मुझे भी याद है कि पंजाब में कई बार शाम के टाइम आप देखो तो औरतें जो थी वो पर्दा करके अपना जो है टॉयलेट्स के लिए गांव में, फसलों में, फार्म हाउसेस में वहां पर आया करती थी, और कई बार इतना बुरा लगता था कि उनको घूंघट निकालने पड़ते थे, और ट्रक्स वगैरह दूर से आते थे तो ट्रक्स की लाइट उनके ऊपर जाती थी, दे यूज टू फील सो एम्बेरस्ड, उनको बहुत बुरा लगता था। तो प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को समझा और इसकी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, पूरे देश में ये अवेयरनेस क्रिएट करी कि लेडीज के लिए सेपरेट टॉयलेट होने जरूरी हैं। बनवाए भी उन्होंने, पर ये जो अवेयरनेस आ गई, लोगों को ये फीलिंग हुई कि औरतों की इज्जत के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए टॉयलेट्स होने बहुत जरूरी हैं। आप आज देखिए, हर गांव में देखिए, हर शहर में देखिए, जगह जगह औरतों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बने हैं, जिससे औरतों को, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, जिससे औरतों को बहुत कंफर्टेबल भी फील करता है और वो सोचती हैं कि उनकी रिस्पेक्ट के बारे में, इज्जत के बारे में इतने ऊपर लेवल से, प्रधानमंत्री के लेवल से किसी ने उसके बारे में सोचा है। तो इसके लिए औरतें काफी शुक्रमंद भी हैं, थैंक्स भी करती हैं।
1: जी जी मैम, सोचा भी था, उसके लिए बाकायदा फंड्स एलोकेट किए गए और हर घर में जो नए घर बने उसमें भी ये सुनिश्चित किया गया कि सबके लिए अलग से टॉयलेट जरूरी है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और इट्स नॉट ओनली अबाउट मैम टॉयलेट एंड सैनिटेशन, उसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते थे महिलाओं के साथ में दिन ढलने के बाद में, उसमें भी बहुत रिलीफ मिला है और बहुत महिलाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत आशीर्वाद और दुआएं भी दी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से किया है, क्योंकि ये औरतों के बारे में जैसे मैंने कहा कि इतने सालों से, 70 सालों से किसी ने नहीं सोचा, ये खाली उसकी हेल्थ की सेफ्टी नहीं थी, ये औरत की एम्पावरमेंट थी, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी, वो सबके लिए बहुत जरूरी था कि औरत जो पर्दा चाहती है वो अपने प्राइवेसी है, क्योंकि हर एक इंसान की प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉयलेट्स इंट्रोड्यूस करने से, उसके लिए स्पेशल फंडिंग करने और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि घरों में औरतों के लिए टॉयलेट्स होने बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस के साथ लोगों में बहुत बदलाव आया, जिससे औरतों की डिग्निटी जो है उनको मिली, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिली, सोशली ऑल्सो लोगों को ये फीलिंग हुई कि औरत की इज्जत भी, प्राइवेसी भी है, जिसकी हमें इज्जत करनी है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने औरतों के लिए, यंग गर्ल्स के लिए। और उससे क्या होता था कि जब यंग गर्ल्स रात के टाइम, शाम के टाइम वो अपने आप को रिलीव करने के लिए जाया करती थी खेतों में, तो कई बार जो है वो फिजिकल असॉल्ट भी हो जाते थे, रेप केसेस भी हो जाया करते थे, अंधेरे में कुछ समझ नहीं आती थी, पर इस उस स्टेप से औरत की डिग्निटी तो हुई, प्राइवेसी भी हुई, औरत की सिक्योरिटी भी हुई इसके कारण।
1: जी,
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: मैम मेंटल अगर आप पीस की बात करें तो कितना रिलैक्सेशन है कि अब आपको जंगल में नहीं जाना, जहाँ पे स्नेक्स निकल आते थे, बहुत सारे एनिमल्स आसपास होते थे खेतों में और नाउल। इसमें हम थोड़ा सा इसको और हम और आगे लेके चलें तो सैनिटरी पैड्स को लेके भी कभी भी स्कूल्स में बच्चियां जो है घर में अपने पेरेंट्स स्पेशली मदर के साथ भी ओपन अप नहीं हो पाती थी, बट जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, स्कूल्स में अवेलेबल होने लगे सब चीजें, तो उनको उसकी यूटिलिटी क्या है, यूजेज क्या है, वो भी समझ में आया और उनकी अपनी हाइजीन को लेकर बहुत चेंजेस उसमें आए। तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन की जब हम बात करते हैं और युवा भारत की बात करते हैं, उसमें 50% अगर हम देखें तो जो गर्ल चाइल्ड की बात होती है, तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप उसमें अगर हम देखें तो।
0: तपस्या जी, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि इसकी जो रिपरकशन, इसका इफेक्ट लड़कियों की जिंदगी पर बहुत पड़ता था। जैसे ही उनके पीरियड्स आने शुरू होते थे, महीने आने शुरू होते थे, तो लड़कियों का स्कूल जाना बंद कर दिया जाता था। ये दोनों कनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि अब लड़कियों के सेपरेट टॉयलेट हुए, अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनको पीरियड्स आते हैं, तो उस टाइम भी वो प्राइवेटली जाके अपने आप की जो सफाई है बॉडी की, उसको मेंटेन कर सकती हैं। दूसरा, ये जो उनको सैनिटरी पैड्स मिलने शुरू हो गए, उससे उनको बड़ा कंफर्ट हो गया। पहले क्या था कि सैनिटरी पैड्स इतनी ओपनली ना तो बाजार में मिलते थे, ना कोई इसकी बात करता था। ये चीज लड़कियां जब भी थोड़ी सी इस हालात में, इस सिचुएशन में आती थी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो लड़कियों को ऐसे लगता था कि जैसे कोई वो पाप कर रही है, कोई बुरा कार्य करें, तो ये सारी कदमों से उनको बड़ा कंफर्ट फील हुआ है कि ये नेचुरल डेवलपमेंट है। जब लड़कियां एडोलेसेंट होती हैं, बड़ी होती हैं, युवा होती हैं, तो पीरियड्स आने ये नेचुरल है, उसको संभालने के लिए उनको सैनिटरी पैड्स की जरूरत है। अभी बच्चियों को स्कूल में भी सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं और उसकी वेंडिंग मशीन्स भी आ रही हैं। मैं किसी मेंबर पार्लियामेंट उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे उन्होंने लड़कियों के लिए जगह जगह वेंडिंग मशीन्स, उन्होंने छोटे छोटे जो सड़कों पर ढाबे हैं वहां पर भी वेंडिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस करी हैं, ताकि लड़कियां आराम से जाके बाजार में अगर वो हिचकिचाती हैं सैनिटरी पैड्स के लिए या वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वेंडिंग मशीन से जाके वो सैनिटरी पैड्स ले सकती हैं। अब उसके ऊपर खुल के भी बात होती है। हम भी जब ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं, लड़कियों के साथ बात करते हैं, एडोलेसेंट प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें भी हम उनको खुल के फिर बताते हैं, लड़कियां इसके बारे में झिझकती नहीं है, सवाल भी पूछती हैं और कंफर्टेबल भी फील करती हैं। तो ये बड़े ही अच्छे स्टेप हैं औरत को एम्पावर करने के लिए और औरत की डिग्निटी के लिए। इससे औरतों की जो इज्जत है वो समाज में क्या उनकी अपनी नजरों में भी बढ़ती है। अब ये दोनों कनेक्टेड स्टेप हो गए, टॉयलेट भी हो गया, सैनिटरी पैड्स भी हो गए, प्राइवेसी हो गई, डिग्निटी भी हो गई। अब उनको ये हम समझाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जब उन्होंने मदर्स बननी है, बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो। तो इससे लड़कियों की नॉलेज भी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और इज्जत बढ़ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज
1: जी। और मैम वो वोकल हो गए हैं सब लोग, तो हम जो बात कर रहे हैं जैसे आपने अभी कहा भी, फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ अगर हम मेन फोक की बात करें तो उनका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन या थोड़ा सा एक ईजी चीजें हो रही है डिस्कस करने के लिहाज से, ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि ऐसे होता है जो बात आप खुल के करोगे तो वो कॉमन कम्युनिकेशन में आ जाती है। जिस बात को आप कितना छिपाते हो, उतनी बात के लिए आपको लगता है पता है ये गलत बात है, इसको नहीं बोलना। अब ओपनली बोलने लग गए हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में, सैनिटरी पैड्स के बारे में, तो ऐसे लगता है कि ये नेचुरल डेवलपमेंट बॉडी में है।
1: मैम स्कीम्स की बात चल निकली है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसमें अभी आपने बात की कि स्कूल्स में बच्चों को अवेलेबल हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह भी है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, हमारे आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, बहुत जगहों से फिल्म्स भी बन रही है, आपने खुद कहा। इसमें मैम खासतौर से बेटियों की पढ़ाई की जब बात आती है तो ये कड़ियां कहीं जुड़ती हैं जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करते हैं।
0: मैंने आपको ये बोला ना कि जब भी बच्चों को, लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती थी तो लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती थी। आप अगर अपना पुराना निकाल के देखिए जो आपका डाटा है, तो आपको उससे पता चलेगा कि ज्यादा लड़कियां जो है वो सातवीं छठवीं क्लास तक पढ़ती थी। जैसे मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती थी, मां बाप उनको घर बिठा लेते थे। तो अब जो है उनको जब भी अवेयरनेस हो गई है, सोसाइटी उसमें ओपनली बात करती है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, फैसिलिटीज उनको मिल रही है उसके लिए, तो वो ओपनली जो है वो स्कूल में एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकती हैं और आगे अपनी पढ़ाई भी आगे। ये बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक अब सबको पता है, नेचुरल प्रोसेस है और उसके लिए स्कूल वाले भी हेल्प कर रहे हैं और उसकी सोल्यूशन जो है ऑटोमेटिकली निकल के आ गई है। जगह जगह जैसे मैंने कहा वेंडिंग मशीन्स भी लग गई हैं
1: जी। इसमें थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी, बताएं कि ये जो माइंडसेट की प्रॉब्लम थी, ये तो वो एंगल तो हुआ, लेकिन इसमें अब लड़कियां पढ़ रही हैं, अच्छी एजुकेशन लेके सेल्फ डिपेंडेंट बन रही हैं, करियर बना रही हैं अच्छे से, तो पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सिर्फ बेटे हमारा सहारा नहीं, बेटियां भी हमारा सहारा। سہارا ہو سکتی ہیں. تو جو پہلے بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا تھا یا پیدا ہونے کے ساتھ ہی, اس میں بھی جو پرسپشن ہے, مائنڈ سیٹ ہے, آپ کو لگتا ہے اس میں بھی چینج آیا ہے؟
0: بہت زیادہ چینج آیا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر آج سے 50 سال پہلے کی آپ بات کریں اور

0: आज की बात करें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हरियाणा में हमने एक विलेज को अडॉप्ट किया। वहां की औरतें जब भी पहली दफा हम लोग गए तो उन्होंने इतने लंबे लंबे घूंघट निकाले हुए थे, लेकिन हम लोगों ने जाकर उनके साथ जब मिंगलिंग करी, उनको कॉन्फिडेंस दिया, तो एक साल के बाद जब भी हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई तो उन लेडीज ने स्टेज पे डांस किया।
1: क्या बात है।
0: सो इससे मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि औरतों में कितनी एम्पावरमेंट आ गई है। वो इसलिए आ गई है क्योंकि पॉलिटिकली गवर्नमेंट का भी उनको बहुत सहारा है, बड़ी सपोर्ट है, नई नई स्कीम्स बन रही हैं जिससे उनको पता चलता है कि हमारे लिए सरकार कितना काम कर रही है। वो औरतों को बहुत कॉन्फिडेंस देती है और उसके कारण लड़कियों की एजुकेशन फर्दर डेवलपमेंट भी बहुत हो रही है। अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग थी चेन्नई में, तो वहां पर गवर्नर मिस्टर रवि आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि वो आईआईटी में गए वहां पर सेरेमनी के लिए, तो फ्रंट रो में सब लड़कियां बैठी हुई थी, देवर गोल्ड मेडलिस्ट। सो हमें इतनी खुशी हुई कि लड़कियां देखो कितना आगे बढ़ रही हैं। और पेरेंट्स का आगे जो होता था एकदम माइंड सेट के लड़की पैदा हुई तो दुखी हो गए, बहू को घर से निकाल दिया। अब ऐसा नहीं है, अब पेरेंट्स को ये प्राइड फील होता है कि मेरी लड़की कितनी लायक है, मेरी लड़की कितना अचीव कर रही है। इसलिए जो वो माइंड सेट था जो जेंट्स का, पेरेंट्स का, इन लॉज का, उसमें बहुत बड़ी चेंज आई है, जिसका जो मैं कहती हूं कि श्रेय सरकार को भी जाता है। एक तो ओपनली उन्होंने इसके बारे में बात करनी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये स्कीम स्टार्ट करी, लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट कर दिए, स्कॉलरशिप्स करे, फ्री यूनिफॉर्म्स करी, फ्री बुक्स करी, तो पेरेंट्स के ऊपर अब कोई भी वैसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। और लड़कियां जितनी पढ़ाई, देखो स्टैंड में कितने परसेंट इन्होंने सीट्स लड़कियों के लिए बढ़ा दी, तो लड़कियां कैसे आगे बढ़ रही हैं, पायलट्स बन रही हैं, अब तो आर्मी में भी लड़कियों की जो
1: वो
0: कर दी है इतने। अब रिसेंटली एक फ्लाइट चली जिसमें सारी लड़कियां ही पायलट थी और वो अड्डी पर थी, तो दैट शोज के कितनी चेंज आ चुकी है, लड़कियों में कितनी एम्पावरमेंट हो गई है। एंड दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट कि हम आदमियों से किसी तरह से भी कम नहीं है। तो चेंज तो बहुत है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि जो हमने जो देखा अपने टाइम और अब जो चेंज है एजुकेशन में भी, अब लड़कियों को और कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वी आर अनवांटेड, अब ऐसा नहीं है। अब तो पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हमारी ओल्ड एज में हमारी लड़कियां जो है वो हमें लुक आफ्टर कर सकती है। अब हमारा एक केस था, उससे मैं किसी से बात कर रही थी, शी इज द ओनली डॉटर। उसने कहा कि मेरी शादी की ये कंडीशन थी कि आई विल लुक आफ्टर माय हस्बैंड्स पेरेंट्स एंड ही शुड लुक आफ्टर माय पेरेंट्स। तो कहने लगी एक घर में ग्राउंड फ्लोर पे मेरे इनलॉज हैं, फर्स्ट फ्लोर में मेरे पेरेंट्स हैं, और इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, इतनी अच्छी एडजस्टमेंट है, पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट करा और इनलॉज ने भी करा कि डॉटर का भी फर्ज है अपने पेरेंट्स की केयर करना। सो इसलिए सोशल चेंज तो बहुत अच्छे से आ रही है जो कि लड़कियों के फेवर में, सोसाइटी के फेवर में आ रही है, और हम इसको वेलकम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इस बात।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: जी आप बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की मैम, तो अवेयरनेस भी आ रही है, लड़कियां अप्रूव भी कर रही हैं और चीजें सब एस्टेब्लिश भी हो रही हैं सोसाइटी में। इसमें अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम देखें तो बहुत सारी और स्कीम्स भी हैं। मैं फिर से एक बार अगर बात करती हूँ ग्रामीण जो महिलाएं रूरल एरियाज में जो है, तो उसमें उज्ज्वला योजना मैम, फिर मैं कहूँ की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोची वो शायद ही किसी ने सोची होगी, धुएं से उनको कितनी दिक्कत होती है और कितनी उनको चूल्हा जलाने से पहले तैयारी करनी पड़ती है और मुश्किल होती थी। क्या कहेंगे मैम इसमें?
0: जो भी स्कीम सब आपने टॉयलेट से स्टार्ट करा आपने, उसके बाद ने ये फ्री पैड्स की बात करी, सारी चीज जो है औरत की अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जाती है। जब भी वो कोयला जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, वो जो सारा धुआं उनके अंदर जाता था, तो मोस्ट ऑफ द वुमेन वो सफर करती थी अस्थमा की उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि लकड़ी जलाने का वो सारा धुआं उनके अंदर जाता था जो उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट करता था। अब ये जो सारी स्कीम्स अगर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो औरत की जहां डिग्निटी भी हुई, औरत जो है वहां इंडिपेंडेंट भी हुई। अब देखो उज्ज्वला में गैस आ गई तो औरत किचन में से कितना फ्री टाइम उसको मिलता है, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट हर एक स्टेप का इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पर कितना हो रहा है। अगर आपकी लड़कियां हेल्दी होंगी, अगर आपकी विमेन हेल्दी

0: फ्यूचर जनरेशन ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी।
1: जी
0: तो ये बहुत ही ज्यादा गहरी सोच का रिजल्ट है कि औरतों को इतना एम्पावर कर दिया गया, औरतों की पोजीशन इतनी ज्यादा इम्प्रूव कर दी गई, तभी तो लड़कियां आज इतने कॉन्फिडेंस से चलती हैं, कॉन्फिडेंस से पढ़ती हैं, काम करती हैं। एवरीवेयर यू कैन सी द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो हमें देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो कितने सेफ हैंड्स में है। उसके बावजूद भी सरकार ने इतनी स्कीम्स और भी चलाई हैं औरतों को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए भी, और आप अगर उसके बारे में भी कुछ जानना चाहें तो मैं उसके बारे में भी आपको
1: बिल्कुल मैम
0: बता सकती हूँ।
1: फाइनेंशियली एम्पावर होने की बात की है तो एक मैम माँ होना हमेशा से हमारे यहाँ कहा जाता है कि सौभाग्य की बात है, कि वो ईश्वर का दूसरा रूप हो जाती है माँ जब बन जाती है तो। लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें ये होती थी कि मेटर्निटी लीव लेंगी और वो उसमें फिर घर बैठना होगा, फिर वो एक कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि आप घर में हैं और आपको कुछ और फाइनेंशियल हेल्प नहीं है। लेकिन ये जो पेड मैटरनिटी का जो कॉन्सेप्ट आया मैम, इसने बहुत हेल्प किया
0: बहुत ज्यादा। मैंने आपको ये कहा कि जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वुमेन को पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अपने मद्देनजर रख के सरकार बना रही है, औरतों को बहुत फायदा हो रहा है उससे। अभी आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करी, अब जो नई चीज जो मेरे को बड़ी इम्पैक्ट करी दैट इज द ड्रोन दीदी
1: जी।
0: आप इमेजिन कर सकते थे कि औरतें जो है वो ड्रोन्स बनाएंगी, ड्रोन्स चलाएंगी अपनी एग्रीकल्चर, अपने फार्म हाउसेस की और सब चीजों की, वो वहां पर जो है वो उसके स्क्रूटनाइज कर सकती हैं, सुपरवाइज कर सकती हैं ड्रोन के जरिए। ये इतनी एम्पावरमेंट है कि आपने जो आम, जैसे आप गांव की औरतों की बात कर रही हैं, उनको आपने आकाश में उड़ा दिया है। तो ड्रोन्स के साथ जो ड्रोन दीदी स्कीम है, सब स्कीम्स भी बहुत अच्छी हैं, ये स्कीम जो है ये तो बड़ी रेवोल्यूशनरी स्कीम है। बाकी सबसे बड़ी जो चेंज आई है मैं ये सोचती हूँ, स्कीम तो पहले भी कुछ कुछ हुआ करती थी पर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अब ये हो गया है कि सरकार ने उसके स्टेप्स बना लिए हैं। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट उनको देते हैं तो खाली पैसा ही नहीं देते, उसके बाद सरकार सोचती है कि अगर हमने फाइनेंशियल हेल्प करी है तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोले हैं। जनधन जो आपकी वो स्कीम है उसमें जीरो से भी आप अकाउंट खोल सकते हो डायरेक्टली, देयर इज नो मिडल मैन। आपका पैसा जो गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, वो डायरेक्ट आपका पैसा बैंक में आता है और देयर इज नो मिडल मैन। आप सीधा जाके बैंक से निकलवाइए। एक तो औरत जब बैंक में जाके विड्रॉ करती है, उसके हाथ में जब पैसा आता है, आई नो कि वो क्या फीलिंग होती है। जब मैं जॉब करती थी तभी तो चेक्स वगैरह नहीं, कैश ही मिला करता था। जब वो आके कैशियर हाथ में कैश पकड़ाते थे तो आपको इतनी एलिवेशन की फीलिंग होती है, आप इतना एम्पावर फील करते हो कि ये पैसा मेरा है, मेरा हक है इसके ऊपर, मुझे किसी ने ये दान नहीं दिया। पहले ये होता था कि उस टाइम में औरत की स्लेवली इसलिए भी थी कि हर चीज के लिए वो आदमी पर डिपेंडेंट थी। उसको 10 रुपए भी चाहिए तो आदमी का आगे हाथ फैलाती थी, कई बार वो हिचकिचा जाती थी, हेजिटेंट हो जाती थी कि मैं हर वक्त आदमी से क्यों मांगू। अभी ये जो बैंक का हो गया, उसका इंडिपेंडेंट, उसके अकाउंट हो गए, उसके नाम पे पैसे जमा है, उसको पैसा डायरेक्टली मिल रहा है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकती है और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके लिए स्किल ट्रेनिंग का रखा है। स्किल ट्रेनिंग के बाद ये नहीं कि आपको पैसा दे दिया, ट्रेनिंग दे दी, फिर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, सारी डिजिटाइजेशन हो रही है कि आप क्या कर रहे हो और कहां कहां आपको हेल्प की जरूरत है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। और ये जो मॉनिटरिंग हो रही है उससे जो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है ना, अगर हमने आपको पैसा दिया, आप लोगों को नहीं दे रहे, लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो आपका उसी में आ जाएगा जब आपकी वहां पर रिपोर्ट डिजिटाइजेशन में आएगी, क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है सब, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कहां कहां फेलियर है। सो ये स्कीम्स की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डिजिटाइजेशन है, मॉनिटरिंग हो रही है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। तो बहुत थॉटफुली, बड़ी इंटेलिजेंटली ये सारी स्कीम्स बनाई हैं जो कि औरतों की पोजीशन को बहुत ही ऊपर कर रही हैं, उनकी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर रही हैं, लड़कियों को एजुकेटेड कर रही हैं, लड़कियों को एम्पावर कर रही हैं और ये सोसाइटी में अवेयरनेस आती है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। पूरा जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ज्यादा अकाउंटेबल हो रहा है। आपने जो अभी ड्रोन दीदी की बात की मैम, उसमें हम इमेजिन करके बहुत अच्छा लगता है कि गांव की एक लड़की या महिला वो ये फील करती है कि अब मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ गई हूँ, मैं मॉडर्न टाइम्स में हूँ। तो पहले तो बस चौका चूल्हा करो यही बोल के उनको चुप करा दिया जाता था,
0: बड़ी हद है, थोड़े बहुत मतलब टीचिंग टीचर्स ट्रेनिंग करा, एवेन्यू सारे ओपन हो गए हैं। जैसे मैंने कहा पायलट्स भी हैं, इंडिपेंडेंट सब लेडीज पायलट

0: प्राइवेट की फ्लाइट हुई, आर्मी में देखो जा रही है, वहां पर उनकी प्रमोशंस का वही हाल है जो मतलब जो बाकी जेंट्स का है। नहीं तो पहले था कि औरतें एक पोजीशन के बाद जो है उनकी प्रमोशंस नहीं हो सकती, खाली डॉक्टर्स ही थी, पर अब ऐसी वो सारी जो चीजें बंदिशें खत्म कर दी। ऐसे लगता है मेरे को, कहीं पर ऐसा लगता है कि औरत आजाद होकर पंछी की तरह उड़ना शुरू हो गई आकाश में, इतनी ज्यादा फ्रीडम आ रही है। और चारों तरफ आप देखते हो औरतें, इवन जब 26 जनवरी को इस पर देखा ना कि ओनली विमेन की जो ब्रिगेड जा रही थी, कितनी खुशी होती है कि इस मुल्क में औरतें कितनी एम्पावर हैं, कितनी कॉन्फिडेंट हो रही हैं और कितनी खुशी फैल। औरत अगर पढ़ी लिखी है, यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट द होल फैमिली, यू एम्पावर अ वुमेन यू एम्पावर द होल फैमिली। सो ये मुद्दा बहुत अच्छा है। पहले हम खाली आदमी पर कंसंट्रेट करते थे, लड़कों की एजुकेशन, लड़कों की एम्पावरमेंट, लड़कों का करियर, अब वो चीज शिफ्ट होकर लड़कियों पर भी आ गई है, जिससे समाज का, फैमिली का, क्या पूरे देश का सुधार हम देख भी रहे हैं कि लड़कियां कितनी कॉन्फिडेंस से मूव करती हैं, इंडिपेंडेंटली मूव। कल मैं पठानकोट से आ रही थी तो मैंने एयरपोर्ट पे लड़कियों को देखा, 6 लड़कियां वहां खड़ी थी, तो देखने में दे वर लुकिंग सो गुड एंड सो कॉन्फिडेंट। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप स्पोर्ट्स के लिए आए थे? दे सेड नहीं मैडम, हम BSF हमने ज्वाइन करा हम ट्रेनिंग से। आई फील सो गुड। मैंने उनको बिल्कुल आशीर्वाद दिया, मैंने कहा मेरे को इतना अच्छा लगा कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जा रही हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ आई हैं। सो दीज आर द स्टेप्स वो हमको भी इतनी फीलिंग ऑफ एलिवेशन देते हैं, क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा है जहां औरतें पर्दे से बाहर नहीं निकल सकती थी, लड़कियों की एजुकेशन नहीं थी, लड़की पैदा होती थी तो घर में मातम छा जाता था कि लड़की आ गई और दहेज के कारण। अभी डॉरी के लिए भी गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं इसके खिलाफ। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे धीरे क्या, मैं तो कहती हूँ काफी कुछ हो गया है और आगे भी होता जाएगा। एक बार औरत ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो पूरा देश ही आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, बहुत अच्छा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, आप एक एक गाड़ी के पीछे देखो, एक एक ट्रक के पीछे, सो दिस मींस दैट मैसेज इज गोइंग टू द विलेजेस, मतलब नीचे तक वो जो है मैसेज जा रहा है कि बेटी के खिलाफ नहीं बोलना है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और बेटी को एम्पावर करना है। तो दिस इज वेरी गुड मैसेज, बहुत अच्छा।
1: आपने अभी हरियाणा का जिक्र किया, तो मैम बहुत से स्टेट्स में हमने देखा कि जो पैट्रियार्कल सेटअप है, जो एक सिस्टम हमेशा से रहा है, उसमें अभी भी कुछ फादर्स हैं या घर के जो पुरुष हैं उनको थोड़ा सा कहीं एक डाउट रहता है या वो एक तरह का स्टिग्मा अभी भी है। तो वहां पे हमने देखा है कि जो माएं हैं बहनें वो आगे आती हैं उनको डिफेंड करने के लिए कि नहीं हम पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे और करियर में इनको अपनी तरह से ऑप्ट करने देंगे, फ्रीडम देंगे, तो ये भी एक माइंडसेट में चेंज जो हम देख रहे हैं।
0: बहुत चेंज है।
1: आपने जनधन की बात की तो बड़ी क्यूट चीजें जानने सुनने को मैं मिलती रही कि वो महिलाएं जो घर में चावल के डिब्बे में पहले या छुपा छुपा के पैसे रखती थी, अब दे हैव देयर ओन अकाउंट्स और वहां जाके अपनी तरह से एक्सेस कर सकती हैं, और वो फिगर्स देख के जो हमें एक फील आता है उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि और सेविंग करनी है।
0: बिल्कुल नहीं, दूसरा मनी को हैंडल करना,
1: हाँ जी,
0: दैट इटसेल्फ गिव्स यू सो मच पावर नो कि मैं पैसे को हैंडल कर सकती हूँ, ये पैसा मेरा है
1: जी।
0: ये साइकोलॉजी है ना, ये शायद लोगों के लिए समझनी मुश्किल होगी, पर हम लेडीज को ये पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। औरतें कितने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती हैं, एम्पावर्ड फील करती हैं, क्योंकि उसके हाथ में पैसा है और उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। अल्टीमेटली वही जब मैंने जैसा से स्टार्ट करा था, इट अगेन टॉक्स अबाउट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। औरत को आपने इतनी इज्जत दे दी है कि वो हाथ नहीं फैला रही है, वो खुद कमा रही है, वो छोटे छोटे जो अपने काम भी करती है उससे भी, और अगर वो गवर्नमेंट जॉब करती है, जैसे आपने पहले भी कहा मैटर्निटी लीव इंक्लूड कर दी इतनी ज्यादा, उसके बाद पेटर्निटी भी कर दी, तो इसलिए औरतों को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, फैमिली में भी लाइफ में वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सेटल हो सकती हैं। पहले वो अच्छे से एजुकेशन लेंगी, एजुकेशन लेने में भी उनको कोई भी फिजिकल जो रुकावट है वो नहीं आती, क्योंकि सब कंफर्ट मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है, पेरेंट्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। उसके बाद पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और जिंदगी के सारे एवेन्यू ओपन है उनके लिए। अभी आप देखो पेपर में तकरीबन रोज ये खबर आएगी कि एक मजदूर है उसकी लड़की ने मेडिसिन ज्वाइन करी, उसकी लड़की ने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी। अभी कल मैं पढ़ रही थी कि एक वो डेली लेबरर थे, उनकी बेटी जो है स्पोर्ट्स में कहां आगे बढ़ गई है। सो ये बड़ी खुशी की बात है, इसमें पेरेंट्स का भी रोल बहुत ज्यादा है। अब लड़की को ब्लेसिंग समझा जाता है, ये बेटी मेरी केयर करेगी। आगे ये होता था कि पेरेंट्स इसके लड़का चाहिए कि लड़के पेरेंट्स की डेथ होगी तो उनको लास्ट राइट्स कौन करेगा। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसकी 3

0: बेटी हैं, उसके हस्बैंड की डेथ हुई, उसकी बेटियों ने लास्ट राइट्स करे,
1: जी
0: कोई दिमाग में आया ही नहीं कि बेटा नहीं है कौन करेगा, बिल्कुल नहीं। सो ये जो सोशली माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात।
1: अब बहुत देर से मैम बहुत हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, तो अब ये पैसे की बात चली है, तो लखपति दीदी सुनने में बड़ा कैची लगता है अपने आप में, तो इसका अभी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है और भारत सरकार को जाता है, वर्तमान सरकार को। तो लखपति दीदी कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: हाँ, लखपति दीदी डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट की बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दिमाग में दो बातें हैं कि औरत को डिग्निटी दो और उसको फ्रीडम दो और उसको कॉन्फिडेंस दो और उसको एम्पावर करो। ये जो लखपति दीदी, इसका भी यही है, क्योंकि ये काफी पुराना से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो चलते आ रहे हैं, औरतों के ग्रुप बन जाते हैं, वो पैसे कंट्रीब्यूट करती हैं, उसके बाद वो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करती हैं। अब इन्होंने बजाय कि औरतें अपनी किट्टी से 10 रुपए दें, 20 रुपए दें, तो इन्होंने ये स्कीम बनाई है कि औरतों को वो गवर्नमेंट जो है 10,000 तक देगी, उससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो नए नए अपने बिजनेस चलाएंगी, नई नई चीजें बनाएंगी, क्राफ्ट की बनाएंगी। जैसे हमारी औरतें हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कैपेबल है, उनमें आर्ट बहुत है। अब देखो ये जो पाम ट्रीज होते हैं, उनके लीव से वो इतनी अच्छी टेबल मैट्स बनाती हैं, कोस्टर्स बनाती हैं। तो लेकिन पैसा कहाँ से आए, कहाँ से कलेक्ट करें, कैसे करें? तो ये जो पैसा सारा आएगा, जैसे मैंने आपको विलेज की बात करी, उस औरत ने मुझे बताया, कल मैं उसको मिली थी, वो कहती है कि मैडम हमारे गांव में बोली लगी जमीन के लिए, हम लोगों ने लखपति दीदी से जमीन खरीद के उसको जो है अब उसके ऊपर खेती करेंगे और वो जो खेती का पैसा आएगा वो हम सब बांटेंगे और उसके साथ देखो कितने एम्पावरमेंट होएगी। तो ये जो इनिशियली औरतों को ये प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं है और मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मैं अपना क्राफ्ट कैसे स्टार्ट करूं, वो बंधन, वो रुकावट, वो चीज अब खत्म हो गई है। जब दिवाली आ रही है उसके लिए वो दिए बनाएंगी, कैंडल्स बनाएंगी और देखना लाखों में उसकी सेल हो गई। लखपति दीदी का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होने वाला है लेटर ऑन इन द लॉन्ग रन।
1: दैट्स रियली नाइस मैम। हम मैम देखते हैं कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को केटर करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, स्पेसिफिक स्कीम्स हैं। ट्रिपल तलाक एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा रहा हमेशा ही, जिसपे बात करने से भी लोग बचते थे, मतलब एक तरह से कि उसको टच नहीं करना है, इट वॉज अ काइंड ऑफ टबू एंड दिस थिंग। अभी हमने देखा कि उस पर तो बाकायदा ना सिर्फ बात हुई बल्कि सोल्यूशन के साथ हमारी गवर्नमेंट आई है।
0: हाँ, उन्होंने बड़ा स्ट्रांग स्टेप लिया इसके बारे में।
1: जी,
0: इसके बारे में हम लोग भी बड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि जो वाइफ है उसको कभी भी ये श्योरिटी नहीं होती कि कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो वाइफ की जो ना तो एजुकेशन है, ना सिक्योरिटी है, ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, ना फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है,
1: और अपने राइट्स के बारे में मालूम भी नहीं है,
0: मालूम
1: भी
0: नहीं, और वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी? गुस्से में आके कई बार मियां बीबी के बीच में आपस में ऊंच नीच होती है, पर वो गुस्से में अगर आके वो बोल देता है कि तलाक तलाक तलाक, तो आपका रिलेशन टूट जाता है। और उसके बावजूद जो लड़की के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जो उसको इनसिक्योरिटी है, बच्चों का क्या, बच्चे कहां पर जाएंगे, वो माँ के साथ जाएंगे, बाप के साथ? सो यू आर क्रिएटिंग ए वेरी इनसिक्योर सोसाइटी ऑल्सो। तो उसको
1: मैम आप इजाजत दें, इसमें मैं एक थोड़ा सा एंगल जोड़ने की कोशिश करूं कि अब तक समस्या ये थी कि वो अगर उसको परेशानी है भी इस चीज से, तो वो किससे बात करे, अपने मदर से बात करे, सिस्टर से बात करे, हस्बैंड से बात करे, इन लॉ से बात करे, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। अभी हम देख रहे हैं कि जब सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती है, आपको मौका देती है बोलने का, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और सोल्यूशन के साथ आते हैं। आई थिंक ये अगर हम भारत की बात करते हैं आजादी के बाद से अब तक देखें तो कभी किसी ने छेड़ने का भी प्रयास नहीं किया इस मुद्दे को, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन है।
0: सरकार का एक बहुत बोल्ड स्टेप था, उन्होंने ये कानून पास करके दिया कि ट्रिपल तलाक जो है ये ऑफिशियली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें भी औरत का वही स्टेप, वही अल्टीमेटली उसकी सिक्योरिटी, उसकी डिग्निटी, उसका कंफर्ट लाइफ में उसको बिचारी को हो गया, और आदमियों को भी थोड़ा सा ये अलर्ट हो गए कि अगर हमने कोई गलत काम किया या अपने आप को इतना एम्पावर, अपने आप पावरफुल महसूस करा और औरत को हमने ऐसे हैरेस करने की कोशिश करी, तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर बाय द साइड ऑफ द वुमेन, लॉ जो है औरतों की तरफ में ही है।
1: जी, आप लॉ की बात कर रहे हैं मैम, तो इसमें एक बात मन में और आती है, इन जनरल अगर हम देखते हैं तो उसमें नारी अदालत जो है, आई थिंक ये भी एक बड़ा स्टेप है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
0: नारी अदालत तो इतना बड़ा स्टेप है, क्योंकि औरत जो है ना नॉर्मली वो हेजिटेट करती है, एक तो कोर्ट में जाना एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, दूसरा

0: और जाके अपने जो उसकी प्रॉब्लम है वो ओपनली कई बार एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इसलिए दूसरा ये है कि नारी अदालत में तो खाली नारी के केसेस हैं, तो जैसे हम देखते हैं ना कि कोर्ट में इतने इतने केसेस इतने सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये तो लिमिटेड केस होते हैं, इसका जो सोल्यूशन भी जल्दी निकलता है और नारी जो है वहां जाके अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वहां पर जजेस भी लेडीज ही होती हैं। सो इसलिए वुमेन जो है दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ ओपनली कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या सोल्यूशन चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप जो नारी अदालत वाला भी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: वन स्टॉप सेंटर
0: जी, वो तो बहुत ही खूबसूरत चीज है
3: जी,
0: बहुत ही अच्छी चीज है। मैं कहती हूँ जिसके दिमाग से भी निकली बहुत अच्छे से निकली है। मेरे को याद है वो अरुण जेटली वो इसके बहुत ही फेवर में थे। एक बार मुझे याद है हम उनको मिलने के लिए गए थे, तो उनका आइडिया था वन स्टॉप सेंटर का, तो उनके लिए मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था आप थोड़े टाइम में देखना पूरे देश में कितने वन स्टॉप सेंटर हो जाएंगे। उसके साथ फिर औरतों को इतनी कन्वीनियंस हो गई, अगर किसी औरत के साथ कोई मिसहैप होता था, कोई असॉल्ट होता था, रेप होता था, वो शिकायत करने जाती थी, उसको पहले पुलिस थाने में जाना पड़ता था, फिर चेकअप के लिए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, फिर उसके बाद केस के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था। अब एक ही छत के नीचे जब वो जाके अपनी कंप्लेंट किसी एनजीओ के साथ या कहां करती है, वन स्टॉप सेंटर में करती है, वहीं पर ही पुलिस कभी उसका केस एफआईआर लॉन्च करती है, वहीं पर ही उसको मेडिकल भी मिल जाती है, तो वो जगह जगह उसको भटकना नहीं पड़ता। तो ये औरत के लिए उस हालत में जबकि वो बिल्कुल ही परेशानी की हालत में होती है, उस टाइम उसको ये सोल्यूशन देने, ये बहुत ही दूर तक दूरंदेशी की बात है कि वन स्टॉप सेंटर। मैं तो इसके फेवर में बहुत ज्यादा हूँ वन स्टॉप सेंटर। और उसके बाद जो इनके काम होते हैं वन स्टॉप सेंटर में, रोज दिन ये डाटा जो है भेजा जाता है हेड ऑफिस में, कितने केसेज आए, कितने केसेज जो है अपने डील करे, कितने आपके सक्सेसफुल हुए, और जो वन स्टॉप सेंटर उनकी अकाउंटेबिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस डाटा के कारण अकाउंटेबिलिटी। नहीं तो आगे क्या होता था, जैसे मैंने कहा कानून पहले भी थे पर कानून बना एंड देन यू फॉरगेट अबाउट दैट। अब ये जो अकाउंटेबिलिटी होगी ना आपकी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी उसका, क्योंकि डाटा जो है हर दिन सुबह शाम चलता है, तो उसके कारण आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत, आप क्या कर रहे हो औरतों के लिए, कितने केसेस कर रहे हो, उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। ये नहीं कि औरत आई वन स्टॉप सेंटर में या आई उसमें डिस्ट्रिक्ट होम में जिसमें शक्ति सदन हम अब नाम देते हैं, आई तो आपने बॉर्डर ही नहीं करा, नो, आपको जवाब देना पड़ता है हर दिन कि कितने केसेस आए, कितने आपने सॉल्व करे। मेरे को ये चीज इस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी लगती है जो अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो डाटा है वो तैयार होता है और वो जो ब्यूरोक्रेसी में हायर लेवल तक वो सर्कुलेट होता है। इसलिए इम्पैक्ट तभी कानून का होता है जब भी कानून की जो अकाउंटेबिलिटी हो। अगर आपने कानून बना दिया उसको भूल गए, किताबों में आपने लिख दिया हमने ये कानून बनाया लेकिन कानून की आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उस कानून का कोई फायदा नहीं है। तो इस सरकार की सबसे सराहनीय सबसे तारीफ वाली ये चीज है कि इन्होंने हर चीज का डाटा तैयार, आप गूगल में जाइए ऑन करिए कंप्यूटर, आपको हर चीज का डाटा मिल जाएगा कि कितने केसेस वन स्टॉप सेंटर में हुए, कितने केसेस जुडिशरी में गए, कितने केसेस नारी अदालत में गए, एक क्लिक करने से आपको सारे परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग विच दिस गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड।
3: जी हम डिजिटल भारत की बात बहुत आती है और अभी आपने भी जिक्र किया डिजिटाइजेशन को लेकर, हमें लगता है यूपीआई को लेकर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बात बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत में सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं कि इसका जो अभी यूज हो रहा है, और उसमें महिलाओं को जो पहले कैश कैरी करना, छुपाना और ये सब चीजें समस्याएं आती थी वो भी नहीं है कि वो फोन कैरी करती हैं और कहीं भी जाके पेमेंट कर देती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नोटिस में नहीं आ पाती लेकिन बेनिफिट इनका इतना ज्यादा है, इम्पैक्ट इतना ज्यादा है। है कि वो सबके लिए बहुत फायदे की बात है, स्पेशली वुमेन फोक की अगर हम बात करें. शी बॉक्स पोर्टल जो है उसके बारे में प्लीज अगर आप बताएं. हाँ,
0: शी बॉक्स पोर्टल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां हम औरत की सेफ्टी का घर में बात कर रहे हैं, स्कूल

0: में बात कर रहे हैं, वहां पर वर्क प्लेस में भी इसकी बात करनी बहुत जरूरी है कि औरत जो है जब वर्क प्लेस में जाती है तो वहां पर उसकी हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ, सेफ्टी के साथ एफिशिएंटली अपनी परफॉर्मेंस दे सके। तो उसके लिए हमारा 1997 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, जेएस वर्मा गाइडलाइंस, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक 2013 में पॉश एक्ट बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। पर लड़कियों का क्या होता है, कई बार उनको समझ नहीं आती वेयर टू गो, हाउ टू मेक देयर कंप्लेन, अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही, क्योंकि इफ ए वुमन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल एट वर्क प्लेस तो उसकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो शी पोर्टल जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करी थी, क्योंकि चाहे ये कंपल्सरी है, इफ यू डोंट हैव दिस आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो आपको 50,000 का फाइन होता है। तो लेकिन कई जगह ऐसे है, फिर भी कई छोटी छोटी कंपनीज या कई छोटी छोटी ऐसी है जहां पर उन्होंने ये आईसीसी नहीं इंट्रोड्यूस करी थी। हालांकि कानून है कि 10 से ज्यादा अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी बहुत जरूरी है। तो कई जगह अभी भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो अगर कोई लड़की हैरेस फील करती है और उसकी कमेटी नहीं है तो वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री में वहां पर अपनी कंप्लेंट को दायर करवा सकती है। इस पोर्टल का ये फायदा है, वो ऐप है, आप ऐप को डाउनलोड करो और हर एक जो वर्किंग प्लेस है उनके लिए कंपलसरी है कि शी पोर्टल को आपने डाउनलोड करना ही है। तो लड़की डायरेक्टली करती है, जैसे वो डायरेक्टली करती है इमीडिएटली मिनिस्ट्री उस प्लेस ऑफ वर्क को कॉन्टेक्ट करती है कि आपके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्यों नहीं है, और वो मॉनिटर करती है उस लड़की की फिर शिकायत को हैंडल करने के लिए कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस अभी कहां तक पहुंचा है। तो उससे एक तो वो जो कंपनी है जहां पर वो लड़की काम कर रही है उनके ऊपर मिनिस्ट्री का कंट्रोल हो जाता है, दूसरा वो जो लड़की है उसकी प्रॉब्लम हल हो जाती है, एंड दिस इज हाउ गवर्नमेंट हैज ट्राई टू क्रिएट सेफ प्लेस फॉर द वर्किंग वुमेन ऑल्सो एट द वर्क प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटेलिजेंट ये स्टेप है जो शी बॉक्स वाला है।
1: दैट्स वेरी नाइस मैम, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट एक मुद्दा जिसपे बहुत बहुत बात बहुत वर्षों से होते आ रही है, कहां पहुंच रहे हैं ये देखना अभी बाकी है, दैट इज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल।
0: अब वुमेन के रिजर्वेशन बिल का तपस्या जी, मैंने इसकी डेवलपमेंट देखी है, और आप सोशल चेंज के लिए बोलते हैं ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि माइंडसेट लोगों के कैसे चेंज हुए। आज के दिन में देखो, इस मुद्दे को यूनैनिमसली एक्सेप्ट कर दिया गया, ये कानून पास हो गया 33%। उसमें क्या है कि औरत को एम्पावर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि शी शुड बी पॉलिटिकली एम्पावर्ड। एक बार औरत पॉलिटिकली एम्पावर हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है। तो 33% के साथ क्या होगा, जब आपने वो सीट वुमेन के लिए करी है रिजर्व और 33% वुमेन जब उसमें बैठेंगी पार्लियामेंट में, तो वो अपने आप में भी एक फोर्स कहलाएंगी। वो माइंडसेट चेंज होगा कि औरतें भी उतनी ही कैपेबल हैं, बल्कि ज्यादा हैं कि जितने हम कैपेबल हैं। औरत तो मल्टीटास्किंग करती है, घर भी देखती है, ऑफिस भी देखती है, समाज भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, उसके अंदर तो मेरे को लगता है गॉड ने बिल्कुल फ्री टाइम में बैठ के उसको बनाया है, इंटेलिजेंस भी दी है, इमोशंस भी दी है, फिजिकल पावर भी दी है, मेंटल पावर भी दी है। और कहीं पर मैं सोचती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट यहीं से शुरू होती है कि परमात्मा ने भी यही सोचा कि औरत के अंदर ही पावर है कि शी कैन प्रोड्यूस ए चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड को प्रोड्यूस करना इज नॉट ए स्मॉल थिंग। आपको 9 मंथ्स उसको कैरी करना है बॉडी में, फिर आपका जो प्रोसेस है उसको प्रोड्यूस करने का, उसकी ब्रिंगिंग अप करने पर मैं तो बहुत मानती हूँ। इसलिए औरत जो है, आई डोंट वांट टू कंपेयर देम, पर मैं ये कहती हूँ कि औरत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है हर हिसाब से। वो घर घर में कोई, मैं देखती हूँ कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, इट्स ऑलवेज द वुमेन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम। पर अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपने दी है, तो मैं गवर्नमेंट को ये अब रिक्वेस्ट करूंगी, जहां आपने इतनी स्कीम्स चलाई हैं, वहां पर वुमेन की लीडरशिप की ट्रेनिंग का भी आपको स्टार्ट करना चाहिए। वुमेन को ये पता चले कि अगर उसने इलेक्शन कंटेस्ट करनी है तो व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मींस, कैसे वो कर सकती है, और जब वो पार्लियामेंट में आती है तो पार्लियामेंट प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे वहां पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो उनको को तैयार करना, उसको अपनी पुरानी हिस्ट्री जो है वो बतानी चाहिए कि हम कहां से कहां चल के आए, ताकि जब वो पार्लियामेंट में आती हैं, जब उनको पॉलिटिकल पावर मिलती है, तो दे शुड शो देयर कैपेबिलिटी उस फील्ड में भी दिखाएं जहां हर फील्ड में उन्होंने दिखाई है, चाहे आपने उनको इंजीनियर बनाया, हाउस वाइफ बनाया, मदर बनाया।
1: यहीं पर मैं एक बात आपसे अगर पूछूं, जो बात आप कह रही हैं, यहीं थोड़ा अगर आपसे समझें कि हम जब मेन फोक की बात करते हैं, उनको तो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली, तो महिलाओं के लिए फिर एक नई चीज आ जाती है कि अगर आपको आना है तो ये करके आना होगा, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूं, जब आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसमें बात आती है कि अगर महिलाओं में वाकई इतनी कैपेबिलिटीज हैं तो उनको मैंडेट मिलेगा, खुदा जाए वो रिजर्वेशन क्यों चाहिए। और एक बात और भी आती है मैम उसमें, ये कि जीत कर तो वो आ जाती हैं, सीट पर बैठ भी जाती है, लेकिन पीछे से रन कर रहे होते हैं उनके घर के जो मेल पर्सन होते हैं, तो बहुत सारी प्ली काउंटर इस तरह के क्वेश्चन और डाउट्स हैं, ये सब बहुत बार उठे हैं सवाल इस तरह के।
0: हाँ, जो था ना ये पति पंचायत, ये वर्ड भी कॉइन हुआ था, उसका सिर्फ रीजन यही है, आपने वहां पर रिजर्वेशन तो कर दी पर आपने औरतों को ट्रेन नहीं करा, आपने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, आपने उनको पॉलिटिकली एजुकेट नहीं किया, तभी मैं ये बात करती, दैट्स वाई द मैन दे यूज टू इंटरफियर इन एवरीथिंग, दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, पर हमें उसकी रेमेडी, ये रेमेडी यही है कि औरत को पूरी लीडरशिप की ट्रेनिंग दो। अब कहते हैं ना आदमी अपने आप कर लेते हैं, आदमी अपने आप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आदमी के लिए कोई चेक लिस्ट नहीं है, जैसे हम औरतों को पूरा मापते तोलते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एज हाउस वाइफ कैसी है, एज मदर कैसी है, एज पोलिटिकल लीडर कैसी है, वैसे हम आदमियों के मापदंड नहीं करते हैं। वो इलेक्शन तो वो जीत गए, लेकिन उनको आपने ये नहीं बताया कि आपका पार्लियामेंट में जाके रोल क्या है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग के लीडरशिप क्वालिटीज के लिए ट्रेनिंग औरतों को देनी, चाहे वो कॉलेजेस में स्टार्ट करें, चाहे वो एनजीओज इंट्रोड्यूस करें, जहां पर आप बाकी ट्रेनिंग देते हैं वहां पर ये भी एक आपका सिलेबस में होना चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें, कि औरत को भी एम्पावर करो, और दूसरा औरत में कॉन्फिडेंस रखो कि अगर आपने उसको कुर्सी पर बिठाया है, जैसे वो घर को हैंडल करती है, घर की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, वैसे वो ऑफिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी, पर औरत की कैपेबिलिटी पर डाउट मत करो, उसको भी आगे आने दो, उसको भी इक्वल राइट दो, इक्वल स्टेटस दो, डिग्निटी दो, तो औरत भी देखो कहां के कहां पहुंच जाएगी आपकी, देयर इज नो डाउट, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स।
1: बिल्कुल बल्कि मैम मैं तो इसमें एक चीज और जोड़ूंगी, जो हमने सोसाइटी में देखा है जनरली, वो ये कि आपको क्वेश्चन क्या आता है आपकी एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को, आपकी शार्पनेस को, कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। अब जैसा कि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अवेयरनेस है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आपने मैम एनजीओ की बात की अभी, तो हम थोड़ा सा ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, 100 ईयर्स कम्प्लीट हो रहे हैं और आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उसको, बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिए ना हमारे साथ।
0: हाँ, हम 100 ईयर्स कम्प्लीट कर रहे हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द सेंटनरी ऑन 8th of January, क्योंकि ARWC ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, इसके 100 ईयर्स कम्प्लीट होते हैं अभी 27 में, क्योंकि ये स्टार्ट हुई थी 1927 में, और बड़ी ही रिच हिस्ट्री है इसकी। ये स्टार्ट हुई एक छोटी सी बात से, एक बंगाल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने औरतों को ये चीज कही कि तुम लोग कब तक आदमियों के कंट्रोल में रहोगे, तुम्हारी एजुकेशन में कब तक मेन जो है वो सिलेबस बनाते रहेंगे, आगे बढ़ो, बताओ आपको क्या चाहिए, और हम आपकी तब तक मदद करते रहेंगे जब तक आपका सब कुछ अचीव नहीं हो जाएगा। तभी फिर एक मैगजीन था चेन्नई में, WIA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी हमारा पार्ट है, वो उन्होंने उस मैगजीन में ये खबर को निकाला, एंड देयर वाज वन आयरिश लेडी, माइग्रेट कजन, हर हस्बैंड वाज ए प्रोफेसर इन वन ऑफ द कॉलेजेस, वो इंडिया में सेटल हुई थी, उसने जब ये पढ़ा तो उसने चारों तरफ ये फैलाया कि औरतों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सबसे पहली जो औरतें, पूरे देश से औरतें जो थी वहां पर आई, पूना में फर्गुसन कॉलेज में पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में गायकवाड़ की महारानी थी चिमनाबाई, जो बहुत ही बड़ी वेमेन एम्पावरमेंट वाली थी, उसने दशहरे के उसमें अपना पर्दा पब्लिकली निकाल दिया था कि पर्दा जो है वो औरत की हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है, उसकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। उस पहली मीटिंग में ही 7 रेजोल्यूशंस पास किए गए, और उस टाइम बच्चियों की शादी चार चार साल पांच पांच साल की हो जाती थी और एजुकेशन लेवल वाज 1% फॉर गर्ल्स एंड 1 point something फॉर बॉयज. तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन लड़कियों को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि देर इज चाइल्ड मैरिज. सो आवाज उठाई गई कि 14 साल से कम लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए. तो उन्होंने 2.5 साल के अंदर अंदर ये कानून बनवाया. उसके बाद ये चलती रही. फिर उन्होंने राइट टू

0: प्रॉपर्टी बनाया, उन्होंने कहा कि पेरेंट्स ने कहा अगर शादी नहीं करेंगे लड़कियों को क्या करेंगे, उन्होंने कहा एजुकेशन, दिस इज हाउ. फिर तीन हमारे एम है IWC के, एजुकेशन थ्रू एजुकेशन, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन एंड देन एम्पावरमेंट. हम वी आर सेक्युलर एंड वी आर नॉन पॉलिटिकल. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आज से 100 साल पहले कि औरतें इतनी दूर तक सोच सकती थी कि लड़कियों की एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, लड़कियों को फाइन आर्ट भी सिखाओ, होम साइंस भी सिखाओ, और जो विडोज हैं उनको आगे कैसे लाना है. उन्होंने विडोज के लिए सेंटर्स बनवाए, वहां वो रहेंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको हम इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे ताकि अपने पैरों पर खड़ी
1: जी.
0: आज से 100 साल पहले तो हमारी सबसे मशहूर जो है वो हंसा मेहता, जब भी वो UN में गई रिप्रेजेंट करने हिंदुस्तान को, तो वहां पर ये ह्यूमन राइट्स कमेटी में ये आया कि औरतें और आदमी बराबर हैं, ऑल मैन आर इक्वल. शी स्टूड अप, शी सेड नो, वाई शुड वी से मैन, वाई यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू मैन, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. उसके बाद सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू के बारे में तो सब जानते हैं. उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर थी, उन्होंने अपना जो घर था, उन्होंने एंड में अपना जो राजकुमारी उनका था ये पोजीशन, उसको उन्होंने त्याग दिया था. उन्होंने कहा मैं एक ऑर्डिनरी वुमन हूं, मैं खाली, मैं राजकुमारी नहीं हूं, मैं खाली अमृत कौर, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सिस की हालत, काम करने के बाद इनको रेस्ट चाहिए, इनको रिलैक्सेशन चाहिए. उन्होंने मसूरी में उनका जो बंगला था वो उनको डोनेट कर दिया कि नर्सिस जो है छुट्टी लेके वहां जाएं फैमिली के साथ, रिलैक्स करें ताकि रिजुविनेट हो जाएं और आके वो काम करें. और फंडामेंटल राइट्स को जब बनाया गया उसकी कमेटी में राजकुमारी अमृत कौर और रेणु कौर रहे. और जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हो वो उनके द्वारा ही कॉइन किया गया था. तो ये हमारा मुल्क की फ्रीडम में, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा रोल है. पूरे देश में हमारी 500 ब्रांचेस हैं, फिर साल में 2 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहां सब मिलके हम अपने आइडियाज जो हैं वो शेयर करते हैं. और हमारे एजुकेशन ट्रस्ट है जो लड़कियां एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेना चाहती हैं और उनके पास फंड्स नहीं है, तो एजुकेशन ट्रस्ट से हम उनको हेल्प करते हैं. दूसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा डे केयर सेंटर है. जैसे आजकल लड़कियां जॉब करने चली जाती हैं, मदर इन लॉ या मदर्स अकेली रह जाती हैं, तो सुबह 9 बजे हम सेंटर पर उनको बुला लेते हैं और वहां के सारी सेम एज की होती हैं, उनको कुछ ना कुछ जैसे दिए की बत्तियां बनाना, जो मैट्स होती हैं वो बनाने सिखाना, खाना दोपहर का उनको दिया जाता है, TV के प्रोग्राम चलते हैं और शाम को 5 बजे वो घर चली जाती हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें हम विलेजेस अडॉप्ट करके लोगों की मेडिकल केयर करते हैं, जैसे अनीमिया टेस्ट करते हैं, मेडिसिन दी जाती है, आई सेट टेस्ट होती है, मतलब जो ग्रास रूट लेवल के जो बड़े रिमोट विलेजेस हैं वहां पर लोगों की हेल्थ की थोड़ी अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं. और बाकी हर लेवल में, हर फील्ड में, एनवायरमेंट में, क्लाइमेट चेंज में, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पार्टिसिपेशन है. UN में भी हर साल हम विमेन इश्यू पर पार्टिसिपेट करके वहां पर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं. कमाल की बात यह है कि सब वॉलंटरी काम करते हैं.
1: वाह वाह जी,
0: हम यही इंजॉय करते हैं कि हम आपस में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है. तो अभी हम उस खुशी में स्टार्ट कर रहे हैं, 22 नवंबर को वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे अगेंस्ट वायलेंस है, उसमें हम एक वैकाथॉन कर रहे हैं क्योंकि हमारे काफी सीनियर मेंबर्स हैं. नाम तो उसका मैराथन था पर हमने वैकाथॉन इसलिए करा कि काफी मेंबर शायद भाग नहीं पाएंगे
1: जी.
0: तो वो हम कर रहे हैं पूरे देश में, पैन इंडिया. टी शर्ट्स हम उनको दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें हमने सेंटेनरी का लोगो भी बनाया है, हमारा पुराना AIWC का लोगो भी है. और वो लोग जो हैं वो एक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी जिसको कन्वीनियंट है वॉक करके, वी वॉन्ट टू स्प्रेड दिस मैसेज, प्लीज स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन.
1: तो
0: ये हमारा है।
1: बहुत बढ़िया।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड

0: फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: अभी आपने मैम बात की तो बस चलते चलते आपसे ये और समझे, आप बहुत सी कंट्रीज में भी आपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया और अपनी बात भी रखी है। हम इसराइल की बात करें, काठमांडू है, आई थिंक आप पेरिस भी गए हैं।
2: पेरिस तो मैं 6 बार गई हूँ।
1: वाह वाह क्या बात है।
2: क्योंकि वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ मैं जुड़ी हुई और वहां पर वो मेरे को बुलाते थे, दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट इंडिया। और जेएस वर्मा की कमेटी के बाद जो अमेंडमेंट हुई लॉज में, उसका क्या इम्पैक्ट है। फिर उनका मेन इम्पॉर्टेंट हुआ करता था सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी में मेरी उसमें बहुत इंटरेस्ट है मेरा, दैट इज माय स्पेशलाइजेशन, कि उसका इम्पैक्ट औरतों के ऊपर क्या होता है और कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो मेरे को उसके लिए भी बुलाते थे। फिर एक बार मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पर उनको बताया था कि हमारे कानून क्या है और हमारे जो पुराने सिस्टम अपने चले हुए हैं वो क्या है, वो हमारे बिलीफ क्या है, वो सारा कंपैरिजन मैंने उनको बताया था। फिर मेरे को वहां के जो मेयर थी पेरिस की, उन्होंने इनवाइट किया था। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे,
1: क्या बात,
2: उनके सामने फिर हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी। उनके सामने फिर मैंने ये प्रेजेंटेशन करी थी कि आज कैसे हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ रहा है, औरतों की हालत कैसे ठीक हो रही है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया आफ्टर जेएस वर्मा's वो स्ट्रिक्ट लॉस। उन्होंने उसके लिए मुझे इनवाइट करा था, तो मैंने उसके ऊपर बोला था। इसराइल में भी ये था, इसराइल में मैंने जो अभी शक्ति सदन है उसमें मैंने 7 साल काम किया है
1: जी।
2: तो उन्होंने मेरे को इसलिए बुलाया था कि आप औरतों को एम्पावरमेंट के लिए, उनको आप क्या क्या काम करती हैं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके बारे में मैं इसराइल गई थी। रशिया में भी वहां पर हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में प्रेजेंटेशन दी थी। और अभी नेपाल में तो हमारा लास्ट ईयर में गई थी, जब आई वाज सेक्रेटरी उस टाइम, वहां पर वो एक वुमेन का ग्रुप बना है। एशियन जो कंट्रीज हैं उनका अपना एक ग्रुप होना चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करे। उसमें फिर हमने वहां जाके तो सरोगेसी के बारे में सबके साथ शेयर करा था कि उसका ये औरत पर क्या इम्पैक्ट है। तो वो जो नेपाल की प्रेसिडेंट थी, तभी लेडी प्रेसिडेंट थी, शी इनवाइटेड अस एट हर प्लेस आल्सो। सो सबसे जब मिलते हैं, दूसरे कंट्रीज का जब पता चले जाए, इसराइल में गए, इसराइल में 15 दिन के लिए उन्होंने हमें रखा और सब कंट्रीज से वहां पर लोग आए थे, मैंने फिलीपींस तक के लोग आए थे, सभी इंटरेक्शन होती है, देन यू रियलाइज के बाकी कंट्रीज की क्या हालत है और आपके कंट्री के प्लस पॉइंट्स क्या है। फिर आप शेयर करते हैं कि हमारे मुल्क में ये होता है, जब दूसरे मुल्क से आप सीख के आते हैं कि ये होता है, दैट मैसेज यू ब्रिंग टू योर ओन कंट्री एंड यू कन्वे कि ये चीज वहां सक्सेसफुल हो रही है, सेम थिंग वी शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस।
1: बिल्कुल जी।
2: फिर उसके बेसिस पर हम ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में सेमिनार करते हैं अपने लोगों को बुला के, और हमारा एक मैगजीन निकलता है क्वार्टरली रोशनी, उसमें हम आर्टिकल मैं अक्सर लिखती हूँ फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में लिखती हूँ, और कैसे औरतों को एम्पावर किया जा सकता है, कैसे औरतों की एक्सप्लॉयटेशन कैसे खत्म, कुछ उसके फिगर देते हैं, कुछ हिस्ट्री भी देते हैं, सो दैट पीपल शुड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। तो उसको फिर वहां पर हम यूज करते हैं। सो जहां भी मेरा हो सकता है, मैं 3-4 बार न्यूयॉर्क भी गई हूँ वहां जाके, और अभी कोरोना के दिनों में जब हम वहां नहीं जा सके तो हमने ऑनलाइन ये मैंने करा था, द कंडीशन ऑफ वुमेन, जो वर्किंग वुमेन थी कोरोना के टाइम में उनकी क्या हालत हुई, क्योंकि मोस्टली घर से कर रही थी, और अदरवाइज व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन लॉज, व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो औरत को कैसे डबल रोल प्ले करना पड़ा और घरों में कितनी वायलेंस हुई। फिर मैंने उस वायलेंस की पूरी रिपोर्ट बना के भी यूएन में भेजी थी। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी वो मीटिंग्स होती हैं जहां पर वो एनजीओस को बुलाते हैं कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि गवर्नमेंट को वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने 3 बार उस पार्लियामेंट्री कमेटी में भी पार्टिसिपेट करा है जहां पर मैंने रिकमेंडेशन दी है अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए।
1: सो ऑल इन ऑल मैम, हम ये कह सकते हैं कि आज का जो सिनेरियो उसमें कि जिस देश में राष्ट्रपति महिला हो, जिस देश में फाइनेंस मिनिस्टर महिला हो, जिस देश की राजधानी की मुख्यमंत्री हैं वो महिला हो, तो हमें लगता है संदेश सबके लिए है कि आम जन परिवार इस बात को समझे कि अगर आप अपनी बच्चियों को, अपने घर की लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो सितारों से आगे जहां और भी हैं,
2: बिल्कुल ठीक,
1: और वो अगर सशक्त होंगी तो उसका डेफिनेटली जो लाभ है वो आपको भी मिलेगा। तो यही हम उम्मीद करते हैं मैम। चलते चलते आप कुछ अगर संदेश देना
2: चाहें। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने आगे भी ये कहा

0: कुलजीत कौर मैम, आप सच में यहाँ पर आए, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपके ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस खुशी में भी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। हम इतना इंग्रॉस्ड आपकी बातचीत में हो गए कि टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें जो है वो जहन से रह गई, और बहुत सी बातें अभी आपसे हमें और करनी थी, लेकिन आप जानती हैं थोड़ा वक्त की भी अपनी सीमा होती है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन।
1: बहुत बहुत
0: थैंक
1: शुक्रिया
0: यू।
1: तपस्या जी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।

अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जद्दोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुँचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वॉश में कहानी टू नियर ये टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं हूं दर्पणती क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तर बतर रहा। सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एनसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एनसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजीशन में लगा तार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एनसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो 4थे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर 1 थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः

0: ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें छठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस तमिलासरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खुजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। 3 पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए। और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी,
1: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीत कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को 5-0 से मात दी। परवीन ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अत्थापोंग सेकतेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला RSC यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का तीसरा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, परवीन, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे।
0: Much like this, 2 medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final, where he went down to Malaysia's Yan Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal that they had won with pride, and it is just the beginning of something special in Indian squash. India have won its most medals in the shooting range in this year's Asian Games. What happened on Sunday? Vidushi Vats with the report.
2: Starting with the women's trap competition, Neeru Dhanda continues to be one of the standout performers for India. She's currently sitting at number 1 in the individual standings, hitting 48 out of 50 targets. There is also good news in the team competition. The Indian women's trap team has finished day 2 in second position, keeping themselves firmly in medal contention as the event moves towards its final stage. Ashma Ahlawat is currently placed 16th individually. Moving to the men's trap event, Kainan Chennai made a brilliant start, producing a perfect opening round by hitting all 25 targets. He followed that with 22 in the next round and is currently placed 11th individually. Shapath Bhardwaj is currently in 22nd position, while the Indian men's team finished day one in 7th place in the team standings. And now, moving from trap to pistol, the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Aisha Singh is leading the Indian challenge at this stage. She finished the precision qualification with 290 points, putting her in 6th position. Rahi Sarnobat and Manu Bhakar are next for India, both finishing on 287 points. Rahi is currently placed 15th, while Manu is at 16th. Importantly, this is not the end of the 25-meter pistol competition. There is still more action to come, with the Indian trio looking to build on these scores as the event progresses.
0: दूसरी तरफ हॉकी के मैदान में भारतीय टीम का विजय रथ जारी रहा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 7-0 से जीत पा इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ग्रुप स्टेज पर अजय रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपना ग्रुप स्टेज कैंपेन अंत करे। अब सेमीफाइनल में सामने होने वाली है दक्षिण कोरिया। कुछ इसी तरह के संकेत आर्चरी रेंज से भी देखने को मिले हैं, विदुषी बताती हैं।
2: इन द मेंस रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल धीरज नीरज एंड यशदीप प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट चाइना, विनिंग 5-2 टू बुक देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। द वुमेन्स रिकर्व टीम ऑफ अंकिता कुमकुम एंड कीर्ति डिफीटेड चाइनीज ताइपी 6-0 इन देयर क्वार्टर फाइनल टू मार्च इनटू द लास्ट फोर। एंड इंडियाज मिक्स्ड रिकर्व टीम ऑल्सो मेड इट थ्रू। धीरज एंड कुमकुम हैव बीन क्लिनिकल थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेज। दे बिगन विद 6-0 victory over the United Arab Emirates in the round of 16 and followed that up with another commanding 6-0 win over Vietnam in the quarterfinal, and now have a semi-final against Japan to look forward to. So in recurve, India has 3 teams through to the semi-finals. The men's team will face Iran, the women's team will take on China, and the mixed team will face Japan. These 3 recurve semi-finals are scheduled for October 2nd. But the good news from Indian archery does not stop there. The compound teams have also delivered across the board, with India reaching the semi-finals in the men's, women's and mixed team events. In the men's compound team quarter-final, Sahil, Ganesh and Kushal edged past Bhutan 235-232 in a closely fought contest. The women's compound team of Chikita, Jyoti and Pritika also booked their semi-final place, defeating Kazakhstan 233-230. And there was another impressive performance in the compound mixed team event by Chikita and Sahil, who first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16 before overcoming Kazakhstan 159-154 in the quarter final. They are now through to the semi-finals, where they'll face Thailand. The compound men's and women's team will both face South Korea in the semi-finals. These 3 compound semi-finals are scheduled for September 30. All in all, it has been an absolutely fantastic day for Indian archery.
0: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
1: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोलिटेन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था, इसके साथ समाप्त हो गयी।
0: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
3: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम

0: दो शून्य से आगे होगी और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रा, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा आइए जानते हैं।
2: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered two defeats in two Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
3: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग बुक होंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा आइए जानते हैं।
2: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 तजाकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स येओन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वॉज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharati also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahere. So, 4 Indian Kurash athletes in action today and all 4 have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
2: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last 8. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुबाब लेकर आलोक।
0: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर है। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसु राउंड में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 9वें पायदान पर हैं।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार।

0: है।
1: यस, बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
0: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। Then in the archery range, individual competitions will start. We will have our eyes on men and women from both recurve and compound archery. In athletics, Gulveer Singh and Yunus Shah will be fighting for a medal in the 1500 meter men's race. Meanwhile, Parul Chaudhary, who won a gold medal in the 5000 meter in the previous Asian Games, will be competing tomorrow. In the men's long jump final, Murli Sri Shankar and David Patturaj will be featuring. Bada Daud mein 400 meter mein, Purusho mein, Tamil सरन, तो महिलाओं में विद्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स्ड रिले टीम भी 4x100 meter की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल ऑल्सो फीचर इन द विमेन्स डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेन्स एंड द विमेन्स टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तकराव डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुबाब लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

0: All right, that happens to be Eagles with Hotel California. I hope that you guys are enjoying the show right now. Time on the street clock, 45 minutes past 10 p.m. Ooh, I have to take a short and sweet break. So without any further ado, I have to take a break. So don't you go anywhere. I'll be right back after these messages. Break time.
1: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music, rozana subah 9 se 10 baje tak. Rainbow 102.6 par.
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर की गई। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। आज दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए फॉर्म 6 के जरिए विशेष कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चारधाम यात्रा स्थगित रही। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वैश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, महिला स्टीम प्लेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए। भारत ने 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक हासिल किए। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। तो ये थी इस घंटे की खास खबरें और अब पेश है गजलों का प्रोग्राम रंगे महफिल।

0: आकाशवाणी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, रंग महफिल लेकर आ गई हूँ मैं जर्रीन। जिंदगी आगे बढ़ती गई और मेरी प्लेलिस्ट पीछे लौटती गई, क्योंकि कुछ गाने सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और रिश्ते भी कुछ कुछ ऐसे ही तो होते हैं।

आज की रात थोड़ी भीगी भीगी सी है, हवाओं में ठंडक है, बादलों में नमी है और दिल में शायद किसी की कमी। कहते हैं ना, मौसम जब करवट लेता है तो दिल भी कुछ पुराने पन्ने खोलने लगता है। बारिश की बूंदें सिर्फ जमीन को नहीं भिगोती, कई अधूरी यादों को भी जगा देती हैं। और इस खूबसूरत रात में अगर बात मौसम की रुमानियत की ना की जाए तो फिर किसकी की जाए, क्योंकि गजलों में मोहब्बत, इश्क, ये तमाम ऐसे लफ्ज़ हैं जो आ ही जाते हैं बार बार।

आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरी के संग। बारिश का मौसम ना कुछ कुछ अजीब सा होता है। किसी के लिए चाय और पकौड़े की खुशी, तो किसी के लिए किसी खास के साथ बिताए लम्हों की यादें। आपने कभी गौर

किया है। जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो दिल अपने आप किसी ऐसे इंसान को याद करने लगता है जिससे शायद अब बात भी नहीं होती। खिड़की के पास बैठकर ये सोच तो नहीं आती कि काश वो इस वक्त मेरे साथ होता। खैर, होता यह है साहब कि अगर किसी रिश्ते को आप मुकम्मल मुकाम पर नहीं ले जा सकते तो किसी खूबसूरत मोड़ पर उसे छोड़ देना चाहिए। उसी में समझदारी होती है।

आप सुन रहे रंगी महफिल जरी के संग। मौसम भले ही बदलते रहे, कभी बरसात का मौसम, कभी गर्मी का मौसम और कभी सर्दी का मौसम। यूं तो कुछ दिनों के बाद या कहें कि महीने भर बाद सर्दी का आगाज हो जाएगा और सर्दी अपने पूरे शबाब पर होगी। लेकिन कहना मेरा बस ये है कि मौसम भले ही बदलते रहे मगर कुछ एहसास हमेशा दिल में ठहर से जाते हैं। ऐसी रुमानियत को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखिए, कभी भी निकलने मत दीजिए। क्योंकि पता है हम इंसान ना बहुत मशीनी होते जा रहे हैं। वही सुबह उठना, घर का काम, दफ्तर का काम, ट्रैफिक की झंझट, परिवार और रिश्ते की चिक चिक। ऐसे में कुछ एहसास, कुछ पल, कुछ यादें, कुछ रिश्ते अगर आपने दिल में संजो कर रखे हैं ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 11:22 मिनट।

आसपास हर जगह बेशुमार आदमी है, भीड़ इतनी कि चेहरों का हिसाब रखना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन अजीब बात है ना, किसी भीड़ के बीच इंसान सबसे ज्यादा अकेला पाता है खुद को। किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के

कानों में ईयरफोन, किसी की जिंदगी ऑनलाइन है, पर दिल अब भी किसी अपने की आवाज ढूंढता है। कभी सोचा है आपने कि आखिरी बार बिना किसी वजह के कब किसी का हाल पूछा था आपने? शायद हम बातें करना भूल गए, कुछ सुनना भूल गए, शायद रिश्ते अब टाइप किए जाते हैं, महसूस कम किए जाते हैं। क्या मानते हैं आप?

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक, रेनबो 102.6।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खैर, तन्हाई हमेशा हमारी दुश्मन नहीं होती, कभी कभी वही हमें खुद से मिलवाती है। तो फिर मिलेंगे एक नई महफिल, एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।

बहुत ही खूबसूरत शो रंगे महफिल जरीन थी हमारे साथ, लेकिन अब क्योंकि सिग्नल हो गया 00:00 का, और ये सिग्नल सीधे सीधे बताता है, इंगित ही देता है, संकेत करता है 0 आवर शो का, यानी अब दिन बदल चुका है, वक्त बदल चुका है और शो भी लिहाजा बदलेगा ही। लेकिन उससे पहले क्या क्या बदला है, यानी अब तक के मुख्य समाचार क्या है, इस पे जरूर डालेंगे फटाफट से नजर मेरे यानी रजत के साथ बस कुछ ही क्षणों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा जरूर करेगा। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन चरण शुरू किया। यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसमें 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के सभी मतदाता केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस महीने की 29 और 30 तारीख को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी कैंप आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन महिला, स्टीपल चेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक भी हासिल किए। भारत ने 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक जीते। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। साथ ही साथ आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी। तो करते हैं आगाज खूबसूरत प्रोग्राम जीरो और शो का मेरे यानी रजत के साथ इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर और उस ऐप पर भी जिसका मैंने अभी अभी नाम लिया। अगर अभी तक ये ऐप आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्दी से डाउनलोड कीजिए और बन जाइए हमारे साथी देश और दुनिया के हर हिस्से हर

0: Molly.
1: आए हाय,
0: तेरे तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

खूबसूरत गानों के इस पड़ाव के बाद, यानी इस आखिरी पड़ाव, ये जो गाना आप सुनने जा रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब की आवाज में, इसके बाद फिर से चलेंगे बुलेटिन और फिर आप सुनेगा सुहानी रात अर्चित के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। रात्रि के 1 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की। यह फैसला भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली एलएनजी चालित रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन शुरू किया। यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसमें 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर की गई। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस महीने की 29 और 30 तारीख को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी कैंप आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन महिला स्टीपचेंज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए। भारत ने 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य पदक सहित 37 पदक जीते। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 1:03 हो चुके हैं और रोजाने की तरह अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी रात। और आज एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: 1:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

1:29 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अलचित के साथ।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

आपकी वाणी आकाशवाणी। 1:52 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी रात। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि की। ये फैसला भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा जरूर करेगा। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन चरण शुरू किया। यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसमें 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर की गई। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस महीने की 29 और 30 तारीख को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी कैंप आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, महिला स्टीप लचेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए। भारत ने 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक जीते और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप जुड़े हमारे साथ हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी। देश और दुनिया के हर हिस्से से हमारे प्रोग्राम्स का आनंद लेने के लिए इस ऐप को आज और अभी डाउनलोड करें। 2:02 बल्कि कहना चाहिए कि अब 3 मिनट हो चुके हैं। कुछ ही देर में पहुंचेंगे हम उस पड़ाव पर जो कि 2 बजे से 3 बजे तक का बड़ा मनोरंजक पड़ाव होता है और इसका नाम है भुलाए ना बने। आप और हम रहेंगे इस खास और खूबसूरत महफिल में, खूबसूरत गानों के साथ, यादगार संगीत के साथ, जिसे ना आप भूल पा रहे हैं ना हम कोशिश करेंगे तब भी ये भुलाए ना बने। ये बनेगी ही नहीं बात, इसलिए रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन चरण शुरू किया। यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसमें 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। दिल्ली में इस महीने की 29 और 30 तारीख को सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नए मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धा में रजत पदक जीते। डेक्लाथलान महिला स्टीपल चेंज और 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किए। भारत ने 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक जीते। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:03 हो चुके हैं और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है मिडनाइट मेलोडीज। और इसमें एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं अलका याग्निक जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 3:23 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग डेली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

3:56 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

मिडनाइट मेलोडीज अभी आपने सुना और इसके बाद बज चुके हैं 4 और ये वक्त है आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली एलएनजी चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया।

छात्रा के साथ कथित दुश्मन दुष्कर्म और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, महिला स्टीपल चेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं। देश और दुनिया के हर कोने हर हिस्से से जुड़ने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए। आप जुड़े हैं हमारे साथ ठीक 4:02 पर और वक्त हो गया है कार्यक्रम सारेगामा का। सारेगामा के इस अंक में आप सभी का स्वागत, मैं हूं आपका मित्र रजत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और खूबसूरत गानों से सजी इस महफिल में आप का स्वागत और आप सभी का इस्तेमाल करता हूं मैं रजत।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 5 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का परिचालन चरण शुरू किया। यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसमें 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में आज पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और

0: वे मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अपनी सुरीली परंपरा को निभाते हुए वीनस वर्ल्ड वाइल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड आपकी मनपसंद म्यूजिक कंपनी अपने चाहने वाले संगीत रसिकों के लिए एक और भक्तिमय उपहार प्रस्तुत कर रही है, जिसके रचयिता हैं जाने माने गीतकार और संगीतकार रवींद्र जैन, जिनकी मनमोहक धुनों और यादगार गीतों को सुनकर आप भक्ति की संगीत धारा में आनंद विभोर हो उठेंगे और आपके रोम रोम में राम लला और श्याम सखा बस जाएंगे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।